आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून 2026। सुबह के 5:53 और लगभग 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 5:56 हुए हैं। आइए लेते हैं एक जानकारी। अब से लेकर दिन भर हमारी विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। उसके ठीक बाद 6:05 से आप जुड़ेंगे मुनीष जौली के साथ कार्यक्रम सुप्रभात में। इसके ठीक बाद एक बार पुनः सुनिएगा हिंदी में समाचार और निखिल कुमार लेकर आएंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सूचना प्रद इस कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों पर जानकारी सुनेंगे। इसके ठीक बाद 8:00 हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद आप फिर से जुड़ेंगे मुनीष जौली के साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में।

निखिल कुमार एक बार फिर आएंगे सुबह के 9 बजे दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर। ताज़ा तरीन बॉलीवुड गानों पर आधारित इस नॉनस्टॉप कार्यक्रम के ठीक बाद एक बार पुनः जुड़िएगा हिंदी में समाचारों के साथ सुबह 10 बजे। निहारिका भुवानिया लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। एक घंटे के इस संगीतमय प्रसारण के बाद 11:05 पर बबीता त्रिपाठी के जरिए जुड़िएगा बॉलीवुड ट्रेल्स कार्यक्रम में। निहारिका भुवानिया एक बार फिर लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल। इस कार्यक्रम के ठीक बाद बबीता त्रिपाठी से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम। अलग अलग विषयों पर इसमें टॉपिक रहेगा हेल्दी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंट्स। एक्सपर्ट

होंगे डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य, जो कि डाइटिशियन है और पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। दोपहर के 2 बजे आप सुनिएगा शालिनी खंडेलवाल से आशियाना। इस कार्यक्रम में आप आरोग्य पथ भी सुनेंगे, जिसके अंतर्गत पवन मुक्त आसन पर बात की जाएगी। रेडियो डॉक्टर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम श्वेता शर्मा की प्रस्तुति में दोपहर 3 बजे से। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो आज आप पूरे दिन भर में सुन सकेंगे हमारे आकाशवाणी रेनबो चैनल पर। अब से कुछ ही देर में जुड़ते हैं हिंदी में समाचारों के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic

.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि एक इंसान अपने आप को आजाद तब महसूस कर सकता है जब वो अपने निर्णय ले और उन निर्णयों पर सराहना की अपेक्षा ना करे।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। जानते हैं कई बार हम चीजें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जी हाँ, चीजें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हम काम की बात नहीं कर रहे कि ये काम करना था और ये हम भूल गए। जी नहीं, हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्तों में कई बार हम चीजें भूल जाते हैं। आज आधुनिक काल के गुरु बैठे हैं अपने गुरुकुल में, जहां वो एक शिष्या जिसका नाम आकृति है, तो उसका सवाल जो बहुत ही दिलचस्प है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आकृति एक युवा है, आधुनिक काल की एक उभरती हुई कॉर्पोरेट लॉयर, जो अपने आधुनिक काल के गुरु के पास आके सवाल पूछती हैं कि रिश्तों में कई बार हम चीजें भूल क्यों जाते हैं, और रिश्तों में क्या याद दिलाना जरूरी है कि हमारे रिश्ते कितने पक्के हैं, और रिश्तों में हमने क्या क्या किया किसी के लिए। आधुनिक काल के गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि किसी से ये मत कहो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया या मैंने तुम्हारे लिए वो किया। उस इंसान को बस वो चीजें दिखाओ जब तुमने उसके लिए कुछ किया हो, खुशी से कुछ किया हो, और वो बात तुमने कहीं लिख ली हो। क्योंकि भले ही किसी की बात सुनने में बड़ी कड़वी लगे, और वो बात की शुरुआत में ही उस कड़वाहट को सुन के बाकी की बात को नकारा कर दे, पर लिखा हुआ एक इंसान पूरा पड़ता है। कुछ जादू है इस बात में। आधुनिक काल के गुरु आकृति से कहते हैं, इसी बात पर तुम्हें कहानी सुनाऊं? आकृति अपने गुरु की तरह मुस्कुराकर कहती है, जी हां गुरुजी, क्यों नहीं। तो आधुनिक काल के गुरु आकृति से कहते हैं कि

कहा, पिताजी ये कौआ है। कुछ समय बाद पिता ने फिर अपने पुत्र से पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ये कौआ है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस बूढ़े पिता ने तीसरी बार फिर अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? इस बार बेटे ने अपने पिता से गुस्से में फटकार के साथ कहा, कह तो दिया ये कौआ है, कौआ कौआ कौआ, एक कौआ है, आपको समझ नहीं आता? थोड़ी देर बाद पिता ने फिर अपने पुत्र से पूछा, बेटा ये क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिढ़ते हुए चिल्लाया, या आप मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि ये कौआ है, क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हो? आपका ध्यान किधर है? जानबूझ के कर रहे हो क्या ये सब? आपको परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है ना, ऐसा आपको लगता है? बल्कि है उल्टा, परेशान आप मुझे कर रहे हो। ऑफिस जाना है, इतने सारे काम है, मीटिंग है, एक ही बात बार बार पूछे जा रहे हो, पूछे जा रहे हो, पूछे जा रहे हो, क्या हो गया आपको? थोड़ी देर के बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी फटी हुई सी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से संभाल कर रखा था। पिता ने उस डायरी का एक पन्ना खोला और अपने बेटे से कहा, बेटा क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो? जब बेटे ने इस पन्ने को पढ़ा तो जानते हैं डायरी में क्या लिखा था। आज मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है, मेरे साथ सोफे पर बैठा है, तभी खिड़की पर एक कौआ बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे लगभग 23 बार पूछा कि पिताजी ये क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि ये कौआ है। जब जब मैंने उसे जवाब दिया तब तब मुझे अच्छा लगा, और हर बार मैंने उसे प्यार से गले लगाया। मुझे उसके प्रश्न पूछने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे अपने मासूम बच्चे के प्रति स्नेह महसूस हुआ। 75 वर्ष के बूढ़े बाप की भले ही आंखें कमजोर हो गई हों, दिमाग उतना दुरुस्त ना हो, लेकिन बेटे और पिता का ये रिश्ता पिता ने अपने बेटे को याद दिलाया। वर्षों पहले लिखी हुई उस डायरी के अंदर एक पन्ने में बेटे और पिता इस बात को सुनकर भावुक हो गए। फर्क बस इतना था कि बेटे की आंखें शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और पिता की आंखें अपने बेटे के आंसू देख नम हो गईं। कहते हैं कि एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा कामयाब होकर गर्व महसूस करता है। उस गर्व के पीछे पिता के अंदर वो भाव कैसे हैं कोई समझ नहीं सकता। एक पिता अपने बच्चों पर निस्वार्थ प्यार बरसाता है, और एक पिता अपने बच्चों को योग्य बनाता है और अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है। तो जब हम छोटे थे तब माता पिता ने हमारी देखभाल की, हमारी ख्वाहिशें पूरी की, चाहे उसके लिए अपनी ख्वाहिशें उन्होंने रद्द कर दी हों, खत्म कर दी हों। आज के इस युग में भी कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप उनमें से एक हैं तो ये सोच लीजिए कि आप परमात्मा के चुने हुए इंसान हैं, मनुष्य हैं, जो परमात्मा का बताया हुआ ही काम कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अगर आप उनमें से एक हैं तो हम दिल से कामना करते हैं कि आज का दिन आपका लिए, आज जो अमावस्या है, आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत बहुत शुभ हो।

0: ला ला ला ला ला ला।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी रेनबो पर हैं आप, और हम जानते हैं कि आप हमें सरहदों के पार भी सुन रहे हैं। देश भर में हम आकाशवाणी रेनबो आप तक विशेष प्रोग्राम लेकर आते हैं। आज सुबह सुप्रभात, एक नए हफ्ते की शुरुआत। हम दिल से कामना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, एक सद्बुद्धि के साथ अपना दिन अपना जीवन व्यतीत करें। भारत की इस सुबह का नमस्कार हम भारत की सरहदों के पार देश विदेश में, फिजी आइलैंड से लेकर ब्राजील तक, नॉर्थ अमेरिका से लेकर अफ्रीका के देशों तक, यूरोप और एशिया के तमाम देशों में जो लोग हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से, भारत की इस सुबह का नमन नमस्कार स्वीकार करें। आधुनिक काल के गुरु हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और उनके सामने एक शिष्या बैठी हैं जिनका नाम है आकृति। आकृति ने पूछा कि क्या रिश्तों में हमें लोगों को याद दिलाना चाहिए कि हमने उनके लिए क्या क्या किया। आधुनिक काल के गुरु एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि भले ही किसी को मुंह जुबानी मत बताओ कि आपने उसके लिए क्या किया, लेकिन जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करो और आपका भाव कुछ स्पष्ट बात कहने का बहुत ही इच्छुक हो रहा है तो आप उस बात को लिख लें।

लिखा हुआ याद रहता है, लिखा हुआ जब उस व्यक्ति के पास पहुंचता है तो भाव कुछ अलग होते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा हो, लिखकर कोशिश करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सुप्रभात में आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के गुरु आकृति की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हैं और वो जानते हैं कि आकृति अपनी जिंदगी में आगे चलकर बहुत कुछ हासिल करेगी, क्योंकि आकृति बुद्धिमान है और हर परिस्थिति को संभालना जानती है। आकृति के अंदर एक खास बात यह है कि जब भी उसे गुस्सा आता है तो गुस्से भरा शब्द जो भी हो उसे कुछ क्षणों के लिए रोक देती है। कहते हैं कि हम अपनी अच्छाइयां दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप पर ही संदेह होने लगता है, क्या हमारे अंदर वाकई में कोई अच्छी बात है। तो यहां पर भी आधुनिक काल के गुरु आकृति से कहते हैं कि जब ऐसी बात हो तब फिर लिख लो कि तुमने एक साहस भरा काम जब किया तो उसे लिख डालो। आगे चलकर जब साहस की कमी हो और वो पन्ना तुम्हारे सामने आए तो सारी बातें और सुदृढ़ हो जाएंगी, तुम्हारा बल दुगना हो जाएगा। आधुनिक काल के गुरु आकृति को एक और कहानी सुनाने के लिए पूछते हैं। आकृति मुस्कुराकर कहती है, जी हां, लेकिन गुरुजी ये कहानी है किस बात पर? आधुनिक काल के गुरु कहते हैं, वही विश्वास जो हम तलाश कर रहे हैं सब में और खास तौर से अपने में भी, वो विश्वास। आकृति मुस्कुराकर कहती है, जरूर गुरुजी, सुनाइए ना। आधुनिक काल के गुरु कहते हैं, तो सुनो, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। और एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए, अकेले रह रहकर अब ऊब चुकी हूं।

साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और उस बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई ये लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। ऐसा लगा मानो बूढ़ी माई को उनका अपना ही बच्चा मिल गया हो। और एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि ये माई तो मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए उस बूढ़ी माई ने भूखे प्यासे दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर दिया। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां दिन बीत गया। इसके बाद क्या होता है

सुप्रभात सुन रहे हैं आप, और हमने आपको एक कहानी की तरफ मोड़ दिया जहां एक बूढ़ी औरत है जो गांव में रहती है, अकेली रहती है कई वर्षों से, बूढ़ी, लाचार, बेसहारा, लेकिन अपनी गुजर बसर कर रही हैं। एक दिन उनके घर साधु महाराज आते हैं और खूब पावन तरीके से उनकी सेवा करती हैं, उन्हें रहने की जगह देती हैं, खिलाती पिलाती हैं। और अगले दिन जब साधु महाराज जा रहे होते हैं तो बूढ़ी माई साधु महाराज से कहती हैं कि आप तो परमात्मा के बहुत पास हैं, मैं अकेले जिंदगी जी रही हूँ, बहुत अकेलापन खाता है, परमात्मा से कहकर कुछ मेरे बारे में कहिए ना। साधु महाराज उन्हें बाल गोपाल की एक मूर्ति दे देते हैं और कहते हैं कि इस बाल गोपाल को, इस मूर्ति को बच्चा समझ के पालना। बूढ़ी माई उस बाल गोपाल की रक्षा करने लगती हैं, देखभाल करने लगती हैं, खाना पीना, कपड़े बदलना, नहाना धोना, बातें करना, सब कुछ। आसपास बच्चे जब ये देखते हैं तो नटखट बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना इस बूढ़ी माई की परीक्षा ली जाए, और बूढ़ी माई को कहते हैं कि जंगल से एक भेड़िया निकल कर आ गया है जो रात में बच्चों को उठाकर ले जाता है, आप अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बूढ़ी माई 5 दिन तक बगैर खाए पिए, लाठी लिए घर के बाहर पहरा देती है अपने बाल गोपाल को बचाने के लिए। अब आगे सुनते हैं। 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही वो बूढ़ी माई। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर खुद ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया, और अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। कहते हैं भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लेते हैं अपने भक्तों के लिए। ठाकुर जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट,

तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर सकती हूं मैं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जाए यहां से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो तो मैं आपको 100-100 प्रणाम करती हूं, क्योंकि आपका तेज देखकर तो आप तो भगवान ही लग रहे हो। ठाकुर जी ने कहा, कुछ वरदान मांगना चाहोगी? बूढ़ी माई ने कहा, कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूं। वहां उतनी आसानी से मनुष्य का पहुंचना मुमकिन नहीं है। वहां तो मेरे चुनिंदा भक्त ही आ सकते हैं मेरे अपने धाम, और वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। और इस तरह ठाकुर जी प्रभु परमेश्वर परमात्मा बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई है जिसे आप बच्चे की तरह प्यार करना चाहते हैं? ये आपकी बूढ़ी माई है जो बच्चे की तरह प्यार की अपेक्षा करती है। मेरे घर में मेरी 90 वर्षीय मां है, जो हो सकता है वो कर रहा हूं। क्या आप भी वैसा प्यार किसी को देना चाहेंगे? और अगर आपको लगे कि आपका प्यार कुछ खास है और निज धाम जाने की आपकी भी एक आशा है, उस आशा को पूरा करने के लिए नारायण आपकी जिंदगी में भी जरूर आएंगे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तो आशा करता हूं कि आज का सुप्रभात आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम है मुनीश जौली और मैं आप ही में से एक हूं। फर्क यह है कि आप बहुत बड़े हैं, आप हमें बड़ा बनाते हैं। आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं। इन 9 दशकों में भारत और विदेश के न जाने कितने ही श्रोता हमारे साथ जुड़े। ये भी तो किस्मत की बात है ना, ये भी तो परमात्मा का आशीर्वाद ही है ना। सुप्रभात के बाद आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर, जिसे निखिल लेकर आएंगे। उसके बाद गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर की दूसरी कड़ी शुरू होगी सुबह 8 बजे। 9 बजे तक ये प्रोग्राम लेकर मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा। दिल के तराने गाने नए पुराने, ये प्रोग्राम लेकर निखिल आपके बीच आएंगे 9 बजे। सुबह के 10 बजे हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद निहारिका लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम वही है जिसे आप पहले एक अन्य समय में सुनते थे और कुछ दिनों के बाद इसे फिर आरंभ किया गया है, मैचलेस म्यूजिक।

सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। बबीता त्रिपाठी हिंदी में समाचारों के बाद 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर आएंगी। 12 बजे हिंदी में समाचार होंगे और फिर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल निहारिका के साथ। 1 बजे हिंदी में समाचार होंगे और फिर बबीता त्रिपाठी रेनबो हेल्पलाइन लेकर आएंगी और उसका टॉपिक है हेल्दी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंस। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य, डाइटिशियन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। दोपहर के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आशियाना होगा। शालिनी इस प्रोग्राम को पेश करेंगी, उसके बाद रेडियो डॉक्टर। ये लाइव फोन प्रोग्राम है। शाम के 4 बजे हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद अल्फा जैन आप सुन पाएंगे शालिनी खंडेलवाल के साथ। यूथ स्पीक्स, जहां गेस्ट होंगी अंजलि कुमारी। सिटी लाइट शाम को 5:05 से लेकर 6 बजे तक हिंदी समाचारों के बाद। 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स, जिसे पेश करेंगी भगवती। शाम के 7 बजे हिंदी में समाचारों के बाद शालिका कपूर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम लेकर आएंगी कंट्री कार्निवल। 8 बजे से 9 बजे तक म्यूजिक मस्ती ये प्रोग्राम लेकर आएंगी भगवती। रेशमा फारूकी लेकर आएंगी प्रोग्राम आपकी याद आती रही, रात्रि के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। 10 बजे हिंदी में समाचार होंगे रात को और उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा शालिका कपूर के साथ रेनबो शोकेस। 11 बजे रात्रि के हिंदी में समाचारों के बाद रंगे महफिल लेकर रेशमा फारूकी आएंगी आपके बीच। ये गजलों पर आधारित प्रोग्राम है जो चलेगा मध्य रात्रि तक। आशा करते हैं कि ये सुप्रभात आपको पसंद आया है। आइए शिव का वंदन करते हैं और फिर चलेंगे हिंदी में समाचार सुनने, बस सबसे कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है।

भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूं आपका दोस्त चैनिक। और जब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हो रखा है। तो वर्ष 1664 में आज का ही वो दिन था जब अमेरिका में न्यू जर्सी की स्थापना हुई थी। वहीं वर्ष 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित किया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। वहीं वर्ष 1762 में ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का चलन शुरू हुआ था। वर्ष 1836 में आज का दिन था जब आर्कसस अमेरिका का 25वां राज्य बना था, और 1899 में भारतीय थलसेना के पहले थलसेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जडेजा का जन्म हुआ। वर्ष 1908 में आज के दिन ही कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि वर्ष 1982 में आज के दिन ही फॉकलैंड में अर्जेंटीना की सेनाओं का ब्रिटिश सेना के समक्ष समर्पण हुआ था। और वर्ष 1988 में आज के दिन ही नासा ने स्पेस व्हीकल S-213 को लॉन्च किया था। और आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1997 में 8 मुस्लिम देशों द्वारा इस्तांबुल में D8 नामक संगठन का गठन किया गया था। वर्ष 2002 में आज के दिन ही कनाडा के हेलिफैक्स यानी कि नोवा स्कॉटिया में G8 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक आज के दिन शुरू हुई थी। वर्ष 2004 में आज के दिन ही ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को राष्ट्रपति बुश की स्वीकृति मिली थी। और आज के दिन ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ बेस्ट ट्रेलर भी बनी थी। वर्ष 2006 में आज का दिन था जब भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट फिर से खोलने का निर्णय लिया। और आपको हम ये भी बता दें कि वर्ष 2010 में आज का ही वो दिन था जब भूटान तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला देश बन गया था। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान बनाई हुई है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आशा निखिल के साथ में। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को।

और श्रोताओं, आपको बता दें कि भाई 21 जून नज़दीक आ रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसके लिए तमाम तैयारियां भी जारी हैं। और आपने यदि अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है इस दिन को मनाने की, तो इस दिन को मनाने के लिए आप अपनी तैयारी अब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वह ख़ास दिन बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाला है। और जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो भाई मैं आपको एक आसान सा आसन बना देता हूँ जिसको करके आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस योग का नाम है हस्त योग मुद्रा। हस्त योग मुद्रा करने के लिए सबसे पहले आप किसी शांत स्थान पर सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। इसके बाद अपनी रीढ़ सीधी रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें, और फिर अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और अपनी तर्जनी यानी कि जो पहली उंगली होती है उसके सिरे से अंगूठे के सिरे से मिलाएं और बाकी तीन उंगलियों को सीधा रखें। आंखें बंद करें और सामान्य और गहरी सांस लें और 10 से 20 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। और ध्यान रखें कि अभ्यास के दौरान आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करके रखना है। यह मुद्रा एकाग्रता, मानसिक शांति और ध्यान की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रचलित सबसे प्रमुख हस्त योग मुद्राओं में से एक है। यानी कि यदि आपको कोई भी काम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, आपका दिमाग डाइवर्ट होता है और आपको लगता है कि आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे किसी काम में, किसी चीज में, तो ये जो हस्त योग मुद्रा है ये आपके लिए काफी सहायता पहुंचाएगी। इसे करने से आपको काफी फायदे होते हैं, तो इसे आज से ही आप करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य सा योग है, उसे करने से आपको काफी फायदे मिलेंगे। बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल 102.6 पर।

और श्रोताओ, अब समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो भाई, सबसे पहले हम आपको बता दें कि याद कर रहे हैं शिव दयाल साहब को, जिन्हें हम सभी शिव दयाल सिंह के नाम से भी जानते हैं, और स्वामी जी महाराज भी उन्हें कहा जाता है, जो राधा स्वामी मत के संस्थापक थे। आपको बता दें कि उन्होंने आध्यात्मिक साधना, सत्संग और सूरत शब्द योग के माध्यम से आत्मा के परमात्मा से मिलन का मार्ग बताया था। वर्ष 1861 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने आध्यात्मिक उपदेश देना शुरू किया और प्रेम, दया, सत्य, नैतिक जीवन तथा जीवों के प्रति करुणा पर विशेष बल दिया। उनके अनुयायियों का ये मानना है कि आंतरिक ध्यान और सद्गुरु के मार्गदर्शन में मनुष्य आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। उनके प्रवचनों और वाणियों को बाद में सार वचन नामक ग्रंथों में संकलित किया गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी राधा स्वामी परंपरा के माध्यम से लाखों लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने विचारों से लोगों के जीवन में बदलाव आया, आज हम उसे याद कर रहे हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही जयंती है भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार और कला शिक्षाविद देवी प्रसाद रॉय चौधरी की। वे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रणी कलाकारों में से एक माने जाते हैं और उनकी कृतियों में भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा स्वतंत्रता संग्राम की भावना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और आपको हम बता दें कि उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के प्राचार्य के रूप में भी कार्य किया और अनेक युवा कलाकारों का मार्गदर्शन भी किया था। और आपको ये भी बता दें कि देवी प्रसाद राय चौधरी भारतीय कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए

अनेक सम्मानों से सम्मानित हुए थे और उनका नाम भारत के महान मूर्तिकारों में सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो ट्रायम्फ ऑफ लेबर और महात्मा गांधी स्टैचू शामिल है, जो आज भी भारतीय कला की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपसे बातें होंगी और गीत होंगे। बने रहें आप FM रेनबो पर।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 102.6। और आपको बता दें कि आज जयंती है तारकनाथ दास की, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी लेखक और शिक्षाविद थे। आज उनकी जयंती है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय होने के कारण वे विदेश गए, जहां उन्होंने विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन के लिए कार्य किया। वे गदर पार्टी से जुड़े और प्रवासी भारतीयों को स्वाधीनता संग्राम के लिए संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना और भारत की आजादी पर प्रचार किया जाता था। बाद में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और राजनीति का अध्ययन तथा अध्यापन किया और फिर एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन देशभक्ति, बौद्धिक योगदान और आजादी के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। और श्रोता आपको बता दें कि आज ही जयंती है सुरैया के। हिंदी सिनेमा की प्रारंभिक दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री और गायिकाओं में से एक थी। उनका जन्म आज के दिन हुआ था। आपको बता दें कि 1940 और 1950 के दशक में उन्होंने अपने अभिनय और गायन दोनों क्षेत्रों में असाधारण सफलता प्राप्त की थी और उस समय वे उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल थी जो अपनी फिल्मों के गाने स्वयं गाती थी। उनकी फिल्मों में अगर हम बात करें तो अनमोल घड़ी, दिल लगी, मिर्जा गालिब और क्षमा जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी मधुर आवाज़ और प्रभावशाली

अभिनय ने उन्हें लाखों प्रशंसकों का प्रिय बना दिया था। अभिनेता देव आनंद के साथ उनकी जोड़ी काफी चर्चित रही और सुरैया ने बाद में फिल्म जगत से दूरी बना ली। एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में उनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। आपके लिए कोई प्यारा संगीत हम

और श्रोता आपको बता दें कि आज ही जयंती है ज़िया फरीदुद्दीन डागर की, जो भारत के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक और डागर घराना के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे। आज उनकी जयंती है। वे प्रसिद्ध संगीतज्ञ ज़ियाउद्दीन खान डागर के पुत्र थे और उन्होंने अपने परिवार की सदियों पुरानी ध्रुपद परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको हम बता दें कि ज़िया फरीदुद्दीन डागर ने भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में अपनी प्रतिभा को प्रचारित और प्रसारित किया था। उनके अनेक शिष्य भी इस गंभीर और प्राचीन गायन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। वे लंबे समय तक ध्रुपद केंद्र से जुड़े रहे, जहां उन्होंने ध्रुपद के प्रशिक्षण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। और आपको बता दें कि उनकी गायकी में स्वर की शुद्धता, गहराई और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता था। ध्रुपद संगीत के संरक्षण और संवर्धन के कारण उनके योगदान को आज भी किया जाता है और उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे सम्मानित गुरुओं में से भी गिना जाता है। फिलहाल आपको हम बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में शिवेंद्र पहुंच चुके हैं लेकर के तमाम खेल खबरों को, जो बहुत ही जल्द आपके साथ जुड़े होंगे और आपको तमाम खेल खबरों की जानकारी वो देंगे। मैं आपसे कुछ देर बाद मिलूंगा, आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स,
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और खेल के मैदान पर जैसा लगातार हम कहते हैं, स्पोर्ट्स पल्स में हमारी कोशिश होती है खेल दुनिया की हर धड़कन को आपके साथ करीब से महसूस करने की, शिद्दत से महसूस करने की। और खेल के मैदान पर लगातार गतिविधियां जारी हैं। T20 वर्ल्ड कप पिछले सप्ताह ही हमने आपको जानकारी दी थी कि आगे आने वाले हफ्ते में कौन से टूर्नामेंट्स आने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इस समय चल रहे हैं। इनफैक्ट एक टेनिस की दुनिया की बात करें या खेल की दुनिया को इन जनरल कहें, टेनिस स्पेसिफिकली कहें, तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पिछले सप्ताह रविवार को समाप्त हुआ था, जहां पर हमें महिला और पुरुष वर्ग दोनों ही वर्गों में नए चैंपियन मिले थे। और वहां पर रूस की मैरा एंड्रीवा ने खिताब जीता था महिला वर्ग में और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने खिताब जीता था पुरुष वर्ग में। दोनों ने ही अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था, क्योंकि अलेक्जेंडर ज्वेरेव इससे पहले कई बार ग्रैंड स्लैम फाइनल्स हार चुके थे। अंततः उन्होंने कामयाबी उनको मिली, उनकी मेहनत का फायदा मिला। और इस सप्ताह जो टूर्नामेंट शुरू हुए हैं उनमें सबसे बड़ा, अगर मैं टूर्नामेंट कहूं, अगर ग्लोबल लेवल पर स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो वो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 देश पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। अभी भी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब टूर्नामेंट में एक मैच खेला जा रहा है, स्वीडन और ट्यूनिशिया की टीमें आमने सामने हैं इस मैच में और स्वीडन ने 1-0 की फिलहाल बढ़त बना ली है। इस टूर्नामेंट में बाकी जो मैचेस खेले गए हैं उनके बारे में जरूर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन भारतीय समय के अनुसार मैच थोड़ा देर से शुरू हो रहे हैं, इसलिए आपके सामने दोनों बातें हैं। यानी आप दिन भर काम निपटा लें, उसके बाद अगर आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स बफ हैं और अगर आप फुटबॉल को बहुत दिल से प्यार करते हैं और ये टूर्नामेंट जो कि 4 साल में एक बार आता है, जिसका सभी इंतजार करते हैं, तो अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो लेट नाइट आप जगिए, रात भर जगिए, फुटबॉल के मैचेस का आनंद लीजिए। और अभी भी सुबह भी मुकाबला जारी है, जहां स्वीडन ने ट्यूनिशिया पर 1-0 की बढ़त बना ली है। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप महिला वर्ग का इंग्लैंड और वेल्स में शुरुआत हो चुकी है उसकी, और भारत ने टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया है। ऑस्ट्रेलिया जो कि 6 बार के चैंपियन है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को मैच में हराया है। वहां पर हालांकि ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब थी, लेकिन बहुत अच्छी वापसी की उन्होंने और साउथ अफ्रीका को पराजित किया। डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड को हार से 2-4 होना पड़ा है इस टूर्नामेंट के एक मुकाबले में, लेकिन अच्छी बात यह कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत ने जीत से शुरुआत की है। पाकिस्तान को भारत ने बहुत ही प्रभावशाली अंदाज में पराजित करके 64 रन से भारत ने पाकिस्तान को हराया पहले T20 वर्ल्ड कप के मैच में एजबेस्टन में, और जीत के साथ आगाज किया है। भारत के जो तमाम खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी खासतौर पर, वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम पर पिछले साल नवंबर के महीने में इतिहास रचा था, जब भारत ने फाइनल में ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में 50-50 ओवर के संस्करण में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। और भारतीय प्रशंसक चाहेंगे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम वो जो कामयाबी का सिलसिला भारत ने शुरू किया था उसे जारी रखे, और वो सिलसिला अगर इंग्लैंड और वेल्स में दोहराया जाए तो खैर उसे सोने पर सुहागा ही कहा जा सकता है। और इसके अलावा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अफगानिस्तान की टीम की मेजबानी कर रही है। 3 वनडे मैचेस खेले जा रहे हैं, उससे पहले एक टेस्ट मैच खेला गया जहां भारत ने बड़े प्रभावशाली अंदाज में जीत दर्ज की। भारत और अफगानिस्तान के बीच जब भी लॉन्गर वर्जन यानी टेस्ट मैचेस हुए हैं तो वहां पर अफगानिस्तान का पलड़ा बहुत हल्का रहा है, भारत का पलड़ा भारी रहा है, और भारत ने एक पारी से ज्यादा के अंतर से वो टेस्ट मैच जीता था। और उसके बाद पहले एक दिवसीय मैच में भी भारत ने जीत दर्ज की सबसे पहले। लेकिन अगर हम विस्तार से बात करना चाहें तो भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच जो महिला T20 विश्व कप का मुकाबला खेला गया उसकी बात करते हैं। 64 रन से यहां भारतीय टीम जीती। एजबेस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना पिछले कुछ समय से फॉर्म से जूझती हुई नजर आ रही थी, उन्होंने हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। 44 गेंदों में

0: 68 रन बनाए हरमनप्रीत कौर कप्तान, 36 रन बनाए उन्होंने, ऋषा घोष ने 17 गेंदों पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2 विकेट लिए। 171 रन का टारगेट था पाकिस्तान के सामने, 17 ओवर में 106 रन पर ही पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। मुनीबा अली जो कि टीम की विकेट कीपर हैं और बैटर भी हैं, ओपनिंग बैटर हैं, उन्होंने 41 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने भारत की ओर से कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, 10 रन देकर के उन्होंने 5 विकेट लिए। श्री चंडी को 3 विकेट मिले, शेफाली वर्मा को 1 विकेट हासिल हुआ। पाकिस्तान के आखिरी 5 विकेट सिर्फ 17 रन के भीतर गिर गए और दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर के 5 विकेट हासिल किए और इस तरीके से भारत ने जीत से शुरुआत की है। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम को सक्षम नेतृत्व दे रही हैं और उनका 10वां T20 वर्ल्ड कप है साथियों, 10वां T20 वर्ल्ड कप। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप में भी लीड कर रही थी, यहां पर भी लीड कर रही हैं इंग्लैंड और वेल्स में T20 विश्व कप में। और इस मैच के शुरू होने के पहले हरमन ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
1: इट्स अ वेरी बिग टूर्नामेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर सो मेनी इयर्स टीम इज बीन शोइंग ट्रस्ट ऑन मी एंड इट्स अ वेरी इमोशनल एंड वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर मी दैट यू नो आई बीन प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज क्रिकेट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दिस टाइम गोइंग टू प्ले अ 10th T20 वर्ल्ड कप एंड होपफुली गो विद द सेम माइंड सेट, सेम अप्रोच लाइक हाउ वी वेंट द लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप एंड एवरीवन इज वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस टूर्नामेंट एंड होपफुली वी विल गिव आवर बेस्ट।
0: जी हाँ, तो जैसे हरमन ने कहा कि होपफुली वी विल गिव आर बेस्ट, तो उसी अंदाज में भारतीय टीम ने आगाज किया है और दीप्ति शर्मा ने तो खैर कमाल ही कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड पहुंची थी तो अभ्यास मैच भी खेले थे और वहां पर पहले जो 3 मैच खेले गए थे प्रैक्टिस मैचेस, इंग्लैंड के साथ भी भारतीय टीम खेली थी, वहां दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 1 विकेट हासिल किया था और यहां कल के मैच में उन्होंने 5 विकेट हासिल कर लिए और वो बनी प्लेयर ऑफ द मैच। ये है दीप्ति शर्मा।
2: अपने प्लान्स को बहुत सिंपल रखा, सेल्फ बिलीफ था कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी आई हैव टू स्टेप अप, और जैसे विकेट स्लाइटली टर्निंग था तो अपने अच्छे बॉल्स और अपने अच्छे लेंथ पे हिट कर रही थी, जो अच्छे एरियाज हैं उसी पे बैक टू बैक मैं बॉल डालती रहूं, और पिच पे स्पीड बहुत ज्यादा क्रूशियल था तो हर एक ओवर में वेरी कर रही थी तो उस चीज ने मुझे हेल्प किया।
0: तो दीप्ति शर्मा अपनी जीत को, अपने शानदार प्रदर्शन को शब्द दे रही थी। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा करके महिला T20 विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की है। कल साथियों एक और बड़ी शानदार खबर आई आर्चरी के मैदान से, यानी तीरंदाजी के फील्ड से। वहां पर भारत के तीरंदाज, युवा तीरंदाज और अनुभवी तीरंदाज, उनका मिक्सचर था, दरअसल मिक्स टीम थी। भारत के धीरज बोमदेवरा और 17 वर्षीय युवा तीरंदाज कुमकुम मोहर ने अंताल्या में तुर्की में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में मिक्स रिकर्व टीम का गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टीम ने फाइनल में ओलंपिक चैंपियन साउथ कोरिया के स्टार जोड़ी ओये जिन और किम जद्योग को 5-1 से हरा करके खिताब अपने नाम किया। मिक्स टीम इवेंट में धीरज और कुमकुम दोनों के करियर का यह पहला वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल है। आर्चरी वर्ल्ड कप में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को पिछला गोल्ड मिला था 4 साल पहले, यानी 2022 में। संयोग की बात है कि वो गोल्ड मेडल भी अंताल्या में ही आया था, तुर्की में, जब भारतीय जोड़ी थी रिद्धि फोर और तरुणदीप रॉय, बहुत ही अनुभवी भारत के तीरंदाज, ओलंपिक खेलों में भी खेल चुके हैं। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की बरायनी पिटमैन और एलेक्स वाइस की जोड़ी को रोमांचक शूट ऑफ में हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन कल धीरज बोमदेवरा और कुमकुम ने बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इंप्रेसिव और एक तरीके से वन वे ट्रैफिक रहा, क्योंकि 5-1 से कोरियाई जोड़ी को हराकर भारतीय जोड़ी ने खिताब जीता। जीत को शब्द देते हुए ये हैं धीरज बोमदेवरा और कुमकुम मोहोत।
3: बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम ये मैच जीते हैं। बहुत दिन से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारा टीम हो, मिक्स टीम हो, इंडिविजुअल हो, ये सारा टीम का साथ रहा है हम लोग का, उसी वजह से हम लोग जीते हैं। एंड जो हमारा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साई ने जो हम लोग को एक साथ में रह के जो हम लोग को वो रास्ता दिखाया कि भाई हम है आप लोग के पीछे, आप लोग चलो, आप लोग मेहनत करो, उसकी वजह से हम लोग बहुत सही कर पाए एंड आगे भी करते रहेंगे।
4: मैंने बहुत खुद पर विश्वास रखा और चलाया और प्रोसेस पर ध्यान दिया, सिर्फ आगे वाले कौन है कुछ नहीं देखा। और शंघाई का भी बहुत फायदा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो जैसे खेली थी उससे तो और बेहतर खेली हूँ इस बार, और ऐसे ही खेलती रहूंगी।
3: ऑनेस्टली जब इसके साथ खेलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना इसको चीजें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उससे ज्यादा उससे मैं सीख रहा हूँ कि बेधड़क होके चलाना, कि जैसे वो बोले कि फर्क नहीं पड़ रहा है किसके साथ खेल रहा है, तो बेसिकली पूरा चीज है ना एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो रहा है, एक नया वाले कैसे सोचता है जोश में एंड जो एक्सपीरियंस है हम कैसे शेयर करते हैं हर सिचुएशन में। हम लोग हमेशा एक मतलब कहावत बोलते हुए हम लोग जा रहे थे मिक्स टीम में,

0: इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. सो आखिरी तीर तक, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहे, चाहे हम आगे है पीछे हमको फर्क नहीं पड़ता. एंड हम उसी चीजें पे ध्यान दिए जिस पे हमको देना चाहिए. एंड इसमें बहुत सारे चीजें ये है कि कुमकुम बताई एंड मैं उसको शेयर किया. सो इट्स टोटली अबाउट टीम बॉन्डिंग.
1: जी हाँ, टोटली अबाउट टीम बॉन्डिंग. और जैसा जैसा धीरज ने कहा कि इट इज नॉट ओवर अनटिल इट इज ओवर, यानी जब तक मामला समाप्त ना हो जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है. और धीरज और कुमकुम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, स्वर्ण पदक जीता. एक और भारतीय सफलता की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं. भारत ने अफगानिस्तान को पहले वनडे मैच में 7 विकेट से हराया. 3 मैचों की सीरीज है, 1-0 की बढ़त बना ली है. धर्मशाला में बारिश हुई जिसकी वजह से मैच 25-25 ओवर तक सीमित कर दिया गया. भारत ने टॉस जीता, बाजी करने का फैसला किया. अफगानिस्तान की टीम 24.5 ओवर में 194 रन पर आउट हो गई. 194 पर भारत को 195 का टारगेट मिला. रहमतुल्ला गुरबाज ने टीम की ओर से 48 गेंदों में अपना 9वां वनडे शतक लगाया. अफगानिस्तान की ओर से उन्होंने 102 रन की पारी खेली. भारत ने 22.5 ओवर में 3 विकेट खोकर के टारगेट हासिल कर लिया. कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए. केएल राहुल 39 रन बनाकर नाबाद रहे. ईशान किशन ने 34 रन की पारी खेली. तो प्लेयर ऑफ द मैच बने शुभमन गिल और विजेता कप्तान भी थे. टीम की जीत को शब्द दे रहे हैं शुभमन गिल.
2: It was kind of a T20 game. I think the way we started and then they pulled the game away from us. Gurbaz batted brilliantly, you know, the way he got his century was brilliant. When we were bowling, there was a little bit of grip for the spinners. When they were bowling, the ball was coming on pretty nicely. But I think the way we pulled back game in the middle overs and the death overs was brilliant.
1: जी हाँ, तो बहुत प्रभावशाली जीत भारत ने दर्ज की अफगानिस्तान पर. अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी क्या कह रहे थे मैच के बाद?
3: Yeah, it was a tough game. Back to back wickets was the reason. I was feeling that when Gurbaz was playing, I was feeling that if we score 220, 230, that might be a good target. But we give some back to back wickets. We were short up almost 30 runs, I think.
1: अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी का मानना था कि शायद टीम को 30 और रनों की आवश्यकता थी तो सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट, परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती थी. लेकिन सच्चाई यही है कि भारत ने खिताब जीता और 1-0 की बढ़त 3 वनडे मैचेस की सीरीज में हासिल कर ली है. साथियों, पिछले सप्ताह एक दुखद खबर आई इनफैक्ट, जबकि भारत के जाने माने निशानेबाज द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित और बहुत ही अमेजिंग शूटर रहे जसपाल राणा का देहावसान हो गया. सिर्फ 49 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ. 1994 में जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था. 1997 में उनको महज 21 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. 2020 में उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था. 2025 में उनको उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला था. और मनु भाकर या फिर सौरभ चौधरी जैसे तमाम बहुत से युवा शूटर्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी. भारतीय निशानेबाजी इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है. विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जसपाल राणा के नाम पर साथियों 600 से ज्यादा पदक हैं. 1994 में मिलान में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने नए विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था. हिरोशिमा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. 2006 में कतर में दोहा में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था. स्पोर्ट्स पल्स परिवार की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं. खेल की दुनिया की ओर दोबारा से वापस लौटते हैं. वर्ल्ड कप फुटबॉल की बात करते हैं. और वर्ल्ड कप फुटबॉल में हमने जिक्र किया था कि इस समय मुकाबला खेला जा रहा है. स्वीडन ने ट्यूनिशिया पर 1-0 की बढ़त बना ली है, जबकि अमरीका ने पराग्वे को पहले मैच में 4-1 से पराजित किया. कतर और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर छूटा. जो सबसे पहला मैच हुआ, मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से पराजित किया. और ये मुकाबला बड़ा अमेजिंग था साथियों. 2022 में जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, पूरे विश्व कप में केवल चार रेड कार्ड दिखाए गए थे. लेकिन इस मैच में जहां मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला गया, वहां पर 3 रेड कार्ड दिखाए गए. तो अपने आप में एक बड़ा अजीबोगरीब शुरुआत थी टूर्नामेंट की. कनाडा और बोस्निया के बीच 1-1 गोल की बराबरी पर मैच छूटा. कोरिया ने चेक रिपब्लिक को हराया 2-1 से. हाइती हारे स्कॉटलैंड से 0-1 से. ब्राजील और मोरक्को, ब्राजील 5 बार की चैंपियन, मोरक्को पिछली बार की सेमीफाइनलिस्ट, 1-1 की बराबरी रही. ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को पराजित किया 2-0 से. और कल रात को 4 बार की चैंपियन जर्मनी ने कुरासाओ को 7-1 से पराजित किया. जापान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा. चलते चलते बर्थडे की बात कर लें. कैरोलिना मारिन आज अपना बर्थडे मना रही हैं. बैडमिंटन खिलाड़ी मनिका बत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी, उनका आज बर्थडे है. ओलिवर कान आज अपना बर्थडे मनाते हैं, जर्मनी के फॉर्मर गोलकीपर. 17 जून को अंकिता भगत, भारत की तीरंदाज, उनका बर्थडे होगा. एलिना रिबेकिना आज अपना बर्थडे मना रही है. लिएंडर पेस 17 तारीख को अपना बर्थडे मनाएंगे. फिलहाल बर्थडे की बातचीत समाप्त, कार्यक्रम का समय समाप्त. अगले सप्ताह मिलेंगे. शिवेंद्र को अनुमति, नमस्कार.

0: Das has done it.
1: India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
2: Sports Pulse.
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

है वो टेक ऑफ करेगी और लैंड भी करेगी। पहला दिन इंडिगो एयरलाइंस अपनी सर्विसेज शुरू कर रहा है ग्रेटर नोएडा। जानते हैं यहां 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था पहले फेज में, और उसके बाद पहले चरण में यहां प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 170 से ज्यादा किसान उड़ान भर कर जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए, जो चीफ मिनिस्टर है यूपी के, और इन किसानों के साथ होंगी 20 महिलाएं भी। ग्रेटर नोएडा के लिए जिस दिन का इंतजार सब लोग कर रहे थे, उस पहली उड़ान का वो आ गया है।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

आज से जो उड़ानें शुरू हो रही हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन सिर्फ एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत ही नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के विमानन जो बाजार में नई प्रतिस्पर्धा की जो शुरुआत है उसे माना जा रहा है कि एक बिल्कुल टक्कर तो नहीं देगा आईजीआई को, क्योंकि आईजीआई फिलहाल 4 runway, 3 terminal और 11 crore यात्रियों सालाना की क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, और पिछले साल यहां 7.8 crore यात्रियों ने सफर किया। यानी एयरपोर्ट अभी भी अपनी पूरी क्षमता से काफी नीचे काम कर रहा है, और ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि यात्रियों और एयरलाइंस को अपनी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए। कुछ लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई और देखा, उन्होंने पाया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 6 से 9 बजे के बीच अतिरिक्त स्लॉट मिलना बेहद मुश्किल है, और इसलिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस समय लोग आशंका लगा रहे हैं कि इस समय फ्लाइट ज्यादा मिलेंगी, कनेक्टिविटी बेटर रहेगी, जहाजों की भी यात्रियों की भी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज पहली उड़ान आएगी लखनऊ से नोएडा, और फिर नोएडा से जाएगी बेंगलुरु।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और विश्वविद्यालय का खेल एवं जो क्रीड़ा विभाग है 15 से 19 जून तक एक विशेष योग प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कर रहा है।

0: बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

बच्चे भी कितने मासूम होते हैं ना। घर में पिताजी ने पूछा, तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आए? तो बच्चे ने कहा, सवाल बड़े मुश्किल थे। उन्होंने कहा, जवाब? बच्चे ने कहा, वो तो और भी मुश्किल हो जाते ना फिर।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहा है, मेरा नाम है मुनीश जॉली। वो जो मौसम का इमरजेंसी अलर्ट आता है ना फोन पे कि तूफान आने वाला है 3 घंटे में 2 घंटे में, वो रोक दिया गया है कुछ दिनों के लिए, फिलहाल के लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जाली और रिसर्चेस बता रही हैं कि सोशल मीडिया जो है लोगों को मानसिक तौर पर थका रहा है। एक और रिसर्च ये बता रही है कि अगर मोबाइल के साथ आप जुड़ जाते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो इंस्टा हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म, तो चिपक गए तो चिपक ही जाते हैं। जहां बात होती है 2 मिनट देख लेता हूं, 20 मिनट लग जाते हैं। क्या आप इस चीज का शिकार तो नहीं है? और अगर हैं तो आपको अपने लिए खुद कुछ करना होगा, कोई और करेगा नहीं। जैसे मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं एक प्यारा सा गीत चलाने की, और ये है बानी संधु की आवाज में, एंड ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी आपका साथ नहीं देती, कभी कभी साथ कुछ ज्यादा देना चाहती है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी कितना साथ देगी, अब मेरा टेक्नोलॉजी साथ दे रही है। समझ गए ना, आपने भी सुना होगा।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। आकाशवाणी 9 दशकों से आपके साथ है। 90 सालों का ये सफर आप हैं, हम हैं और हमारा प्यारा साथ है।

और हम भी कमाल हैं। और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं। एक और कमाल की न्यूज बताता हूं। अब हर शनिवार जो आपके पास में जो पुलिस थाना है वहां पे जन सुनवाई होगी, सीनियर अफसर होंगे, सुलझाएंगे आपकी समस्या। आप जा सकते हैं वहां और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी एरिया की शिकायतें, सुझाव, अपने इलाके की सुरक्षा से जुड़ी बातें कर सकते हैं आप।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहा है, मेरा नाम उमनी जौली और अभी मैंने आपको एक खबर बताई कि अब हर शनिवार थानों में जन सुनवाई होगी और सीनियर अफसर सुलझाएंगे आपकी समस्या। और उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने अब सभी थानों में हर शनिवार यानी थाना दिवस जन सुनवाई आयोजित करने का फैसला किया है। इसके तहत जैसे मैंने आपको बताया कि शनिवार को सुबह 10 से 2 बजे तक आम लोग अपनी शिकायतें, सुझाव और अपने इलाके की सुरक्षा से जुड़ी बातें सीधे पुलिस अफसरों से कर पाएंगे और जन सुनवाई में आने वाले किसी भी शख्स को यह कहकर नहीं लौटाया जाएगा कि उसकी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। तो अगर शिकायत पहले से दर्ज नहीं है तो उसे मौके पर ही लिया जाएगा, बाद में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, यानी हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और जैसे मुझे मौका मिल रहा है यहाँ आपको गीत सुनाने का, प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होगा दिल के तराने गाने नए पुराने, जिसको लेकर आ रहे हैं निखिल। आशा करता हूं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते ये बता दूं कि पीपीएसी चार्ज में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी आपके बिजली का बिल थोड़ा सा महंगा होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ एक और खबर पढ़ के कुछ रिएक्शन आया कि दिल्ली में 43.7% उपभोक्ता जो है उन्हें 100% सब्सिडी मिल रही है कुछ यूनिट्स तक। यहां दिल्ली में, दिल्ली ग्रेट है, आप भी और मैं भी।
1: तेरा नसीब हूं, सारी लकीर हाथ।
0: फिर मिलेंगे कहीं चलते चलते, और इस पूरे घंटे में 15 गीत आपके लिए लेकर आया आकाशवाणी रेनबो। आपका दिन बहुत शुभ हो।

आपकी वाणी आकाशवाणी। और आइए अब हम सुनते हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, एफएम रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: श्रोता, आपको बता दें मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे। तो निहारिका भवानिया आपके साथ होंगी, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आवर लेकर के 10:05 पर। वहीं बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुनेंगे बबीता त्रिपाठी के साथ 11:05 पर। निहारिका एक बार फिर आपके साथ होंगी, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल लेकर के 12:05 पर। वहीं बबीता त्रिपाठी पेश करेंगी रेनबो हेल्पलाइन, जो कि 1:05 पर आप सुन सकते हैं। टॉपिक है हेल्दी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलसेंट्स। इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य, जो डाइटिशियन है, पेडियाट्रिक न्यूट्रिस्ट भी हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो। और आपको बता दें कि दिन में 2 बजे से शालिनी खंडेलवाल लेकर के आएंगी आशियाना, और फिर रेडियो डॉक्टर का समय है दिन में 3 बजे से, जिसे लेकर के आएंगी श्वेता शर्मा। फिलहाल आपके लिए प्ले करते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक, इसे आप एंजॉय कीजिए। आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6।

और इसी के साथ में इजाजत दीजिए आपके दोस्त को चलने की। हम फिर मिलेंगे, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर 102.6, और अपना ख्याल रखें, सुनते रहें हमें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की

0: सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लेके पहला पहला प्यार फ्रॉम द 1956 फिल्म सीआईडी, संग बाय शमशाद बेगम, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी. नाउ दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, प्रोड्यूस्ड बाय गुरु दत्त, एंड वहीदा रहमान वाज अपियर्ड इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस सपोर्टिंग रोल्स इन दिस फिल्म. द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज दैट गुरु दत्त हैड स्पॉटेड वहीदा रहमान इन अ तेलुगु फिल्म बिफोर दिस, एंड ही डिसाइडेड टू कास्ट हर इन प्यासा, विच वॉज रिलीज्ड इन 1957. Now, in order to prepare her for Pyasa, he gave her a key supporting role in this film, CID, the year before Pyasa was released. And this film is also full of a lot of social commentary. So, if you might recall that Johnny Walker and Kumkum, who appear as boyfriend and girlfriend in the film, they offer a track which is social commentary on the honest criminals who are trying to get by. You know, life is hard, especially in a place like Bombay. So, it alludes to a lot of social commentary. And it has a lot of elements of life back then, of what life was like in the city of Bombay. And the lyrics of this particular track seem to be saying that all that glitters is not really gold. When the glitter is gone is when perhaps you realize it wasn't really gold in the first place at all, right? So notice the line when the singer says that Jadugar chala kaya aur main yahan kho gayi. Now with those thoughts, we'll transition into a short commercial break, and post that we'll get back to the music on the Matchless Music Hour. So you don't have permission to go anywhere. You've got to stay tuned to your favorite radio station, which is Akashvani FM Rainbow.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com. कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.

0: from the 1985 film Sagar. And up next, a short commercial break coming your way, followed by more music.
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही. रेनबो पर रात 9 बजे.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो

0: नॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने

0: चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23985 पर कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वसनीय विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवड़ी के पास हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: तो हम ये कह रहे थे ना कि जैसा कि हर घंटे आकाशवाणी रेनबो पर होते हैं कुछ खास, हर घंटा कुछ खास होता है और हर घंटा एकदम आपके लिए नई एनर्जी लेकर आता है, नई सूचनाएं लेकर आता है, नई खबरें लेकर आता है। तो ये घंटा किस तरह से खास है, बॉलीवुड की दुनिया में जाने के लिए खास है और बॉलीवुड की नई नई अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए खास है और उसके बाद धमाकेदार गाने भी खास हैं। और आज तो एक बात और खास है कि आपके साथ है बबिता त्रिपाठी, यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ बीटी विद बीटी, जो ये सब कॉम्बिनेशन मिलाकर बेहद खास बना देता है इस शो को। तो चलिए इस शो को एंजॉय कीजिए बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स के लिए और एक सवाल के लिए भी जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। कैसे बताऊंगी इस शो, इस गाने के बाद, भाई शो के बाद कैसे बता सकती हूँ। और हाँ, थोड़ा पीछे हो जाइए, रेलगड्डी आ चुकी है बॉलीवुड की।

अजी रेलगड्डी तो बॉलीवुड की चल पड़ी है और यहाँ बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स आपको ऐसे ही हर गाने के बाद कुछ कुछ कुछ कुछ मिलती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर बाद एज अ स्नैक सर्व होता रहेगा और आप सब एंजॉय करते रहिए, आप इस सफर का आनंद लीजिए। आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी एज अ ड्राइवर। और हाँ, आप गड्डी में सवार हो चुके हैं तो आपको जानना होगा कि बॉक्स ऑफिस में क्या चल रहा है। भाई इतनी सारी मूवीज रिलीज होती हैं तो चलती हैं कि नहीं चलती हैं, कौन सी मूवी देखना है नहीं देखना है, प्लान करना है नहीं करना है, सब कुछ यहीं पर है इस घंटे पर। आप अगर जुड़ जाते हैं ना आकाशवाणी रेनबो के साथ तो कुछ भी आपके लिए पॉसिबल है। तो फिलहाल आपको

बता दूं, पैदी और है जवानी तो इश्क होना है जैसी मूवीज रिलीज हुए लगभग 10-11 दिन हो गए हैं। पैदी को 11 दिन और है जवानी तो इश्क होना है को 10 दिन हो चुके हैं। और कमाई के मामले में पैदी ने क्या कमाल दिखाया है, 214.21 करोड़ का लगभग इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है। और रामचरण और जानवी कपूर की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई की है अभी तक, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि कमाई करती रहेगी क्योंकि अभी तो मूवी है और टोटल कलेक्शन बढ़ेगा ही। लेकिन है जवानी तो इश्क होना है का बॉक्स ऑफिस का टोटल कलेक्शन 43.30 करोड़ का लगभग हो पाया है, जो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है भाई। थिएटर्स में और भी मूवीज हैं जो आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑब्सेशन भी अच्छी कमाई कर रही है, कंगना रनौत की मूवी भारत भाग्य विधाता भी अच्छी कमाई कर रही है, अच्छा चल रही है। मनोज वाजपेयी की गवर्नर, दिलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊंगा और हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट भी थिएटर में लगी है। आप चाहें तो इन मूवीज को देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी के जो ऑप्शंस आने वाले हैं उनके बारे में क्या अपडेट है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ज्यादा नहीं। सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।

मैं काम तो आपके लिए बताना भूल ही गई, आपका छोटा सा काम है। आप आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं ना, बस ध्यान से सुनना है, यही वाला काम है। पता है क्यों? क्योंकि आपको ना अगर कुछ भी मिस कर दिया ना आपने, तो क्या पता सवाल वहीं से पूछा गया हो और आप जवाब ना दे पाए, फिर मेरी गलती नहीं होगी। मैं आपको वार्न करती हूँ, अगर मेरी बातों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, तो उन्हीं बातों में छुपा होगा जवाब, जो मैं 11:30 बजे क्विज पूछूंगी ना उसका जवाब। और आपने सही जवाब दे दिया तो आपका नाम तो शामिल होगा, इस बात की पूरी गारंटी। और अगर गलत जवाब भी दिया तो भी नाम शामिल होगा। और हाँ, बॉलीवुड सरताज बनने के लिए अगर आप हैं बेताब, तो हो सकता है आपकी किस्मत आज चमक ही जाए। तो बॉलीवुड सरताज बनने के लिए बस वही जवाब देना है आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, और आपको कॉल हम मिलाएंगे, हम आपसे बात करेंगे, ऑन एयर आपकी बात पहुंचेगी, आप अपनी बात दिल के कहेंगे। तो देख लीजिए, ये मौका आपसे मिस ना हो जाए, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल तो मेरे पास कौन सी खबर है, बताऊं या ना बताऊं? चलिए इन मोहतरमा को सुन लेते हैं, उसके बाद इनकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, इनको सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं और फिर कुछ अपडेट देते हैं बॉलीवुड की।

अजी अनारकली डिस्को जा रही है, इनको जरा थोड़ा रोको और इनको बता दो कि एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है कॉकटेल टू की, अगर करवानी है तो करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि सीट्स भर जाएं फिर कहें कि हमने कॉकटेल टू देखी ही नहीं।

बेचारे सलीम का कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल आपको बता दूं कॉकटेल 2 जो 19 जून को रिलीज हो रही है, और अगर आपको इसका इंतजार है तो आप बता सकते हैं अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को भी कि इसका इंतजार अब आपको ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़े ही दिन तक का करना है। अब आपको अगर ये डर है कि पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसा कुछ आपके दिमाग में भी हंगामा मचा हुआ है, तो भाई रिलीज से पहले आजकल तो ट्रेंड है कि अब बुकिंग एडवांस में शुरू हो जाती है, तो इसकी भी बुकिंग कल से शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब जब ये थिएटर में रिलीज होगी उससे पहले आपकी टिकट बुक हो चुकी होगी, आप जाएंगे और फटाफट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकते हैं, या जैसे भी आपको मिले इसका टिकट आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि इस मूवी में शाहिद कपूर हैं और उनके साथ दो और हीरोइनें हैं, और गाने तो ऑलरेडी ट्रेलर तो ऑलरेडी मतलब हंगामा मचा चुका है और काफी चर्चा है इस फिल्म की। पता है क्यों? क्योंकि इसमें दो दो बड़े बड़े नाम हीरोइनों के भी हैं और हीरो भी एडवांस में मतलब काफी नाम कमा चुका है एडवांस बुकिंग की तरह ही। तो आपको बता दूं कि इसमें शाहिद कपूर है, रश्मिका मंदाना है और कृति सेनन है। कॉकटेल 2 की एडवांस बुकिंग खोल दी गई है, फायदा उठाइए। और रही बात निर्देशक होमी अज्जानिया की, तो कल्ट मूवी कॉकटेल के सीक्वल के तौर पर इस मूवी को वो लेकर आ रहे हैं और जबरदस्त हाइप देखने को मिल रहा है।

मैं आपको बता दूं कि भाई वेलकम टू द जंगल, वेलकम टू द जंगल नहीं, वेलकम टू आकाशवाणी FM रेनबो. आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी. शो चल रहा है बॉलीवुड रील्स यानी बीटी विद बीटी चल रहा है, आपको याद दिला दूं, और साथ में वेलकम टू द जंगल की याद दिला दूं. रिलीज से पहले वही नया इतिहास रच दिया है इस मूवी ने, और रिलीज से पहले इस मूवी ने इतिहास रच दिया, रिलीज के बाद क्या करेगी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, कुछ नया इतिहास रचेगी. लेकिन फिलहाल आपको बता दूं किस बात का इतिहास इस मूवी ने रचा है. ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जबरदस्त रिस्पॉन्स का इतिहास रचा है. अब किस तरह से जबरदस्त रिस्पॉन्स वेलकम टू द जंगल को मिला है वो आपको बता दूं. जब ट्रेलर रिलीज हुआ ना, तो जंगल वाली थीम की सजावट की गई थी, और हर चीज की कुछ खास हो रही है इस इवेंट में. जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, जॉनी लीवर, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी जैसे अब बड़े बड़े स्टार शामिल हुए. ये सब बड़ी खबर नहीं है. खबर क्या है? खबर तो यह है कि रिलीज से पहले इस मूवी ने क्या इतिहास रचा. तो दो दिनों में ही YouTube पर 28 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, और शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर भी ये नंबर वन मूवी ट्रेंड कर रही है. तो ये इतिहास नहीं तो और क्या है? यही है ना आज के जमाने का इतिहास. मतलब आज के जमाने में इसी तरह के इतिहास रचे जा रहे हैं. कितने व्यूज हुए, कितनी शेयरिंग हुई, और कितने मिलियन लोग देख रहे हैं, इस तरह की बातें ही हो सकती हैं, और इसी पर इतिहास बन सकता है. और यही हो रहा है इस मूवी के ट्रेलर को लेकर. फिलहाल यही खबर है. और आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में ये मूवी सबसे ऊपर है. अरे भाई 40 कलाकार लगभग काम कर रहे हैं, छोटी बात है. 2007 की कल्ट मूवी वेलकम, क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा था. उसके बाद वेलकम बैक, अब ये वेलकम टू द जंगल, देखते हैं क्या कमाल दिखाती है. इस गाने ने तो कमाल दिखा ही दिया था, वेलकम मूवी के इस गाने ने. और इस गाने को सुनकर हर लड़की कुछ ऐसे

वो सब तो ठीक है, जब एक तो ऊंचा लंबा कद वाला गाना ना बड़े अच्छा लगता है, लगता है मेरे लिए गाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि समय हो चुका है कि आपके लिए एक सवाल आ ही जाए, और उस सवाल का जवाब अगर आपने दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। आपको पता है व्हाट्सएप मैसेज ही करना है और नंबर मैं बताऊंगी, एकदम फ्री होगा। और आप अगर बॉलीवुड सरताज बन गए, आज सिलेक्ट हुए, रैंडमली हम किसी को भी बॉलीवुड सरताज बना देते हैं, और अगर आज आप सिलेक्ट हुए तो आपसे हम बात करेंगे और आपका हालचाल जानेंगे, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी, कुछ तो बोलेंगे आप आकाशवाणी रेनबो के लिसनर्स को क्या बोलेंगे आप सोच कर रखिए, और साथ में सवाल का जवाब सबसे पहले दीजिए। कैसे दीजिए? आपको व्हाट्सएप मैसेज करके सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है। आपका मैसेज एकदम गारंटी के साथ शामिल होगा। अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं बने तो भी अब सवाल पर आ जाए, सवाल पूछ लेते हैं। कॉकटेल 2 की बात की मैंने, और मैंने बताया कि शाहिद कपूर हैं इस मूवी में, आने वाली जो मूवी है शाहिद कपूर है, उनके साथ रश्मिका मंदाना है, और एक हीरोइन है उनका नाम क्या है, यही तो आज का सवाल है। आपको बताना है उनका नाम क्या है। रश्मिका मंदाना के अलावा कॉकटेल 2 में जो दूसरी लीड एक्ट्रेस हैं उनका नाम आपको लिखकर भेजना है, लेकिन अपना नाम, अपने शहर का नाम पहले लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है। और नंबर बता देती हूँ, वही पुराना बिल्कुल नए नए काम करता है हर बार, 9868107070 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, 9868107070। मेरा भी अपना पुराने नाम से ही मैं काम चला रही हूँ, मेरा नाम है

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना।

0: कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स चल रहा है। बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी। इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन क्या पता है कि गदर 3 भी बन सकती है। यस, गदर मचाने वाली मूवी गदर, उसके बाद गदर 2, अब गदर 3 पर भी लोगों ने पूछा भाई कि फिल्म मेकर अनिल शर्मा से पूछा गया कि क्या आप गदर 3 भी बना सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए अच्छी सी कहानी होनी चाहिए। अब जैसे कि गदर की थी, ऐसा लगा कि ये मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी। ऐसी कोई कहानी है जो बिल्कुल यूनिक है, एकदम दमदार है और एकदम बम जैसी है, तो ऐसी मूवी पर काम किया और ये मूवी ज़बरदस्त किस कमाई की और किस तरह से इसने इतिहास रचा आप सबको पता है। लेकिन अभी उन्होंने कह दिया है कि गदर 3 के बवाल पर जो सवाल और बवाल उठ रहा है उस पर उन्होंने कहा है कि अगर गदर एक बम थी तो गदर 2 के लिए मुझे एटम बम जैसी कहानी चाहिए थी और मिल गई और उसने बना दिया, और अब जब न्यूक्लियर बम जैसी कहानी मिलेगी तब गदर 3 भी बनेगी। इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, और चल रहा है तो आप सब समझ सकते हैं कि फिल्म तो आएगी ही आएगी, लेकिन अब मुख्य भूमिका में क्या यही लोग रहेंगे, क्या कुछ नया होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो।

नाचने झूमने के चक्कर में कहीं आप ये तो नहीं भूल गए कि आपको आंसर भी देना है बॉलीवुड सरताज बनने के लिए? बॉलीवुड सरताज बनने के लिए मैंने सवाल पूछा कि कॉकटेल टूल में शाहिद कपूर के साथ रश्मिका मंदाना है और एक और हीरोइन है जिनका नाम आपको लिखकर भेजना है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ और आपको पता भी होगा शायद, क्योंकि आप बॉलीवुड ट्रेल्स के रेगुलर लिसनर हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आंसर देने के लिए सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है और मैसेज करने के लिए, जब आंसर लिख लेंगे तो मैसेज करने के लिए एक नंबर चाहिए होगा, वो नंबर है 9868107070। आपको बताऊं सीक्रेट वाली बात, इतने सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं तो मैं बस इस गाने के बाद उन सब मैसेजेस को शामिल करने वाली हूँ। बी रेडी, कहीं आपका नाम मिस ना हो जाए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ

ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर आप समय है आप सबके मैसेजेस शामिल करने का। ये आप सबके मैसेजेस बहुत सारे आए हैं, लेकिन हाँ आप सब इत्मीनान रखिए, ध्यान से सुनिए और एकदम लाइन से बैठ जाइए, तभी आप सबको अपना नाम सुनाई देगा। फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि मेरा नाम मिस कर दिया आपने, मेरा नाम तो शामिल ही नहीं हुआ। फिलहाल मुझे दिख रहा है बराड़ा जिला से अंबाला हरियाणा से किसका नाम, धर्मवीर का, और इसके साथ और भी नाम है जो मैं नहीं ले सकती क्योंकि एक ही नाम अलाउड है फिलहाल। राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, तरुण कोहली सूरजकुंड से लिख रहे हैं, सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं, और मेरठ से ही मैसेज कान्हा का आ रहा है, और उसके बाद समीना शेख लिख रही मुंबई से, और माय फेवरेट आरजे, इतना लंबा लिखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी और आपका नाम ढूंढने से नहीं मिलेगा। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि आप लिख रहे हैं बिहार से, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, उसके बाद मैसेज आ रहा है सही जवाब लेकिन नाम नहीं लिखा है, तो अब क्या करें कैसे करें, दीनू आपका नाम मेरा कंप्यूटर दिखा रहा है तो ढूंढ लिया मैंने। प्रवीण चौहान का मैसेज शामिल हो गया, आसिफ सैफी का मैसेज भी दिख रहा है मुझे, और मोहम्मद कासिम का बिजनौर से मैसेज, फरीदकोट से किसका मैसेज पता नहीं, नाम पहले लिख दिया होगा इन्होंने और उसके बाद एक एक नाम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये चरणजीत कौर का मैसेज था, उसके बाद फिर पहला मैसेज है भटिंडा से किसका मैसेज है, नाम अपना बनी का मैसेज है, तो चलिए ठीक है आपका शामिल कर दिया, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने बताया था वैसे ही नाम लिखा करिए, जरूर शामिल होगा। मिसेस धर्म भाटिया बिल्कुल सही जवाब दे रही है, दानिश खतौली से सही जवाब दे रहे हैं, और मुखर्जी नगर से अर्चना सही जवाब दे रही है, कांट से मोहम्मद फुरकान का मैसेज दिख रहा है, उमेश कुमार खयाला से, और मेहना चौक से विनोद सोनी का मैसेज दिख रहा है, मोहित न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं, और संजय या रंजय सिंह मेरठ से, पता नहीं रंजय सिंह लिखा है, मैंने तो संजय सुना था, रंजय नाम भी होता है, अच्छा। हरी सिंधु बठिंडा से लिख रहे हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से मैसेज आ रहा है किसका, ये इन्होंने अफशा खानम ने लिखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा मैसेज लिख दिया तो नाम ढूंढना पड़ा। सादिर मैसेज कर रहे हैं शाहपुर से, और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, इरशाद अशरफी का नाम नागौर से, और ये कीर्ति ये तनुषा महाराष्ट्र से, ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, और प्रत्युषा का भुवनेश्वर से, और महाराष्ट्र से किसका मैसेज है, राजेवदी कुछ नाम है या कुछ है, आगे इन्होंने लंबा मैसेज लिखा है तो अब ढूंढना पॉसिबल नहीं है। बसंत तोमर मेरठ से लिख रहे हैं, और उसके बाद हरीश गौड़ का भी मेरठ से जवाब आ रहा है, और नेक्स्ट मैसेज है किसका, कुमार गर्ग ये टीकमगढ़ से मैसेज, लेकिन आप जिनका मैसेज मिस हो रहा है ना इनकी यही गलती है कि इन्होंने सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम नहीं लिखा। जाहिद का मोहम्मद ये मुजफ्फरनगर से मैसेज आ रहा है, पार्थ का भटिंडा से आ रहा है, मेरठ से एक बार फिर से किसी का मैसेज दिख रहा है जो नाम नहीं लिखा है, तो क्या करें, आप सबको धन्यवाद देते हैं शामिल होने के लिए, लेकिन हाँ मोहम्मद फुरकान का भी मैसेज मुझे अभी एक बार और दिखा, चलिए कोई बात नहीं, जिसका भी मैसेज मिस हो गया है आप क्या कर सकते हैं, आपने प्रॉपर तरीके से अगर आंसर नहीं दिया तो ऐसा होना ही था, पुष्पेंद्र जी जैसे इन्होंने नाम लिखा है लेकिन शायद मुझे मिला नहीं था। चलिए अब गाना सुनिए और लौट कर आइए और ढूंढते हैं आज का बॉलीवुड सरताज, देखते हैं कौन बनता है, नेटवर्क में जरूर रहिएगा।

0: पर मैंने तो ढूंढ लिया है बॉलीवुड सरताज। अब आप नहीं जानना चाहेंगे, आप नहीं सुनना चाहेंगे आज के बॉलीवुड सरताज कौन है। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और एक बार अपनी आवाज सुनाइए। हेलो हेलो, ये मुझे लगता है अभी ज्यादा ही खुश हैं और बिजी हो गए हैं कि इनको ऑन एयर आने का होश ही नहीं है। हेलो,
1: आवाज आ रही है मैम?
0: अब आ गई आवाज। कहाँ थे आप?
1: थैंक गॉड,
0: थैंक गॉड, बॉलीवुड सरताज बनते बनते रह जाते हैं आप, है ना?
1: जी, मैं पुष्पेंद्र गर्ग बात कर रहा हूँ मैडम।
0: हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से बात कर रहा हूँ। मैं
0: आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर, और अगर आपके आसपास रेडियो है तो थोड़ा दूर हट जाइए क्योंकि थोड़ा इको आ रही है, मुझे लग रहा है आपने कुछ तो किया है।
1: मैं कंपाउंडर पोस्ट पर हूँ।
0: तो आकाशवाणी रेनबो सुनने का टाइम कैसे मिल पाता है? मरीज नहीं आ रहे आपके आसपास?
1: मैडम आते हैं, कभी कभी चोरी कर लेता हूँ टाइम रेडियो सुनने के लिए जब कैश मिलता है तो।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा मूड को अच्छा रखने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए एफएम सुनने से अच्छा कोई रास्ता नहीं है, है ना?
1: जी मैडम, बहुत ये एक मतलब स्ट्रेस को दूर करने का एक बहुत अच्छा साधन है, जो बिना अपना दूसरा काम करते हुए भी इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और आप इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए। अभी बॉलीवुड सरताज बनने के लिए मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब भी ऑन एयर आपको देना होगा, ताकि लोगों को पता चले सही लोग को यहाँ पर बॉलीवुड सरताज बनाया जाता है। मैंने पूछा था कॉकटेल टू में शाहिद कपूर के साथ रश्मिका मंदाना है और एक और हीरोइन है जो लीड रोल में है, उनका नाम क्या है आपको बताना है। क्या नाम है?
1: वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनका कृति सेनन जी नाम है।
0: बिल्कुल सही जवाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉलीवुड सरताज बनने के लिए।
1: धन्यवाद मैडम, ये मेरा पहली बार कॉल अटेंड हुआ है मतलब call. और आज बहुत खुश हूँ। मैं एक आयुष डिपार्टमेंट के होने के नाते एक थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल दीजिए जी, बिल्कुल फटाफट बोलिए।
1: 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, सभी लोग योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दवाइयों से दूर रहें।
0: वाह, और अगर दवाई जो खुद दवाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा दवाइयों से दूर रहें, ऐसी वो कामना रखते हैं, कितनी अच्छी बात है।
1: जी मैडम,
0: थैंक यू सो मच।
1: बहुत धन्यवाद मैडम, मैं आपका ये हेलो डॉक्टर डेली लगभग सुनता ही हूँ।
0: अच्छा, डॉक्टर वाला प्रोग्राम आप रेडियो डॉक्टर जरूर सुनते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल बॉलीवुड ट्रेल्स में बॉलीवुड सरताज बने हैं। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन पुष्पेंद्र।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
0: ओके, बाय बाय। तो ये थे हमारे आज के बॉलीवुड सरताज पुष्पेंद्र, उनसे हम बात कर रहे थे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आगे कहां जाएंगे भाई।

अब ये शो खत्म होने को ही है, अगला शो अब आप अपनी पसंद के वेस्टर्न म्यूजिक एंजॉय करेंगे, मतलब अब वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, तो आप निहारिका के साथ रहेंगे और प्ले इट कूल सुनेंगे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मैं आऊंगी आपके लिए कुछ खास लेकर आऊंगी। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगी डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य, जो कि डाइटिशियन है और पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट है, और वो बताने वाली है आज हेल्दी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंट। इस टॉपिक पर वो बात करने वाली हैं। हम कई बार मिस कर जाते हैं एडोलेसेंट्स को भी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डाइट अपनी फॉलो करनी होती है, ताकि जब वो उनकी एज ऐसी आए तो उनको थोड़ा ताकत रहे, हिम्मत रहे और अच्छा अच्छा स्वास्थ्य रहे। अच्छे स्वास्थ्य के बाद तो मतलब अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है उसके बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें अपने हेल्थ पर किस तरह से ध्यान देनी है, एडोलेसेंस को अपने ध्यान हेल्थ पर किस तरह से ध्यान देना है, इस पर अगर आपको चर्चा करनी है, अपने सवाल पूछने हैं, कुछ भी बात करनी है, तो इस शो से जरूर जुड़िएगा। फिलहाल मुझे यानी बबिता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य

0: यह कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस

को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल

जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर ये वक्त है रेनबो हेल्पलाइन का और रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। आप सब जानते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि आज किस टॉपिक पर बात होने वाली है। अगर ये जानते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य हमारे साथ उपस्थित हैं एज एन एक्सपर्ट जो कि है न्यूट्रिशनिस्ट। अगर ये भी जानते हैं तो आपको बता दूं कि अब इस पर आपको ज्यादा देर नहीं लगाना है, आपको फटाफट अपने जो सवाल हैं वो लिखकर भेज देने हैं। क्यों? क्योंकि किशोरों के लिए जो भी खान पान है ना उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और मैं जिस तरह से आजकल नोटिस कर रही हूं ना, जितने भी एडोलेसेंट्स हैं वो जिस तरह से फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, अपने खान पान की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिटनेस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, मतलब उनको बहुत एक एक चीज की नॉलेज है कि किस तरह से क्या खाना है, कितना खाना है, किस प्रोपोर्शन में उनको क्या चीज लेनी है, सब कुछ वो नॉलेज में रखते हैं। वो सारे एडोलेसेंट्स भी हैं लेकिन ऐसे किशोर भी हैं जो बिल्कुल खाने पीने पर मतलब लापरवाही से एकदम फॉलो करते हैं डाइट को और कुछ भी खा लेते हैं। तो इन सब के बीच आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस तरह से आपके आसपास जो किशोर हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या कमियां देख रहे हैं, क्या अच्छाइयां देख रहे हैं और किस तरह से आपका जो सवाल है वो बनकर आ रहा है, निकल कर आ रहा है, आप डिसाइड कीजिए। मैं तो सबसे पहले वेलकम करती हूं डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य का जो कि है न्यूट्रिशनिस्ट, स्टूडियो में उपस्थित है और आज किशोरों के लिए आदर्श खान पान क्या होना चाहिए वो इस टॉपिक पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो डॉक्टर कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
2: धन्यवाद, नमस्कार सबको। और ये बहुत बहुत प्रमुख मुद्दा है और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने मुझे ये

0: मौका दिया, मुझे इनवाइट किया और इस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया।
1: और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आज हम आप सभी किशोरों के लिए ये डेडिकेट कर पा रहे हैं इस शो को। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरत है और बहुत सारी अवेयरनेस है जिसकी कमी की वजह से वो अपने डाइट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उन सब के बारे में इस शो में आपको बिल्कुल नई जानकारियां मिलने वाली हैं, बहुत अनोखी जानकारियां मिलने वाली हैं, जो अभी मैं भी सरप्राइज्ड हूं कि अभी बहुत सारी चीजें इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी की जा रही हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। और आप सबको पता है या नहीं ये आप जाने, लेकिन पता है तो आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, और नहीं पता तो बिल्कुल इसके बारे में डिटेल में पूछिए, जानिए, समझिए और अपने आप को एकदम फिट रखिए। किस तरह से सवाल पूछेंगे वो मैं बता देती हूँ। सवाल पूछने के लिए 2342-1080 या 2342-1084 पर आपको कॉल करना है। अगर दिल्ली NCR के बाहर से कॉल करें तो इन नंबर से पहले 011 जरूर लगाइए। और अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखकर भेज दें तो ये भी कर सकते हैं। 9868107070 पर आपको अपना सवाल लिखकर भेजना है। 9868107070। तो अब एक गाना हो जाए और उसके बाद लौट कर आते हैं और बात करते हैं डिटेल में कि किशोरों के लिए आदर्श आहार क्या होना चाहिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आकाशवाणी रेनबो और आज हम बात कर रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में हेल्थी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंट्स पर। हमारे एक साथ एक्सपर्ट जुड़ी हैं डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप सबके सवाल के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आपके सवाल भी आने शुरू हो गए हैं तो मुझे लग रहा है कि उनसे ही सारा काम हो जाएगा आज। तो फटाफट अगर अभी तक आपने अपना सवाल नहीं भेजा है कि आपके घर में भी कोई किशोर हो सकता है या आपके आसपास हो सकते हैं या आप खुद हो सकते हैं तो फटाफट फोन घुमाइए। अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है जिस तरह से आप फेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम खाने पीने को लेकर या फिटनेस को लेकर वो फटाफट फोन घुमाइए और हमारी एक्सपर्ट से पूछ डालिए। आज ही अपने सवाल का जवाब लीजिए और अपने आप को फिट रखिए। 2342-1080 या 2342-1084 ये दो नंबर्स हैं जिनको आपको डायल करने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए 2342-1080 या 2342-1084 पर आप कॉल कर सकते हैं या आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। उसके लिए नंबर है 9868107070 9868107070। तो सबसे पहले डॉक्टर कृष्णा यही जानना चाहेंगे किशोरावस्था किस उम्र के बीच में आती है और इसमें खास जरूरतें क्यों हो जाती हैं खान पान में और फिटनेस के लिए।
1: हाँ बिल्कुल, किशोर अवस्था वो उम्र का पड़ाव है जो आपके 10 साल से 19 साल तक के बालक और बालिकाएं होती हैं वो किशोर अवस्था के उसमें आती हैं। और इस समय हमारे लिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि बच्चा एक बालपन से युवा अवस्था की तरफ बढ़ने की तरफ जा रहा है और इस समय जो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बच्चे में प्यूबर्टी आना शुरू होता है जो युवाएं बनने के लिए उनकी हाइट में भी बदलाव आना शुरू होता है। तो ग्रोथ स्पर्ट जो आप कहें तो वो 10 से 19 साल के ही एज ग्रुप में देखा गया है। तो अब जैसे लड़कियां हैं जो किशोरियां हैं उनमें पीरियड्स शुरू होना या उनका जो यूट्रस है वो अभी डेवलप होना शुरू होता है तो हॉर्मोन्स उनके बीच बहुत चेंजेस होते हैं। तो इस समय उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, खून की कमी पाई जाती है, कैल्शियम और हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो अगर इस समय न्यूट्रिशन का खास ध्यान ना रखा जाए, उनके जो विटामिन्स इनटेक है या प्रोटीन का इनटेक है या एनर्जी का इनटेक है अगर वो उस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर ये आगे जाके हम एक कमजोर युवा को बड़ा करेंगे
0: और आगे उनकी जो समस्याएं हैं और भी बड़ी होती जाएंगी क्योंकि अभी से अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया किशोरावस्था क्या होती है और खास जरूरतें होती हैं क्योंकि बहुत सारे शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं, मानसिक बदलाव हो रहे होते हैं और इन पर ही हम बात करेंगे कि क्या जो खाना होता है

0: खान पान होता है वो उन मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनके मूड स्विंग्स भी होते
1: स्विंग्स
0: हैं,
1: होते हैं.
0: बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हमें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जिसको कहते हैं उनसे देखने को कई बार मिलता है
1: बिल्कुल.
0: अपने पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति. तो ये क्या खान पान से भी कम हो सकता है क्या? आपको
1: देखिए,
0: मतलब क्या लगता है?
1: खान पान का कुछ हद तक है इसमें रोल,
0: रोल है.
1: बट ये है कि इस समय क्या होता है कि बच्चे उस कंफ्यूजन वाले स्टेज में आ जाते हैं, क्योंकि वो ना वो बच्चे रह जाते हैं ना वो युवा होते हैं, क्योंकि वो जो प्रमुख जो डिसीजंस लेने होते हैं तब उनको बोला जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, और जब क्या कहते हैं उनको कुछ काम के लिए बोला जाता है या उनकी जिम्मेदारियां जब बढ़ानी होती

0: पढ़ाइयाँ बढ़ जाती है, क्योंकि अभी वो बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, उनकी क्लासेस जो है उनका सिलेबस ज़्यादा होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइमली अपने खाने खान पान पे ध्यान दें, तो उसमें उनको झटपट कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे उनका पेट भर जाए, या ऐसी कोई चीज़ें मिल जाए, वो वही खा के फिर संतुष्ट हो जाते हैं, जिससे उनको जो न्यूट्रिएंट्स जो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उनकी कमी हो जाती है, और इस वजह से मूड स्विंग्स भी होते हैं। कुछ अच्छे टाइम पे ना खाना खाने से उनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो फिर उनमें मूड उनके अपसेट हो जाते हैं, तो
1: अच्छा
0: ये भी चेंजेस देखे गए हैं।
1: ओके
0: तो टाइमली खाना ना खाना, न्यूट्रिएंट्स का ना मिलना, इस वजह से भी मूड स्विंग्स देखे गए हैं।
1: अच्छा, तो मूड स्विंग्स हमें यही पता था कि एक एज में होते ही है, इस एज में होते ही है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर सही खान पान हो तो
0: बिल्कुल
1: काफी हद तक
0: देखिए,
1: कंट्रोल हो
0: हार्मोनल
1: सकता
0: चेंजेस तो होते ही हैं, उसके
1: है।
0: साथ साथ जो डिमांड है बॉडी की इस टाइम पे, जो रिक्वायरमेंट होती है हर चीज की, वो भी थोड़ी बढ़ जाती है, जो हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस भी कहता है कि कुछ चीजों की, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, क्योंकि अभी जो इनकी हाइट बढ़ना है या जो इनकी हड्डियों की जो बनावट है उसमें मजबूती लाने के लिए कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो बोन हेल्थ अगर हम कहें, बोन हेल्थ और जो इनका जो फर्टिलिटी है या जो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन वो बहुत जरूरी होते हैं इस समय
1: बिल्कुल।
0: देना।
1: और आप सब जो अवेयरनेस है वो सब में है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो यही बता रहे हैं कि अवेयरनेस तो है बट फॉलो नहीं हो पा रहा है। उनके आसपास जो लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो यही है कि आज फास्ट फूड का जमाना है। तो इसी तरह का एक मैसेज मुझे आया है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ले लेती हूँ। अमन कुमार बागपत से लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि फास्ट फूड का बड़ा कमाल है, पहले विज्ञापन का जाल है, फिर जेब का बुरा हाल है, और बाद में अस्पताल है। बर्गर पिज्जा खाते खाते घर की रोटी भूल गए, ऊपर से प्लास्टिक का कचरा अलग, पर्यावरण भी बोले भाई बस कर अब। मेरा सवाल है, इन्होंने लिखा है कि क्या फास्ट फूड सिर्फ खराब खान पान की आदत है, या फिर ये दिखावे, फिजूल खर्ची, आलस, मोबाइल की लत और अपनी संस्कृति से दूर जैसी कई दूसरी आदतों का पैकेज ऑफर भी है। बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए।
0: थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल लोगों का जो रुझान है, और बोला जाए कि जब झटपट जो मिल जाए, झटपट जो बन जाए, वो खा के हम लोग अपना काम चलाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, और आजकल माँ बाप दोनों ही कामकाजी हो चुके हैं, तो अब उनको भी लगता है कि बच्चों के लिए ऐसी कोई चीज़ दी जाए जो झटपट हो जाए, और विज्ञापन का कमाल तो है ही, क्योंकि हमें वो ऑप्शंस देते हैं कि आप क्या ले सकते हैं। लेकिन आजकल इस पे भी बहुत अवेयरनेस का काम सरकार कर रही है, और ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो जल्दीबाजी में जो चीज़ें बनती हैं, या जल्दीबाजी में जो चीज़ें दी जाती हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स और हाई फैट, हाई सोडियम भी उसमें, नमक की भी मात्रा ज्यादा होती है, शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो वो आगे चल के आपको नुकसान भी दे सकती हैं। तो उसके कुछ और भी तरीके किए जा सकते हैं, तो उससे आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके आसपास स्वास्थ्य कर्मी हैं, या आप डाइटिशियंस हैं, या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या आप अपने यहाँ के डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या तरीके किए जा सकते हैं कि आप फास्ट फूड को रिप्लेस कर सकते हैं।
1: इस पर हम बात करेंगे। अभी मधुबनी बिहार से भी मोहम्मद मजहर, इन्होंने लिखा हुआ है, बच्चों को बाहर के पॉलीपैक फूड जैसे आलू चिप्स, कुरकुरे, भुजिया वगैरह नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें खतरनाक केमिकल्स होते हैं, पाम ऑयल होता है, और हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, कैंसर जैसी समस्या भी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिलहाल मेरे पास डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य है, बैठी हुई हैं स्टूडियो में, और आप सबके सवाल जो है वो शामिल कर रहे हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि एकदम स्वस्थ रहें हमारे किशोर, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है, और उन पर काफी कुछ टिका हुआ है, उनके स्वास्थ्य पर काफी कुछ टिका हुआ है। तो हेल्थी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंस, इस पर आज चर्चा कर रहे हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य से, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। फायदा उठाइए, फटाफट फोन करिए अपने सवाल के साथ, 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करना है आपको। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। रेनबो हेल्पलाइन, बबिता त्रिपाठी के साथ।

0: माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है, किशोरों के लिए आदर्श आहार क्या होना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य से, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप सबके सवालों का जवाब दे रही हैं, मेरे भी सवालों का जवाब दे रही हैं। और फिलहाल मेरे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, पहले तो बोथ मैम को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून
1: जी। राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ
0: जी।
1: मैम, पहला सवाल तो मेरा ये है कि हमें जो खाना खाते वक्त पानी जो पीते हैं, वह खाना खाने के बाद पीना चाहिए या खाना खाते वक्त बीच बीच में पीना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कई लोग कहते हैं कि खाना खाने से पहले आपको सलाद खाना चाहिए और खाना खाने के बाद फ्रूट खाने चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? तीसरा सवाल दूध की बात करते हैं कि दूध में ये कहा जाता है कि किशोरावस्था में कौन सा दूध हमें बेस्ट रहेगा जो पीना चाहिए? इन दिनों थैली का भी आ रहा है, बॉटल्स का भी आ रहा है, डब्बे का भी आ रहा है, भैंस गाय का भी आ रहा है, तो बेस्ट दूध कौन सा रहेगा? और चौथा और आखिरी सवाल,
0: एक बार में एक ही सवाल पूछिए, और जो क्योंकि मैम को याद रख पाना और सबका प्रॉपर जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहला सवाल आपने पूछा पानी के लिए, खाते वक्त पानी पीना चाहिए या खाने के बाद पीना चाहिए?
2: ओके, तो सबसे पहले हम आपका पहला सवाल लेते हैं।
0: हाँ, शॉर्ट में जी
2: ये है कि देखिए, अगर आप खाना खाते साथ साथ में अगर आप पानी भी पीते रहेंगे तो आपका जो आप खाना खा रहे हैं वो पूरा नहीं खा पाएंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस मील की, जो आपकी कैलोरीज उस मील टाइम पे आपको चाहिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप पानी पीते रहेंगे। और बेसिकली पानी ज्यादा तभी पीते हैं जब आपके खाने में ऐसी चीजें होती हैं जो पचाने में या आपको लेने में, सॉलो करने में या उसको डाइजेस्ट करने में उस समय दिक्कत होती है। ज्यादातर स्पाइसी फूड्स होते हैं आपके, मिर्च वाली चीजें होती हैं, तो इससे क्या होगा नुकसान कि आपकी जो इनटेक है वो कम हो जाएगी, जो आपकी न्यूट्रिएंट चीजें हैं वो नहीं जा पाएंगी। तो खाना खाने के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए या उससे पहले थोड़ा सा ले सकते हैं।
0: ओके मैम, कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? कहते हैं कई लोग आधे घंटे, कोई लोग एक घंटे, या कोई लोग कहते हैं उसके बाद भी लेना चाहिए।
2: 15-20 मिनट बाद भी आप पी सकते हैं।
0: पी सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बोलिए।
1: हाँ जी मैम, दूसरा सवाल ये है कि खाना खाने से पहले कहा जाता है कि सलाद खाओ और खाना खाने के बाद फ्रूट खाना चाहिए, कहाँ तक सही है?
0: खाना खाने से पहले सलाद और खाने के बाद फ्रूट, कितना सही है?
2: ओके, ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ले लीजिए कि जो डायबिटिक हैं या जिनको अपनी वेट कम करना है तो उनको हाई फाइबर डाइट उनके डाइट में बढ़ाया जाता है, या उन लोगों के जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनमें ये सजेस्ट किया जाता है, उनको ये सुझाव दिया जाता है कि वो पहले एक प्लेट सैलेड लें, उसके बाद वो रोटी या चावल जो भी ले रहे हैं वो लें, या उसके बाद भी फल अगर ले रहे हैं तो वो एडेड आपको कैलोरीज और बढ़ा देगा। मतलब बाद में अगर आप फ्रूट लेते हैं तो आपको कैलोरीज बढ़ाएगा।
0: ओके,
2: तो मेरे हिसाब से तो हम यही सुझाव करेंगे कि आप सैलेड तो जरूर ले सकते हैं खाना खाने से पहले, लेकिन खाना खाने के बाद अगर आप फ्रूट लेंगे तुरंत बाद तो वो आपकी कैलोरीज बढ़ाएगा।
0: ओके, तो जिनको कैलोरीज नहीं बढ़ानी है तो उन्हें फ्रूट

0: अवॉइड करने चाहिए। अब किशोरावस्था से जुड़ा क्या सवाल है आपका?
1: हाँ मैम, तीसरा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों दूध किस्म किस्म मार्केट में आ रहे हैं, तो बेस्ट वो कौन सा रहेगा? थैली का भी आ रहा है, बॉटल का भी आ रहा है, मशीन का भी आ रहा है, टोकन का भी आ रहा है, या फिर जो है आपका गाय भैंस का भी होता है?
0: बेस्ट दूध थैली वाला या इतना तो ऑब्वियसली सबको समझ में आता है कि अगर फ्रेश ले रहे हैं तो हम फ्रेश बेस्ट रहेगा। कोई और स्पेसिफिक सवाल आपका?
1: हाँ, चौथा सवाल मैम ये है कि दिमाग के लिए, चूंकि हम 10th और 12th एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें मतलब हमारा 50% करियर जो है दाव पे लगा होता है, तो माइंड के लिए बेस्ट डाइट कौन सी रहेगी? अखरोट रहेंगे, बादाम रहेंगे, पिस्ता केसर रहेगा, ये बताएं।
0: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
1: बहुत
0: थैंक यू। तो इन्होंने जिस तरह से बोला कि जो किशोरावस्था में एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके पास प्रेशर रहता है पढ़ाई का, तो ऐसे में कहते हैं अखरोट खाओ, बादाम, पिस्ता, इसमें वो पूछना चाह रहे हैं कि कितना सही है और क्या खाना चाहिए।
2: इसमें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि एक तो अपना मील टाइम पे लें बच्चे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
0: और सबके पास मुझे लगता है बादाम पिस्ता सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है।
2: मूंगफली ले सकते हैं, मूंगफली को एक तरह से गरीबों का बादाम भी बोला जाता है। तो जैसे रात में भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये मंच करने के लिए अगर वो चिप्स कुरकुरे ना खा के
0: ये
2: वो इस तरह के नट्स ले सकते हैं।
0: जी, एक नट्स पर एक सवाल और मुझे दिख रहा है। नट्स पर क्या एक अंजीर पर सवाल है कि अंजीर को खाने से, एक दिन में एक अंजीर खाने से क्या बॉडी को सारे विटामिन मिल जाते हैं? प्लीज बताइए ये किसका मैसेज है, ये तो नहीं लिखा, लेकिन इस तरह की कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है।
2: देखिए, अगर हम तुलना करें तो एक ड्रग है, एक दवाई को हम कभी भी खाने से तुलना नहीं कर सकते कि आपने प्रॉपर एक फ्रूट ले लिया या आपने एक रोटी खा लिया और आपको सारे विटामिन्स मिल गए, तो इसलिए हम उसके तुलना नहीं कर सकते। हाँ, विटामिन्स हर फ्रूट में ज्यादा होता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप कोई भी फल अगर आप लेंगे तो उसमें आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि आप अंजीर ही खाएंगे तभी आपको वो सारी चीजें मिले, और उसकी जगह आपने बनाना खा लिया तो आपको वो नहीं मिलेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है।
0: एक चीज, अब जो मेन हमारा टॉपिक है आज का, उस पर हम आते हैं कि आहार क्या लें किशोर, जो उनके लिए बहुत जरूरी है, तो किस तरह की चीजें हैं जो अपने डाइट में वो शामिल करें, और पॉसिबल हो तो एक चार्ट बताइए जिस सुबह से लेकर रात तक का कि क्या क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए, सुबह क्या लेना चाहिए, दोपहर में उनकी डाइट में क्या होना चाहिए और शाम को क्या होना चाहिए।
2: देखिए, सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको एक आंकड़ा शेयर करना बहुत जरूरी समझूंगी।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि जो नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर सर्वे का जो डेटा आया है अभी, जो आपका 6th डेटा आया है, वो ये कह रहा है कि जो ओबेसिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, और महिलाओं में ये ओबेसिटी आपकी 24% से 30% हो चुकी है।
0: अच्छा,
2: तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो किशोर अवस्था में जो खान पान है या जो बाल अवस्था में जो खान पान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वो जाके आगे जाके जो अडल्ट बन रहे हैं तो उनमें वो चीजें पाई जा रही है। तो इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं? जो हेल्दी डाइट है, तो हेल्दी डाइट में सारे जो आपके फूड ग्रुप्स आते हैं उसका, उसको समाकरण करना, उसको हमारे खाने में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जैसे ज्यादातर देखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में या तो बहुत ज्यादा होता है या फाइबर्स या सिर्फ प्रोटीन, क्योंकि आजकल लोगों को मसल्स बिल्ड करना है या वेट लॉस करना है तो सिर्फ प्रोटीन ही पे ही वो ज्यादातर फोकस कर रहे हैं, और जो बाकी चीजें हैं उसको भूलते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इस तरह से खाद्य को खा लिया जाए, जो खाद्य के जो अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं उनको समाकन किया जाए, खाने में लिया जाए, जैसे आपके प्रोटीन से रिलेटेड जो फूड ग्रुप्स हैं और आपके विटामिन्स, मिनरल्स रिच जो फूड ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और आपके आयरन जिसमें मिले, सब चीजों को लेना जरूरी है। तो सवेरे से अगर रात तक का हम एक किशोर का बनाना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि हम शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से ही करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग में हम, जिस तरह से अभी नट्स की बात हो रही थी, तो हम नट्स दे सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में।
0: अच्छा,
2: कि वो एक मुट्ठी भर कुछ भी, चाहे वो मूंगफली हो या बादाम हो चाहे अखरोट हो, कोई भी चीज भिगो के उसको लिया जा सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास काजू बादाम ही आपको लेना है, आपके पास अगर मूंगफली है तो वो भी आप ले सकते हैं
0: और भिगो के लेना,
2: भिगो के, या आप जैसे पहले काले चने और गुड़ लिया जाता था वो भी बहुत अच्छी चीज है जो शुरुआत दिन की उसके साथ की जा सकती है।
0: ओके,
2: शुरू मॉर्निंग में क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो उस समय एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो

0: अच्छा नाश्ता होना चाहिए, अनाज वाला नाश्ता होना चाहिए, ना कि कुछ एक ही चीज लेके या एक सैलेड लेके चले जाएं,
1: ज्यादातर बच्चे दूध पी के चले जाते
0: दूध
1: हैं
0: पी के
1: क्लास।
0: चला जाते
1: हाँ
0: हैं। तो उस समय आपको कुछ ग्रेन्स वाला नाश्ता जरूर होना चाहिए, और
1: अच्छा
0: वो जल्दी जो बन जाए वो, जैसे आप दलिया दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, या कोई रोल बना के दे सकते हैं जिसमें सब्जियों को अंदर चपाती में डाल के या पराठे के साथ, तो वो
1: अच्छा
0: झटपट भी हो जाता है और बच्चे आराम से उसको ले भी सकते हैं स्कूल जाते टाइम। तो इस तरह से अनाज की मात्रा मॉर्निंग में ही बच्चे को मिल जाती है, तो एक अच्छा कैलोरीज, अच्छे न्यूट्रिएंट का लोड मिल जाता है बच्चे को। उसके बाद आपको अगर देखा जाए तो मिड मील हम जिसे हम कहते हैं, जो आपका 10 से 11 बजे वाला टाइम होता है, उस समय आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं।
1: ओके
0: उसके बाद लंच का टाइम होता है, लंच में आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, सेहत की थाली होनी चाहिए जिसमें सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए, जिसमें आपकी रोटी या कार्ब्स आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आने चाहिए, रोटी या राइस, फिर दाल, आपका पल्स वाला ग्रुप आता है जो प्रोटीन वाला ग्रुप है, उसमें से दाल होनी चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जियां आती हैं, सैलेड आता है, तो वो भी होना चाहिए खाने में, और साथ में आप कर्ड दे सकते हैं डाइजेशन बेटर करने के लिए।
1: ओके
0: तो इस तरह से एक बैलेंस मील लंच में जरूर होना चाहिए। फिर शाम का जो टाइम है उस समय भी बच्चे खेलने जाते हैं, एकेडमी जाते हैं या खेलकूद करते हैं, या कॉलेज से आने का टाइम होता है, तो उस समय भी बच्चों को आप कुछ हाई प्रोटीन चीज दे सकते हैं या कोई शेक्स दे सकते हैं वहां पे। ज्यादातर देखा गया है कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं,
1: हाँ बिल्कुल
0: कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो एकदम एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, उसकी उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत अच्छे से हमारी देसी चीजों से, जैसे हम छाछ दे सकते हैं, मसाला छाछ बन सकता है घर पे, लस्सी दे सकते हैं, कोई भी दूध का शेक बना के दे सकते हैं फ्रूट्स को ब्लेंड करके उनके साथ, तो इस तरह से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नींबू
1: ओके
0: पानी भी है, और फिर रात का खाना, इस तरह से पूरा बैलेंस करके आप मील बनाई जा सकता है।
1: ये आपने बहुत अच्छा एक तरह से आपने बताया। रात के खाने में वही चीजें रिपीट कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं या
0: बिल्कुल,
1: फिर कुछ खास ध्यान रखना है रात को
0: खास
1: खाते में?
0: ध्यान कुछ नहीं है, इसमें भी आपको बैलेंस ही देना जरूरी है, आपका प्रोटीन इंटेक भी प्रॉपर होना चाहिए, आपके विटामिन्स की सैलेड, वेजिटेबल्स, फाइबर्स, इनका भी इंटेक बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हमें डिनर में सिर्फ सैलेड लेना है वेट लॉस के लिए, अगर इस तरह से आएंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जो है इस युवा, इस एज ग्रुप को, उसमें फिर कमी हो जाएगी।
1: तो किशोरों को वो चीजें फॉलो नहीं करनी है वो, क्योंकि आजकल बड़ा फैशन में हो गया कि रात का खाना हमें कम लेना है या पहले ही खा लेना है या फिर रात में बिल्कुल नहीं खाना है,
0: हाँ जी
1: हल्का
0: बिल्कुल
1: रखना है। तो ये सब चीजें वो सारे किशोर भी फॉलो कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो इतने ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस या क्या कह सकते हैं, जैसे उनको मॉडलिंग में जाना हो इस तरह का कुछ पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं
0: जी
1: और इससे
0: जी
1: न्यूट्रिशन की कमी पाई जा रही है जैसा
0: हाँ,
1: देखने को
0: तो
1: मिल रहा है।
0: इसमें बबीता जी मैं ये कहना चाहूंगी कि इसी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग,
1: हाँ
0: या
1: ये सब
0: आप
1: शुरू
0: ये
1: कर
0: देख
1: चुके हैं।
0: लीजिए कि वो एक ही तरह की चीजें या डिनर बिल्कुल स्किप कर रहे
1: हाँ
0: हैं और
1: और
0: सिर्फ
1: ज्यादातर
0: सैलेड्स ले रहे
1: चीजें तो उन्हें
0: हैं,
1: पसंद ही नहीं होती हैं कि ये
0: बिल्कुल
1: खाना नहीं है, कुछ चटपटा बना है, कुछ अच्छा बना हुआ है। अच्छा इन द सेंस उनके लिए जो अच्छा कहलाता है तला भुना, वो अगर बना हुआ है तो ही अच्छा है वो, और वो उन्हीं चीजों के लिए हाँ कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है उनको खिलाने में। अभी एक सवाल भी आया था मेरे पास कि जो अभी कॉल कट गई, उन्होंने कहा कि बच्चे कुछ सब्जियां हैं जो बिल्कुल खाना ही नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसे में क्या करा जाए?
0: हाँ देखिए, ये ना एक तरह से व्यवहारिक प्रॉब्लम भी है, मतलब अगर देखा जाए कि इनका बिहेवियर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, कि अगर इन्हें बचपन से जो चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं या नहीं इंट्रोड्यूस की गई है, नहीं पहचान कराई गई है, तो वो बच्चे उस चीज़ को पसंद नहीं करते,
1: पसंद नहीं
0: और
1: करते,
0: कई बार ये भी देखा गया है कि जो माँ को पसंद नहीं होती है वो चीज़ें
1: बनती नहीं
0: बच्चे
1: घर
0: के लिए वो ऑफर नहीं करती हैं, या अगर
1: में।
0: माँ को ठंड लगती है तो बच्चे को वो ज़्यादा स्वेटर्स पहना देते हैं। उसी तरह
1: हाँ
0: खाने खान पान या घर के खान पान का भी बहुत फर्क पड़ता है, कि अगर
1: हाँ
0: आपके घर में दाल एक ही टाइम बनती है तो वो एक ही टाइम बनेगी,
1: जी
0: तो बच्चों का भी व्यवहार वैसा हो जाता है। उसी तरह जैसे घिया तोरी आपके घर में नहीं बनती है, आपके बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके घर में वो चीजें अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, उसका व्यवहार ही नहीं सिखाया गया है, तो वो फिर बड़े होके भी, वो किशोर अवस्था तक बच्चों में क्या देखा गया है कि फिर वो उस चीजों को पसंद नहीं कर पाते, या आप कह सकते हैं कि उनमें वो टेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाता है कि ये चीजें भी खाने की होती हैं। तो फिर इसमें ये कर सकते हैं कि आप अगर वो सब्जियां, या आपको पता है कि ये सब चीज़ें बहुत फायदेमंद है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसको अलग-अलग तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे आप घिया अगर

0: अगर बच्चे नहीं पसंद करते तो घिया का रायता बनाया जा सकता है। घिया को ग्रेट करके उसको स्टफिंग करके उसके चपाती या अलग चीज़ें भी बन सकती है। आजकल जैसे खीरा है और आपको इस तरह से कोल्ड सूप्स भी बनते हैं।
1: लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पसंद नहीं आता है। तरुण कुमार जी भी कह रहे हैं कि इनको गर्मी के दिनों में अंडा खाने का बहुत मन करता है और कभी कभी मटन चिकन का भी मन करता है, और हैवी डाइट लेते हैं, गैस की समस्या हो जाती है, तो क्या करें?
0: देखिए, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है कि आप गर्मियों में अंडा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोटीन रिच चीज़ें तो आपको हमेशा ही लेनी है। बट हाँ, आपका डाइजेशन ठीक करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो उसके लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके दिनचर्या में, और आपकी जो मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक है तो आप हाई प्रोटीन कोई भी डाइट ले सकते हैं। आप अंडा ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आपकी सॉल्ट इनटेक है और जो फैट इनटेक है उसको ज़रूर हमें कम करना चाहिए हमारे पूरे दिनचर्या में। जो थोड़ा सा नमक कम और थोड़ा सा तेल कम अगर इस्तेमाल किया जाए खाना बनाने में ही, तो वो अगर हैबिट में ही आ जाए तो जो हाइपरटेंशन की दिक्कतें दिखाई दे पड़ रही हैं आजकल, या इंडाइजेशन बहुत हो रहा है, लेट नाइट खान डिनर करने की वजह से भी इंडाइजेशंस होते हैं, तो ये सबको भी आप ठीक कर सकते हैं।
1: अब अंडे की बात हुई तो मैं सोच रही हूँ गाना भी अंडे के ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन आप सबके सवाल अगर अभी भी रह रहे हैं तो फटाफट फोन घुमाइए 2342-1080 या 2342-1084, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए 9868-1070-70 पर। आज हम बात करें किशोरों के लिए आदर्श आहार क्या होना चाहिए। डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं, तो रेनबो हेल्पलाइन का पूरा लाभ उठाइए। आपके साथ हूँ मैं, बबीता त्रिपाठी।

0: माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: यह आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है। सरकार की तरफ से किशोरों के आहार के लिए, उनकी फिटनेस के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, खास ध्यान दिया जा रहा है, ये तो पता ही नहीं था। और अगर आपको पता था तो क्या आपने लाभ उठाया, और नहीं पता था तो डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो हमें बताने वाली हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हमें कई चीज़ें होती हैं जो पता नहीं होती, हमारे एडोलेसेंट्स को नहीं पता होती हैं, और वो जाकर कंसल्ट करें कि उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उनकी फिटनेस पर जो कोई भी अगर उनको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, या उनके मानसिक व्यवहारिक जो चेंजेस हैं उनके ऊपर कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी कम से कम मुझे तो नहीं थी। डॉक्टर कृष्णा बताने के लिए धन्यवाद, और फिलहाल जो हमारे लिसनर्स हैं उनको डिटेल में बताइए, बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ जी बबीता जी, ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में चर्चा करना, क्योंकि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ये एक योजना है, ये प्रोग्राम है जो 2014 में लॉन्च हुई है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी दिल्ली सरकार में अलग से डेडिकेटेड आपके एडोसेंट क्लिनिक्स चलती हैं, जिसमें सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल रूटीन ओपीडीज होती हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है, किशोर अवस्था अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, वो झिझक सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए अलग से क्लिनिक बनाई गई है, सरकार ने बनाया है, प्रावधान रखा है, जिसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में बात होती है उस क्लिनिक में, उसके स्पेशलिस्ट बैठते हैं वहाँ पे, वहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बातें होती हैं, सब्सटेंस एब्यूज, जो इस एज ग्रुप को जो ड्रग एब्यूज या सब्सटेंस एब्यूज बहुत ज्यादा देखा गया है, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, कैसे रिहैब किया जा सकता है अगर कोई इसके शिकार हो चुका है, तो वो हर तरह की मुसीबतों को हर समाधान के लिए क्लिनिक तैयार हैं। और ये दिल्ली सरकार का ये इतने सालों से प्रोग्राम चल रहा है, जो हर शनिवार को ओपीडी में अलग से एडोलेसेंट क्लिनिक की ओपीडीज में जाके किशोर अवस्था अपने माँ बाप के साथ वहां जाके मिल सकते हैं, अपने इलाज करा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर उनको इलाज की जरूरत है या उनको कोई मानसिक सहारे की जरूरत है, मानसिक काउंसलिंग की जरूरत है, तो उसका भी यहाँ पे प्रावधान है।
0: अच्छा। और ये जो सुविधाएं हैं इनका लाभ उठाइए, और बहुत ज़रूरी है लाभ उठाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आजकल नोटिस कर रहे हैं, और पैंथर तोमर भी कुछ ऐसा ही लिख रहे हैं कि आज देश में कई किशोर टाइप 1 और टाइप 2 शुगर से सफ़र कर रहे हैं। क्या इसका मूल कारण खानपान है, और बाहर मार्केट में निकलते हैं तो मोमोज की दुकान पर किशोरों की लाइन लगी होती है, तो उनको क्या सलाह देंगी आप?
1: बिल्कुल, ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस

0: कहा ही जाता है, जिसमें आपके हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ ये जो डाइट आपकी जिसमें डेफिशिएंट है, विटामिन्स नहीं है, और कार्ब्स और फैट और का जो इंटेक है बहुत ज़्यादा है, उस वजह से इस चीज़ों को और ख़राब करता जा रहा है। इसीलिए इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा वेट गेन का देखा गया है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीरियड्स डिले होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिरेंज होना, वो टाइमली ना शुरू होना। फिर ये भी देखा गया है कि फीमेल्स में हेयर ग्रोथ होने लगती है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, उससे उनको बॉडी शेमिंग और दूसरी तरह की इश्यूज भी आते हैं, जिससे वो और ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। फिर देखा ये भी देखा जाता है कि जो बाल किशोर और किशोरियाँ हैं, वो उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, उन्हें बॉडी शेमिंग होती है, और बॉडी शेमिंग की वजह से वो अपनी बातों को खुल के किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, या तो वो सोशल होना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, और खान पान अगर उन्होंने ज़्यादा ले लिया तो उनको ये गिल्ट होने लगता है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा। फिर उनमें एक तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, जिसमें वो बुलिमिया में जिसे कहते हैं, उसमें वो वॉमिट करते हैं खाना खाने के बाद गिल्ट से,
1: अच्छा
0: तो उससे उनको और स्टमक इन्फेक्शन या और प्रॉब्लम्स भी, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं।
1: ओके। एक सवाल इन्होंने और भी लिखा है कि कई किशोर जिम जाते हैं, जिम में उन्हें तरह तरह के सप्लीमेंट्स खाने के लिए दिए जाते हैं, क्या बिना डॉक्टर की सलाह के ये सप्लीमेंट्स खाना सही है?
0: देखिए, मैं बिल्कुल सलाह नहीं करूंगी कि आप बिना डॉक्टर के सलाह से, सिर्फ जिम के इंस्ट्रक्टर के सलाह से इस तरह की चीज़ें शुरू करें, क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन ही वो सजेस्ट करते हैं, या वो ये कहते हैं कि पूरे दिन आप कुछ ना लेके 6 या 8 एग्स, बॉयल्ड एग्स ले लीजिए
1: अच्छा
0: प्रोटीन्स के लिए या मसल बिल्ड करने के लिए। तो मैं इस चीज़ की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी, हमेशा आपको एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले।
1: एक गुजरात से सवाल आया है खुशबू का, उन्होंने कहा है कि वेट पीनट्स हेल्प करते हैं इम्यूनिटी में, बॉडी की इम्यूनिटी में।
0: वेट पीनट्स मीन्स आप कह रहे हैं बादाम को अगर भिगो के लिया जाए तो।
1: जी, पीनट्स की को।
0: जी, पीनट्स देखिए वो प्रोटीन है, और अगर हम उसे यूज इस्तेमाल करें तो वो हर तरह से वो फायदेमंद है, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टोरेज कैसा है, आपने किस तरह का बादाम जो यूज़ करें, कहीं वो किसी कीटाणु से संक्रमित तो नहीं है, कहीं वो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हुए हैं, तो फ्रेश होने चाहिए आपके, बहुत पुराने नहीं होने चाहिए पीनट्स से, क्योंकि पीनट्स एलर्जीज बहुत देखी गई हैं अगर वो पुराने होते हैं
1: तो मतलब इनका ये है कि हम कई बार ना ज्यादातर हम फ्राई करके भून के पीनट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनको भिगो के खाने से
0: भिगो के भी खा
1: ज्यादा फायदा होता है?
0: ज्यादा नहीं, प्रोटीन है उसमें फायदा करेगा, वो इजीली
1: बट ये
0: डाइजेस्टेबल हो
1: मुझे
0: जाता
1: लगता
0: है।
1: है कि वो गर्म नहीं होगा, उसकी तासीर ठंडी हो
0: वो
1: जाती
0: एक्चुअली
1: होगी।
0: इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं जब हम कोई चीज को भिगो के थोड़ा फिर इस्तेमाल करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा पाचन पाचन को के लिए आसान हो जाता है।
1: और यही बाकी के ड्राई फ्रूट्स पर
0: बिल्कुल
1: भी लागू
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: जी
1: तो हमारे पास टाइम तो अभी कमी है, लेकिन काफी कुछ आपने कवर कर लिया और बहुत अच्छी सलाह दी है, और बहुत सारी बातें हुई हैं जो हमारे किशोरों को खास तौर पर काफी हेल्प करने वाली हैं।
0: इसमें एक चीज मैं,
1: जी बिल्कुल
0: सॉरी
1: ऐड
0: बबीता
1: करिए।
0: जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, बहुत जरूरी है कि जो सरकार के जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहां पे इन किशोर अवस्था के लिए आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स भी उनको वीकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत फायदा, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है इनमें एनीमिया बहुत पाया जाता है, तो एनीमिया को क्योर करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है, और आयरन फॉलिक एसिड भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है,
1: तो इस मदद का उनको लाभ उठाना चाहिए
0: बिल्कुल,
1: किसी
0: लाभ
1: भी
0: उठाना
1: गवर्नमेंट
0: चाहिए
1: हॉस्पिटल में जाकर के।
0: बिल्कुल।
1: तो थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए डॉक्टर कृष्णा।
0: थैंक यू।
1: तो आज हमने बात की हेल्थी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंट्स, और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत, लौट कर आऊंगी जल्द ही। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और लेकर आई हूं प्रोग्राम आशियाना। और आशियाना में बात होती है परिवार की, रिश्तों की और उन खूबसूरत पलों की जो हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए लेकिन दिन के आखिर में जिस जगह हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है वो है हमारा घर, हमारा परिवार। इसलिए परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा खास प्रोग्राम आशियाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आने वाले हैं शानदार गाने, दिल को छू लेने वाली बातें और कुछ प्यारे से किस्से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार गाने के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, परिवार के साथ भरपूर जी रहे होंगे आप अपनी इन छुट्टियों को। जी हाँ, और कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे अपने बच्चों की इन गर्मियों की छुट्टियों को खास बनाया जाए, कैसे कुछ स्पेशल प्लानिंग की जाए जिससे कि वो इंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों, परिवार वो जगह है जहाँ हमारी हर खुशी दोगुनी हो जाती है और हर परेशानी ना आधी रह जाती है। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे ना तो हर छोटी सी बात को लेकर बस घर भागते थे। अच्छे नंबर आए हो, या फिर साइकिल चलाना सीख लिया हो, या फिर कोई परेशानी की बात हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, चोट लग गई हो, और ऐसे में सिर्फ एक ही नाम जुबान पर आता था, वो था मम्मा। क्योंकि हमें पता था कि हमारी खुशी सबसे पहले हमारा परिवार समझेगा, और परेशानी में मरहम भी परिवार लगाएगा। माँ हमारी देखभाल करेगी, पूरे अच्छे तरीके से करेगी। तो चलिए अब एक शानदार गाना उसी परिवार के नाम, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले माँ का नाम तो याद आता है, और कहते हैं फिर परिवार के बाकी लोग बोलते हैं बस एक ही नाम तेरी जुबान पर रहता है, उसी का नाम जपती रहती है।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में हम बात कर रहे हैं परिवार की और परिवार के साथ अपनी बॉन्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस पर हो रही है चर्चा। तो दोस्तों, आजकल ना हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते कि जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। इसलिए रिश्तों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका कोई ना बड़ा फॉर्मूला नहीं होता। बस दिन के कुछ मिनट अपने परिवार को देना ज़रूरी है, एक साथ चाय पीना, लंच करना या डिनर करना, और साथ साथ दिन भर की बातें साझा करना। यही होते हैं वो छोटे छोटे पल जो बड़ी यादें बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हम अपनी मुश्किल है, परेशानी है, वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और वो बस आधी रह जाती है।

परिवार के सपनों की उड़ान ना बहुत खास होती है, बहुत मायने रखती है, और साथ ही साथ जो मायने रखती हैं वो होती हैं परिवार की छोटी छोटी बातें। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके फ़ोन में इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा मम्मी पापा, भाई बहन या फिर कोई ख़ास। क्योंकि ना मुश्किल वक्त में सबसे पहले ना हमें हमारा परिवार ही याद आता है। इसीलिए आज आपको करना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम, जब आप घर पहुंचे तो अपने किसी भी प्रिय सदस्य को, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो या फिर कोई खास, उन्हें बिना किसी वजह के थैंक यू बोल दीजिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तो आशियाना में ना हम अपने परिवार में अपने परिवारी जन जो हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन, सबकी सेहत का ना ख्याल रखते हैं और कहीं ना कहीं उनको उत्साहित करते हैं कि वो योग करें या फिर अपना भोजन समय पर करें। और इसी कड़ी में जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस खास मौके पर आकाशवाणी रेनबो लेकर आया है एक खास सीरीज आरोग्य पथ। और आज आरोग्य पथ में हम बात करने वाले हैं पवन मुक्त आसन की, जो योग का एक बेहद सरल और लाभकारी आसन माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि ये आसन शरीर में गैस की समस्या को कम करने और पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाने में, उसे बेहतर बनाने में मदद करता है। इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पीठ के बल लेटना होगा, दोनों घुटनों को मोड़कर छाती की ओर लाना होगा, हाथों से उन्हें पकड़ना है जैसे कि आप अपने घुटनों को हक कर रहे हों, फिर धीरे धीरे से सिर उठाकर अपनी चिन को घुटनों के करीब लाने की कोशिश करनी है। कुछ सेकंड तक आपको इस अवस्था में रुकना है जितना आपसे हो सके और फिर वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाना है धीरे धीरे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ये आसन कर रहे हो तो आपको नाक से सांस लेनी है, मुंह बिल्कुल बंद रखना है। और पता है इस आसन को अगर आप रोज करते हैं तो पेट की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी, पाचन में सुधार आएगा, शरीर में हल्कापन आपको महसूस होगा। तो दोस्तों, स्वस्थ जीवन की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए।

बिल्कुल दोस्तों, हमें भी आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन समय कुछ ऐसा है कि हमें आपको कहना होगा बाय बाय, क्योंकि अब आगे जो समय है वो है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एनसीईआरटी का। तो जाने से पहले आपसे बस इतना ही कहूंगी कि रिश्तों को समय दीजिए, अपनों को महत्व दीजिए और हर दिन परिवार के साथ कुछ खूबसूरत पल जरूर बिताइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, और साथ ही साथ आकाशवाणी रेनबो को छोड़कर कहीं मत जाइए।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
2: बचपन की यादों को ताज़ा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं।

0: वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आ, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया।
6: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
6: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पो, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
6: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
6: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
6: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
7: अप्पो।
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
7: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?

0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अब्बू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रो के उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा

0: रामन, मल्लिका सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो।
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
2: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लो।
0: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए।
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं,
5: पहले मैं हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना।

0: किराया दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे? हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
1: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
3: जी मास्टर जी।
1: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,

0: अरे आ गया।
1: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
0: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
0: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा माँ। आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
1: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
0: पैसे?
1: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा।
2: दोपहर को दिए थे ना?
1: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
0: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
1: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा।
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
0: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
0: बहुत अच्छे लगते हैं।
1: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया।

0: अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
1: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारे

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम इस प्रोग्राम में रोज रोज नए नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। भारतीय आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, जिक्र किया जाता है। जी हाँ, दिनचर्या अर्थात दैनिक जीवन की स्वस्थ आदतें हैं, खान पान है, और ऋतुचर्या यानी कि मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली और खान पान में आवश्यक परिवर्तन। साथियों, कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को संतुलित रखे तो वो न केवल कई बीमारियों से बच सकता है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रह सकता है। यह तो आप सभी जानते हैं, मानते हैं, है ना। तो आज रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए और आपके द्वारा सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी को। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर हैं और आपको आयुर्वेद के विषय में, खान पान के विषय में, दिनचर्या के विषय में, ऋतुचर्या के विषय में पिछले 30 वर्षों का एक लंबा और गहरा अनुभव है। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: तो साथियों, जो आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल, दिनचर्या ऋतुचर्या दैनिक और मौसमी जीवन शैली। इस विषय पर आप अभी इसी वक्त हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो अभी इसी वक्त डायल कीजिए हमारा फोन नंबर 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082 और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड है 011011 यानी कि एक बार फिर से मैं अपना नंबर दोहरा देता हूं 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर 2342-1082। इन दोनों नंबर से पहले आप दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए 9868107070। तो चलिए, हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट, हमारे वैद्य जी इंतजार कर रहे हैं। और तब तक आपकी ओर से कुछ सवाल और मेरे मन में भी कुछ उत्सुकता है, वो भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं और आपके साथ कुछ जानकारियां साझा कर लेते हैं। तो डॉक्टर, ये जो ऋतुचर्या और दिनचर्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका कितना महत्व है आयुर्वेद में?
2: धन्यवाद कमलेश जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिनचर्या और ऋतुचर्या हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए, आपकी रीजनल और सीजनल वेरिएशन के हिसाब से खान पान और रहन सहन इम्पॉर्टेंट होता है हमारा
1: जी।
2: अब हम पहाड़ में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, तो हम समुद्र की जीवन जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जब समुद्र के किनारे रहते हैं तो समुद्र वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, पहाड़ पे रहते हैं तो पहाड़ वाली जिंदगी जीनी पड़ती है,
1: अलग अलग टाइप की,
2: अलग अलग है। इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ का भी होता है। तो इसलिए दिनचर्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम रात को कब सोते हैं, कब उठते हैं और क्या क्या करते हैं। आजकल के जो जिंदगी है हमारी, जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त रूप से आ चुकी है, तो हमारा ना सोने का टाइम है, ना हमारा जागने का टाइम है, ना हमारा खाने का टाइम है। और ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसके बिना आप जितने भी

0: लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनसे बच नहीं सकते।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि भागम भाग की जिंदगी, भाग दौड़ की जिंदगी ज्यादा हो गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, और उसी में हमको मैनेज करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हमें वायर्ड भी नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो इसलिए
1: वो एक प्रकार से हमारे दिनचर्या में, ऋतुचर्या में और लाइफ स्टाइल में ये शामिल हो गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो तकनीकी का इस्तेमाल करना भी चाहिए, लेकिन संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी देखिए, इसी तकनीकी के जरिए ही हमारे पास कुछ फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं
0: जी।
1: हेलो
2: जी, नमस्कारम।
1: नमस्कारम।
2: सबसे पहले तो हमारे भारत के विद्वान चिकित्सक प्रजापति जी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद सर।
2: और हमारे आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या का, तो मेरा ये पूछना है कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में हमें कौन कौन से आहार लेने चाहिए, कौन कौन सा लेने चाहिए, विस्तार से बताएं। धन्यवाद
1: जी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये नहीं बताया।
2: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी।
0: धन्यवाद गौतम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ग्रीष्म ऋतु चल रही है, और चूंकि हम सभी जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में अग्नि हमारी कमजोर होती है, तो खान पान में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है तो हम लोग ठंडा पानी, ठंडी बर्फ, कुल्फी और ये सब चीज़ें खाते रहते हैं। जबकि खाने के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि खाना जो भी खाना है हमको गर्म गर्म खाना है, फ्रेश बना हुआ खाना खाना है। और ये सब चीज़ें नहीं होने से आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस समय ध्यान रखें, लू लपट अगर लगने वाली सिचुएशन है तो उससे अपने आप को प्रिवेंटिव एक्शन ले, क्योंकि हमने देखा है बचपन में कि हमारे दादाजी भी लू लपट में काम करते थे, जाते थे, लेकिन वो अपने आप को लपेटते थे, कपड़ों से ढक के रखते थे, पानी की बोतल रखते थे। पानी की बोतल उस समय होती थी नहीं थी, तो लोग अपना सत्तू रखते थे और सत्तू घोल घोल के पीते रहते थे वो पानी में। तो ये जो कुछ हमारी रेजिम डाइट बताई गई है उस समय के हिसाब से वो बहुत अच्छी है। एक पुदीना, पुदीना का अर्क, पुदीना सत्व, पुदीना हरा, पुदीन हरे के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में आम का पन्ना बहुत पॉपुलर है, और अब हम लोगों को नहीं मिलता है, अब हम लोगों को रेडीमेड कंडीशन में पीना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए उस समय कही गई थी, और उनको आज हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो ये देखेंगे आपकी जितनी भी ग्रीष्म ऋतु की चीज़ें हैं तो उसमें हमें खाने पर बहुत ध्यान रखना है। सुबह उठ के जनरली क्या करते हैं लोग, कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह उठ के अपने को फ्रेश होना है, आराम से बैठना है, थोड़ा पानी पीना है, और पानी गुनगुना पिए सुबह, जिससे पेट साफ़ हो जाए। साफ़ होने के बाद थोड़ा टहलें, गर्मी के दिन है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, और हमको वो टहलने से ही बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कई लोगों को बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको पानी पीना ज़रूरी है, और पानी पी के टहलते हैं तो वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। साथ में खाने का जब भी रखें आप, तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। जितनी भूख है डकार मार के पूरा पानी पी लेना खाना, ये थोड़ा कंट्राइंडिकेशन होता है इसके लिए, तो थोड़ा सा कम खाना खाएं, और थोड़ा पानी का जो पीने का है शेड्यूल, जैसे खाना खा के तुरंत हम लोग पानी पीते हैं डेढ़ डेढ़ दो दो गिलास, वो नहीं होना चाहिए। हमको थोड़ा पानी पीना है, अभी थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद फिर पानी पीना है, तो वो हमको मेंटेन करके रखना है। तो हमें नहीं लगता है कि गर्मी में कोई प्रॉब्लम होती है। गर्मी ऋतु हम लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं गर्मी की छुट्टियों में जाके, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु सबसे अच्छी ऋतु वैसे मानी जाती है रहन सहन के लिए। लेकिन खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
1: प्रोफेसर साहब, आपने यहाँ पर दो तीन बातें बताई, और वो भी गर्मी ऋतु को लेकर के, खान पान को लेकर के। तो मैं गौर कर रहा था कि आपने कहा कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, और सत्तू का, जो भी पेय पदार्थ हैं उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया तो आपने ये भी बताया कि आज तकनीकी का युग है, और इसमें कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आजकल तो हर गाँव, घर, शहर, जगह, हर किसी के पास रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि लोग कहीं गर्मी से, मतलब तपती धूप से वापस आ करके तुरंत ही रेफ्रिजरेटर खोल करके ठंडा ठंडा पानी पी जाते हैं।
0: ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने भी बचपन में किया है ऐसा,
1: उससे क्या नुकसान होता है?
0: लेकिन तुरंत क्या होता है, जो हम खाए पिए वो और अपच में चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के ऋतु में बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं और कभी भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ हमें थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। घड़े का पानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घड़े का पानी का एक टेम्परेचर होता है, वो उससे ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। हम लोग तो गांव में कुएं के पानी में पीते थे, कुएं के पानी भी ठंडे होते थे, तो वहाँ प्रॉब्लम, नेचुरल वाटर जहाँ आप पियेंगे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा है, फ्रिज से निकाल के तुरंत पानी या कोई भी चीज़ तुरंत नहीं खानी चाहिए, थोड़ा देर उसको रखना चाहिए, उसको रूम टेम्परेचर तक थोड़ा ले लिया के, जो उसका माइनस डिग्री का टेम्परेचर उसको थोड़ा ऊपर लाके फिर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: जी प्रोफेसर साहब, अभी ये तो हुई ठंडे चीज की बात है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या में, हम इंडियंस, हम भारतीयों के दिनचर्या में और लगभग सबके, चाय का भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्म चाय, गर्मी में भी गर्म चाय जरूर पीते हैं, ये लाभदायक है या नुकसानदायक है?
0: नहीं, अब ये चीज़ें लाभदायक तो नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों की आदत सी पड़ चुकी है। और जब तक चाय न मिले तब तक आंख नहीं खुलती है।
1: एनर्जी,
0: तो ऐसी कंडीशन भी हो चुकी है
1: जी,
0: क्यों आदतें जो पड़ जाती हैं वो आदतें साध्य कंडीशन में चली जाती हैं, तो उसका ये है कि लिमिटेड यूज होना चाहिए
1: जी।
0: हम भी पहले ऐसे करते थे, 12-12, 13-13 चाय पी जाते थे, अब नहीं पीते हैं क्योंकि अब पता चल गया धीरे धीरे तो छूट गई।
1: गर्मियों के मौसम में कुछ कम कर देने चाहिए,
0: कम करके रखनी चाहिए, क्वांटिटी घटा लेनी चाहिए, और बार बार चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय मंदाग्नि का एक कारण होती है
1: जी,
0: डाइजेशन को घटा देती है चाय, तो इसलिए चाय की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। आदत छूट सकती हो तो छोड़ दें, उसकी जगह पर अपने जो सिंपल पेय पदार्थ हैं वो पिए, अपना गर्म पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दें, थोड़ा ही जीरा डाल दें, थोड़ा अजवाइन डाल दें, थोड़ा दालचीनी डाल दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
1: जी। जी
0: ग्रीन टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो हमें एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको निकालने के काम होती है, तो उबाल के अदरक डाल के, काली मिर्च डाल के चाय पीने की जगह अगर हम सिंपल ग्रीन टी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं है तो गर्म पानी का प्रयोग करें
1: जी।
0: और चाय की आदत छोड़े अब हम लोग, पहले तो क्या था, ब्रिटिश ने हमारे लगा दिया है उसको और हम लोग की आदतें खराब कर दी हैं सारी जी।
1: प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार जी, वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने एक और बात बताई, आम के पन्ने की बात की
0: जी।
1: तो यहाँ पर वैसे जो शहर है वहां पर चूल्हे की कमी तो होती है, मतलब चूल्हे यानी कि लकड़ी की चूल्हे की बात कर रहा हूं मैं, तो आम का पन्ना किस प्रकार बनाना चाहिए? लकड़ी के चूल्हे में बनाया हुआ ठीक होता है या फिर बॉयल किया हुआ?
0: नहीं, पहले ऐसा था कि पहले ये हमारे पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग कंडे में लकड़ी के आग पे उसको भून लिया करते थे। अब तो वो सुविधा नहीं है, सभी के घर में माइक्रोवेव है, लोग भून सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में उबाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट इतना है कि उसका जो खट्टापन है, उसका जो गुरु आहार है, उसको हमें लघु में कन्वर्ट करना है
1: जी।
0: तो जब हम उबालते हैं और उसको करते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी तरीके से उबाल के या भून के, ये कोई ज़रूरी नहीं कि लकड़ी पर, क्योंकि अब वो नहीं हो सकता
1: जी।
0: जो कंसेप्ट बदल चुके हैं उसको नहीं हम ला सकते हैं,
1: मतलब जैसी सुविधा हो वैसे कर लेना।
0: हाँ, वैसा करना है। लेकिन आज भी देखिए, आप भी झारखंड से हैं, उधर से हम लोगों के यहाँ दाल बाटी चूरमा बनता है, राजस्थान में
1: जी
0: अपने तरफ बनता है बैगन का भरता और लिट्टी बाटी चोखा बनता है। तो वो लिट्टी बाटी चोखा माइक्रोवेव में जो बनेगा उसका वो टेस्ट नहीं आता है। जो गोबर की कंडों पे या लकड़ी के कोयलों पे जो बनता है उसका जो टेस्ट आता है वो अलग होता है,
1: यानी कि नेचुरल
0: नहीं, नेचुरल तो नेचुरल ही है
1: जी। जी तो हमारे पास वैसे अब और भी क्वेश्चंस मन में आते हैं, आते रहेंगे, उठते रहेंगे और हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल पूछूं, उससे पहले अपने जो कुछ श्रोता है वो लगातार हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज रहे हैं, और अपने श्रोताओं को हम बता दें, एक बार फिर से याद दिला दें कि आप हमें फोन कर सकते हैं 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082, और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर डायल कीजिएगा। और हमारे पास इस वक्त व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल आए हैं, उनको हम एक एक करके लेते हैं। और व्हाट्सएप के जरिए आप सब जिन्होंने अभी तक अपने सवाल नहीं पूछे हैं या फिर कुछ परेशानी हो रही है नंबर के लिए, तो नोट कर लीजिए 9868107070। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेज सकते हैं। तो हमारे पास ये जो मैसेज आया हुआ ये है, ये कहते हैं कि आई एम सागर, यानी ये सागर हैं और इनकी उम्र है 26 साल की। ये हैं विजयपुरा कर्नाटका से। कहते हैं कि आई हैव टू क्वेश्चंस।

0: today's busy world that what lifestyle we can adopt after from healthy eating and regular exercise.
1: क्या नाम बताया ना?
0: इन्होंने अपना नाम लिखा है सागर.
1: थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन. नो डाउट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इन टूडेज लाइफ वी जनरली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा खान पान इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितना खाएं उतना हम पचाएं. दिस इज द वन कॉन्सेप्ट कि जितना हम खाएं उतना इजीली पच जाए. और उसके लिए करना क्या है, आपको खाने की क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, आपको अपनी नींद के ऊपर ध्यान रखना है. क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे आजकल 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह 8-8 बजे तक सोते रहते हैं. तो इसलिए विटामिन ए ई डी के की कमी आ गई है सभी के अंदर. तो ये नहीं होना चाहिए. हमको रात को 10 बजे या 11 बजे जब भी है सो जाएं, 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए एट ए स्टेज. और बच्चे जो थक जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, बाहर घूमते हैं, उनके में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है. क्योंकि हम लोगों ने भी अपने बचपन लाइफ में देखा है कि दिन भर जब खेलते थे, चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, खेल के जब घर पहुंचते तो सीधे सो ही जाते थे, खाने के भी नहीं पूछते थे.
0: तो यानी कि बाहर घूमना और खेलना जरूरी है,
1: फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी
0: जी,
1: है
0: जी.
1: और उसके लिए सबसे जरूरी है कि सुबह जल्दी उठना
0: जी.
1: तो जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप शाम को समय से सोएंगे. तो 10 से 11 के बीच में अगर आप सो जाते हैं तो सुबह 6 से 7 के बीच में अपने आप नींद खुल जाती है
0: जी. 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है.
1: 7 घंटे तो नींद पूरी हो गई तो बॉडी क्या होती है, सोते समय डिटॉक्स करती है. आपको ध्यान नहीं होगा, हमारे बॉडी के जो हार्मोन, हमको लगता है कि सब सो जाते हैं. तो इंटरनल जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, ये सब उस समय एक्टिव फॉर्म में होते हैं. और ये बॉडी में जो दिन भर के जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको निकालने का, नेचुरल रूप में निकालने का काम करती है. तो हमें ये रेस्ट देना जरूरी है उन ऑर्गन्स को.
0: जी डॉक्टर साहब, ये और इनका ही ये दूसरा प्रश्न है, ये है कि आई डोंट गेट इनफ मोटिवेशन टू डू एक्सरसाइज, व्हाट कैन बी डन?
1: व्हाई? आप जितने भी प्लेयर्स हैं उनको देखिए, वो खेलते हैं. मोटिवेशन तो अपने घर से ही मिलता है जनरली. कि जब हम, अब हम इस एज में, आपकी एज में इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती बेटा. इस एज में आपको लगता है, आप लोग यू आर इन ग्रोइंग स्टेज, लेकिन जैसे ही हम 40 पार करते हैं और हमने अपने बॉडी को एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं रखा, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप घिरने लगती हैं. तो इसलिए हमें बॉडी के हर पार्ट को इस तरह से मोटिवेट, अपने आप को इस तरह से रखना एक्सरसाइज करके कि हमारा हर अंग, एक एक अंग हमारा थोड़ा एक्टिवेट मोड में रहे. और जिस अंग का कोई काम नहीं होता है, वो अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. तो इसलिए एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए. घर में खड़े होकर जॉगिंग कर लीजिए, पश्चिमोत्तासन कर लीजिए, और आजकल कुछ नहीं कर सकते तो एक सूर्य नमस्कार कर लीजिए. आप सूर्य नमस्कार की जो 12 मुद्राएं हैं, उसमें सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज आ जाती है. और ये बहुत ऑप्शन है कि अगर उगते हुए सूरज के सामने हमने किया तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज का भी इम्पोर्टेंट मिलता है, हमें विटामिन डी भी मिल जाती है, तो हमको सब कुछ मिल जाता है.
0: कोशिश करें कि तो खुले में करें.
1: खुले में करें
0: जी,
1: थोड़ा सा इस जहाँ सूर्य की रोशनी हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वहां पे अपने को करना चाहिए
0: जी. बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, आप हमसे जुड़े और हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं. आइए हम उनसे पहले बात कर लेते हैं, उनकी क्या समस्या है पूछ लेते हैं. हेलो.
2: हेलो
0: जी, नमस्कार जी, बताएं आपका नाम, बताएं आप कहां से बोल रहे हैं.
2: मैं राजेंद्र बोल रहा सर, ये नॉर्थ दिल्ली से. डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार
0: जी. नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: मेरी एज 75 है ये सर. जीभ में दरार सी पड़ जाती है जब मिर्च वगैरह नहीं खाई जाती है, और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या कारण हो सकता है?
1: सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरों में अगर सूजन आ रही है और जीभ में दबार दबार पड़ रही है, तो थोड़ा सा

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: इस छोटे से मनोरंजन के बाद यानी कि गाने के बाद में एक बार फिर से हम लौट कर आ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, और आपको एक लंबा अनुभव है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर के पद पर हैं और आपको 30 वर्षों का एक लंबा अनुभव है, और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपने जो श्रोता हैं उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें कि हमारा जो फ़ोन नंबर है एक बार फिर से दोहराए देते हैं, 0112342108 और दूसरा फ़ोन नंबर है 2342108। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें कॉल मैसेज भेज सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9868107070। तो चलिए, वैसे हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत सारे कॉल्स हैं, लेकिन पहले यानी कि मैसेज हैं और कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं, पहले हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका सवाल लेते हैं, उसके बाद में व्हाट्सएप मैसेज। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपके?
2: हाँ, पहले तो एंकर सर और डॉक्टर को नमस्कार।
1: जी राजेंद्र जी, आपको भी नमस्कार।
2: हाँ जी, मेरे सवाल है और एक है, जरा उसे दूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी
1: जी।
2: पहला सवाल तो मेरा डॉक्टर साहब की, मुझे ना पित्त प्रवृत्ति है और श्वसन एलर्जी भी है, और अभी आप कह रहे हैं कि गर्म खाना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, और मेरी ना व्हाइट स्किन जैसे अंग्रेजों की होती है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल कि पुदीने के क्या फायदे होते हैं, जरा विस्तार से बताएं।
1: उसे आपकी आवाज राजेंद्र जी थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी समझ में नहीं आई।
2: हमारी है
1: जी, अब जी बताएं।
2: हाँ जी, मैं दोनों सवाल फिर से आपको, मेरे सवाल आप तक पहुंच गए।
1: जी जी जी जी, दूसरे सवाल आपने क्या पूछा था?
2: हाँ, पहला सवाल तो मेरा ये था कि मेरे को ना जो है पित्त प्रवृत्ति है, पित्त।
1: जी जी, पित्त की जी।
2: हाँ जी, और व्हाइट मेरी स्किन और श्वसन एलर्जी भी है, तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि हम खाना चाहिए गर्म, अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? पहला सवाल मेरा ये।

0: जी
1: दूसरा कि पुदीने के फायदे विस्तार समझाए, इससे
0: जी
1: क्या फायदे होते हैं विस्तार से।
0: जी
1: अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो है ये जैसे अभी आपने कहा कि ये कई लोग होते हैं कि आपने कहा 6-7 घंटे सोना चाहिए, पर कई लोग ऐसे होते हैं मतलब 3 घंटे सोते हैं तब उनकी पूरी वादे से मोदी साहब ही हैं, 3 घंटे सोते हैं पूरी पूरी आज हिंदुस्तान के सीएम साहब जो हैं, तो इसकी क्या वजह होती है, इसके हमें क्या करना है नींद इंप्रूव इम्प्रूव करने के लिए।
0: जी
1: और चौथा चौथा और मेरा सवाल ये है कि मैंने सुना है कि कई लोग में चाहिए अगर आप खाना खाने से पहले 3 से 6 लाते खाएं और खाना खाने के बाद घूसे खाएं 3 से 6, तो भूख भी जबरदस्त लगेगी, खाना भी अच्छा खासा हजम होता है, यहाँ तक सही है, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी राजेंद्र जी, जी एक एक करके सवालों का जवाब देंगे जी।
2: थैंक यू राजन जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। आपकी अगर पितृ प्रकृति है तो आपको ध्यान रखना है, हमने ये नहीं खाना गरम गरम खाने की बात की है, तो खाना ठंडा करके नहीं खाने के लिए पितृ प्रकृति वालों को लिए भी बोला गया है। आपको सुकोष्ण वाटर लेना है, सुकोष्ण जल लेना है पीने के लिए। सुकोष्ण का मतलब होता है जिस ऋतु में है जैसा है उसके हिसाब से लेना है। आप अगर ग्रीष्म ऋतु में हैं तो ये नहीं है कि आपको एकदम ठंडा पानी पीना है, तो उसको एक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर पीजिए। और पित्त प्रकृति वालों में पित्त की दुष्टि अगर होती है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज खाने पीने में तो खान पान बहुत अच्छे से पाचन हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी गुनगुना पानी पियेंगे तो आपको पाचन बढ़ जाएगा, आपका खान पान की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उससे आप परेशान न हो। और यह है कि फ्रेश बना हुआ खाना खाना है, मेरा कहने का ऑब्जेक्ट ये था, गरम गरम खाने का मतलब कि आपको फ्रेश बना हुआ खाना खाना है। आजकल क्या होता है कि लोग बना के फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रख देते हैं फिर उसका जब ज़रूरत होती है तो निकाल के खा लेते हैं,

0: फ्रोजन फूड का कंसेप्ट चल चुका है आजकल, आपने देखा नहीं होगा, हम तो देख रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं और सभी जगह फ्रोजन फ्रूट्स सप्लाई हो रहे हैं। वो जाते हैं यहाँ से और उसके बाद वो डीप फ्रिज में रखे रहते हैं, जैसे ऑर्डर होता है उनको निकाल के तुरंत
1: गरम
0: गर्म
1: कर।
0: करके खिलाने के लिए दे दिया जाता है। तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती है जो अपने फ्रेश बने हुए खाने की क्वालिटी है। इसलिए कोशिश करें कि जब खाना बन रहा हो, बनने के आधे घंटे के अंदर ही उसको कंज्यूम करें, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, खाने के साथ ये ध्यान रखना है, हमने बार बार कहा कि पेट भर के डकार मार के नहीं खाना है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो भूख है, जितना पेट है उसका 1/2 खाना है, 1/3 खाली रखना है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो जिससे कि डाइजेशन सही होगा और ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। और आपने बोला कि सन एनर्जी है, सोलर सोलर से प्रॉब्लम हो रही है उनको,
1: जी
0: तो पितृ प्रधान सब आपका है चूंकि, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको वहाँ प्रोटेक्शन ही रखना है और पित्त शामक योगों का प्रयोग करना है। आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए, आपको प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी या ऐसी चीज़ें देंगे, साथ में महामंजिष्ठा जी क्वाथ देंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा ये था, आपने पुदीने के बारे में पूछा था। पुदीने का आपको, पुदीने की कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी है, पुदीने का ठंडी चीज़ें आपको लेनी है। पुदीना अर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पुदीना सत्व बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो इस तरह के जब कभी इनडाइजेशन की कंडीशन होती है तब वहाँ पे वो हमको दोनों तरह से फ़ायदा देता है। आपने देखा होगा कि जब हमारा हेडक होने लगता है तो हम बाम लगाते हैं, तो बाम क्या करता है, बाम को दर्द को तो निकालता नहीं है, बाम आपके ब्रेन के सेंसेस को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके आपको नींद आ जाती है और वो सर दर्द ठीक हो जाता है। तो पुदीना के भी वही काम है, इस तरीके से वोलेटाइल ऑयल कंटेंट जो उतने होते हैं उसमें, वो तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं सिस्टम को जाके, जिससे कि हमको वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। आपने नींद की बात की, मोदी जी का एग्जाम्पल दिया आपने, मोदी जी जैसे कितने लोग हैं इस दुनिया में, बहुत कम लोग हैं। ऐसे हमारे जितने भी साधु संत सन्यासी होते थे उनकी भी यही कंडीशन है, वो 10 बजे सोते हैं और 1 बजे उठ जाते हैं, दिनचर्या उनकी 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये आदत डालने की बात है। मोदी जी को आप आज देख रहे हैं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं और उनकी वो आदतें शुरू से हैं, रात को 10 बजे सो जाना, अभी तो सो नहीं पाते हैं वो, अभी तो उनके साथ वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाते हैं वो, 4 बजे उठ के सारे अपनी एक्सरसाइज करना, योग, क्यों योग, योग का इतना प्रचार प्रसार, हमारे ब्रांड एम्बेसडर योग के लिए कौन है, योगी मोदी जी हैं,
1: जी
0: मोदी जी खुद करते हैं उन चीज़ों को और खुद करके उन्होंने प्रूव किया है कि यह ऐसा हो सकता है। तो खान पान, उनका खाना आपने देखा है कितना है, उनके खाने में 2 कौर होते हैं, पानी पीते हैं और वो सब ठीक रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, अडॉप्टेबिलिटी होती है, साध्यता होती है। ये हमारे साधु संन्यासी, हमारे ऋषि मुनि ये सब किया करते थे और उनकी इसलिए लाइफ 100-100 साल तक रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इन चीज़ों को हम अगर प्रैक्टिस में डालते हैं और अपने लिए साध्य कर लेते हैं तो इन चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आजकल 6 घंटे की नींद कंपलसरी है, क्योंकि हम इतने सारे फालतू के काम करते हैं, फालतू का खाते हैं,

0: तो फिर ठीक है, हम 3 घंटे और 4 घंटे सो के भी काम करते हैं, हम लोग को करना ही पड़ता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। सो आप इस बातों का ध्यान रखें प्लीज़। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, थैंक यू वेरी मच
1: जी। हमारे पास एक फ़ोन कॉल भी आया हुआ है और जी लगता है कि कट गई, ये फ़ोन कॉल कट गया है, तो हम एक व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं। और ये व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से हैं। इनका कहना है कि क्या विंटर में दही खाना चाहिए और दूध से पेट में गैस हो जाती है, क्या करें?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन सरोज जी। आप लोगों ने बड़े बूढ़ों से कभी कभी सुना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खाया जाता है, लेकिन हम उल्टी परंपरा में चलते हैं। शरद ऋतु में दही का इंडिकेशन है, शरद ऋतु में दही खाना चाहिए। क्यों? हमें जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोबैक्टीरियम चाहिए होते हैं वो उस समय दही में सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ कहने के विधान किया गया है।
1: हम उल्टा चल रहे हैं
0: और हम लोग उल्टा चलते हैं, सोचते हैं कि गर्मी में दही खा लेते हैं तो आराम है, दही में गर्मी में नहीं खाना चाहिए, ये हमारे क्लासिकल लिटरेचर यही बोलता है। और खाना भी है तो अब आप देखिए कि हम लोग जो है दही लस्सी पीने वाले काम, लस्सी पीने का काम कब करते हैं? सबसे ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में,
1: वो भी दिन में, दोपहर
0: और वो भी दिन में दोपहर कहीं भी जाते हैं, गर्मी लगती है, चलो लस्सी पी लेते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये क्या है कि उसमें जो बैसिलस है, बैक्टीरिया है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें हमारे लिए, लेकिन क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम दही कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जिन लोगों को संधिवात है, आम बात है, आम से जुड़ी बीमारियां हैं, उनको दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही क्या, उनको किसी भी खट्टी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम है, अरे टमाटर है, नींबू है, दही है। अब बहुत सारे लोग, हम लोग कहते हैं कि हम लोग दही रोटी खा खा के, दही पराठे खा खा के तो बड़े हुए हैं और अपने अभी दही छूटा हुआ है इस समय। तो इसलिए प्रिकॉशन लेके हमको खाना है। अब आप चले जाइए गुजरात में तो वहाँ पे बिना छाछ के तो खाना होता ही नहीं है, लेकिन वो छाछ कैसे बनती है आपको ये देखनी पड़ेगी। वहाँ एक पार्ट छाछ, एक पार्ट दही और उसमें 4 भाग गर्म पानी मिला के उसको बनाते हैं।
1: तरीका अलग है,
0: वो अलग अलग है। तो वो चीज़ वो पानी नहीं पीते फिर वो लोग, फिर वो छाछ पीते हैं और वो छाछ फिर वो वहाँ डाइजेशन में हेल्प करती है। उसमें नमक, काला मिर्च और ये जीरा डाल के बनाते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि रीजनल और सीजनल वेरिएशन, बार बार हम कह रहे हैं रीजनल और सीजनल वेरिएशन।
1: जी,
0: दही अगर आप पहाड़ में बैठ के खाएंगे शरद ऋतु में तो गला पकड़ लेगा। तो खाना कैसे है वहाँ पे, गरम गरम रोटी में हमको हिंग्वास्टक डाल के खाना है तो वो खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं
1: जी। और इनका एक और प्रश्न था कि
0: दूध,
1: जी
0: जी दूध से बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही है आजकल। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डेयरी मिल्क है, आप कभी जाएं अपने घर में अगर अपनी गाय है, अपनी भैंस है तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन डेयरी मिल्क जितने भी है वहाँ पे कुछ भी करिए आप, पाश्चराइजेशन करना पड़ता है, उनको प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो अगर डेयरी का मिल्क है तो पीने में आप ध्यान रखिए। अगर अपने घर की गाय है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है दूध को अगेन डाइल्यूट करना है हमको, पानी थोड़ा मिला के डाइल्यूट करिए बहुत। आपने अगर भैंस का दूध लिया तो गाढ़ा होता है, देखते हैं आप, गाय का दूध होता है तो पतला होता है, तो गाय के दूध में प्रॉब्लम नहीं आती, भैंस के दूध में प्रॉब्लम आती है।
1: तो ये जो दूध है इसे कब पीना चाहिए, दिन में पीना चाहिए या रात में पीना चाहिए या कब पीना चाहिए?
0: हम लोग के यहाँ देखिए बच्चों को तो हम ये कहते हैं लगातार, क्योंकि वहाँ कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो हम उनको दूध सुबह शाम दोनों टाइम पिलाते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जो रहा करते थे, जो हम लोगों ने बचपन में शुरू किया है, तो सुबह दूध के साथ रोटी खाते थे और रात को खाना खाने के बाद दूध जरूर पीते थे
1: जी।
0: लेकिन वो दूध बार बार कह रहे हैं कि अपना होता था और हम उसको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खिलाते थे जो चीज़ें नुकसान करने वाली हों।
1: यानी कि दूध जो है कभी भी पिया जा सकता है?
0: हाँ, पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: कब्ज होने की संभावना नहीं रहती है?
0: नहीं, दूध तो कब्ज को निकालता है, संभावना नहीं रहती है। रात को जनरली हम लोग दूध जब पीते हैं तो थोड़ा सा हल्दी और गुड़ डाल के पीते हैं
1: जी,
0: बिना वैसे दूध नहीं पीते हैं हम लोग, और पीते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा मिलता है। तो सबको सूट नहीं करता है, क्योंकि आजकल सबसे दिक्कत ये होगी मिल्क प्रोटीन से बहुत से लोगों की एलर्जी हो रही है
1: जी। जी,
0: तो बहुत से लोगों जिनको गैस वैस बनती है उनको नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है बात वो
1: जी। और अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक और हमारे श्रोता मित्र, आइए उनसे बात करते हैं, उनके सवाल सुनते हैं।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार। बहुत अच्छी कोयल की आवाज सुनाई पड़ रही है पीछे से। गुड।
1: जी, थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। डॉक्टर
2: नमस्कार नमस्कार।
1: साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, गांव कुखनिया, डिस्ट्रिक्ट करनाल है
2: जी।
1: सर। हमारा अल्ट्रासाउंड में मेरा और मेरे छोटे भाई का फैटी लीवर आया था। छोटे भाई का फैटी लीवर ग्रेड 1 है और मेरा ग्रेड 2 है फैटी लीवर में। हम दिमाग की दवाइयां खाते हैं काफी सालों से, यानी मैं तो 24 साल से खा रहा हूँ और वो 17-18 साल से खा रहा है जी। तो अगर आपके पास आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आ जाए तो ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम ही। और आयुष्मान कार्ड भी हमारे पास, क्या फ्री में दवाइयाँ भी मिलेंगी सर?
2: बिल्कुल भी नहीं। फैटी लीवर का इलाज ही केवल हमारे पास आयुर्वेद में है और कहीं है ही नहीं है आपके पास। आपके खान पान को कंट्रोल करना ही इम्पॉर्टेंट है और परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आप अगर सबका टेस्ट कराएंगे तो 99% लोगों के फैटी लीवर मिलेंगे। क्योंकि हमने जो खाना शुरू किया है, खान पान, वाह, हरियाणा के हैं आपने तो खान पान अच्छा ही होगा आपका, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और रेस्ट ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं खानी है आपको, वो ऑलरेडी उन्होंने बताई होंगी डॉक्टर ने, और नहीं तो
1: कुछ नहीं बताया जी।
2: तो आप आके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आके आप दिखा जाइए, क्योंकि यहाँ क्या है ना, केवल ऐसे सजेशन देना ठीक नहीं है, आपको देख के ही आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
1: ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, धन्यवाद।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा हमसे जुड़े। और डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि ये लंघन क्या है, लंघन क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, लगता है कि आयुर्वेद से रिलेटेड हैं ये सब लोग
0: जी,
2: क्योंकि ये लंघन वर्ड ही संस्कृत का है। देखिए, अनिल, डॉक्टर अनिल कुमार
0: कालड़ा जी, गुरुग्राम से,
2: गुरुग्राम से पूछ रहे हैं
0: जी।
2: तो लंघन, आप डॉक्टर हैं, अगर आयुर्वेद के हैं तो आपको पता होगा लंघन क्या है। लंघन का मतलब केवल भूखा रखना नहीं है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। लंघन का मतलब है लघु आहार खाना है हमको,
0: कम आहार लेना है,
2: हाँ, जिससे कि जो डाइजेशन है वो ठीक रहे। ज़्यादा खाने से, अब व्रत वाले व्रत जिस दिन होता है हम लोगों का हिंदू धर्म में, व्रत जनरली इसलिए किया गया था कि हमारा खान पान कंट्रोल रहे उस दिन, और बहुत सारे व्रत किए जाते हैं, लेकिन आजकल तो हम व्रत वाले दिन ज़्यादा खाते हैं बजाय कम खाने के, क्योंकि उस समय अच्छी अच्छी डिशेज बनती हैं तो वो पेट भर के खा लेते हैं
0: जी।
2: तो लंघन का मतलब ये है कि अपने आप को भूखा रखना है। पहले आपने बुखार जैसे आता है तो मेनली उसकी पहली ही चिकित्सा लंघन चिकित्सा है
0: जी,
2: और मतलब कुछ नहीं खाना है, गर्म गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, जिससे जो भी चीज़ें अंदर हैं वो डाइजेस्ट हो जाए
0: जी। तो अब ये जो आया है मेरे पास, यानी कि हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज है, और ये है राजेश कुमार चौहान जी, कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है डॉक्टर साहब, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
2: थैंक यू।
0: और इनकी बातों से तो लगता है कि ये भी मीडिया पर्सन है, और इन्होंने लिखा भी है कि जैसे कुछ लोग कभी दिन की शिफ्ट में काम करते हैं तो कभी रात की, और हमारे मीडिया के दोस्त भी, तो इनकी दिनचर्या तो बिल्कुल ही गड़बड़ा जाती है, तो सोने के घंटे भी कम हो जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिनचर्या, जो आप पत्रकार हैं, हमारे खुद के घर में पत्रकार हैं और हम देखते हैं उनको, रात को 12 बजे उनका पेपर फाइनलाइजेशन होता है और वो 12:30 बजे खाते हैं, 2 बजे सोते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे उठते हैं, तो वो ध्यान रखना है अपने को। जो पत्रकार बंधु हैं उनका काम ज़्यादा रहता है, उसमें मीडिया से हम देखते हैं कि कई सारे कंडीशन आती हैं। कोशिश करें आप कि जितना काम है उसको ख़त्म करने के बाद जहाँ आपको नैप लेने का मौका मिले, 20 से 30 मिनट का सोने का नैप जो बीच में रहता है, और जब हम थक जाते हैं तो कहीं भी बैठ के सो जाते हैं, हमने ये देखा है
0: जी।
2: तो

0: रिलैक्स करना
1: जरूरी
0: बहुत
1: है,
0: जरूरी है।
1: जरूरी है।
0: और ये एक और व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं, और ये हैं अनमोल गुप्ता जी सरिता विहार से, और इनकी उम्र है 37 साल। कहते हैं कि मैं 50 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं, क्या ये सही है?
1: 37 साल की उम्र है, आप काम की वजह से साइकिल चलाते हैं या एक्सरसाइज की वजह से चलाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप साइकिल रेसर हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है और अच्छी बात है। और साइकिल चलाना आज आजकल के एक्सरसाइज में साइकिल बाइसिकल चलाना एक नया इनोवेटिव आया है कि बहुत सारी एक्सरसाइज उसके द्वारा हो जाती हैं, लेकिन इतना लंबा 50
0: लगातार
1: चलाना थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा उसको अगर कम हो सकता है तो कम करें, और आपकी आदत बन चुकी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं बचपन में, हम लोगों ने 15 15 किलोमीटर साइकिलें चलाई हैं। हम लोग गांव में हम लोग जाते थे तो मामा जी लोग हम लोगों को बैठा के 50 50 किलोमीटर साइकिल चला के ले जाते थे, क्योंकि उस समय और कोई साधन नहीं था।
0: जी,
1: तो वो उस कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करिए। और अगर साइकिलिंग के लिए कर रहे हैं तो खान पान का ध्यान रखिए
0: यानी
1: उसमें,
0: कि रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे हैं
1: तब तो ठीक है।
0: तब तो और एक हमारे पास एक मैसेज है, और इन्होंने लिखा है कि आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फ्रॉम ओमान।
1: यस,
0: क्या कहना
1: गुड
0: चाहेंगे?
1: गुड, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ओमान हमारे एमओयू पार्टनर हो गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, और हम बहुत जल्दी वहाँ आयुष चेयर आ रही है।
0: क्या बात है,
1: आपको बहुत ये अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं कि गुजरात से ही उसमें जा रहे हैं आयुष चेयर पे, तो आपको वहाँ भी सुविधाएं मिल जाएंगी।
0: चलिए और अच्छी तरह से आप जुड़ सकेंगे। जी,
1: जी
0: एक फोन कॉल सुन लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो,
2: हेलो सर, नमस्कार
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर। मैं दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड व्यक्ति राम मिलन बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर
0: जी, क्या पूछना
2: मैं
0: चाहते?
2: 2 3 दिन पहले और कॉल लगाया था, लेकिन उसका जवाब सही हमको आवाज नहीं आ रही थी, मिल नहीं पाया
0: कोई
2: था।
0: बात नहीं, लेकिन आज आपकी आवाज बहुत ही खूबसूरत ढंग से आ
2: हाँ
0: रही
2: जी,
0: है।
2: आपकी भी आवाज क्लियर आ रही है, इसलिए मैंने सोचा चलो देखते हैं सर कुछ हेल्प मिल जाए।
0: जी
2: तो
0: जरूर
2: आपके साथ साथ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार
0: जी,
2: मेरा।
0: नमस्कार
1: और
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे दौरा और मिर्गी किसी को होता है उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा।
1: नहीं, उसको तो आपको हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा,
2: सर
1: क्योंकि
2: आपके नहीं, लेकिन आप कुछ सुझाव कुछ सलाह तो दे बता सकते हैं सर, क्योंकि बहुत इलाज कराया सर, उसको कुछ हिसाब किताब बना नहीं, अभी भी उसको हो जाता है। मेरे एक भांजा है।
1: क्या
2: हाँ तो
1: उम्र,
2: सर
1: क्या उम्र है?
2: उसको वही उम्र सर होगी मान लीजिए वही 35 के आसपास।
1: हाँ, तो आप इसमें जितने भी ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो दवाइयाँ ही चलती हैं मैक्सिमम टाइम। तो इसमें होगा क्या है, उनको हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको योगा प्रैक्टिसेस करानी पड़ेंगी, जिससे कि वो कंसंट्रेशन थोड़ा अपना बढ़ा सकें। चीज़ों को बढ़ाएंगे तो उनको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप इनको आयुर्वेद में दिखाएं लाके, इसका इलाज आपको थोड़ा आपको काफ़ी कुछ इलाज आपको आयुर्वेद में मिल जाएगा इसका।
2: चलिए ठीक है सर,
1: हाँ
2: जानकारी देने।
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: आप आके दिखाइए कभी वहाँ पे। बिल्कुल
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बता देते तो वहाँ करते दिखाते सही रहता।
1: कहाँ की
0: जी, चलिए हम एक छोटा सा
1: हाँ
0: ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर लौट कर आते हैं, और भी अपने श्रोताओं के सवाल हैं जो मैसेजेस हैं, हम उनको लेते रहेंगे। और

0: एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम लौट आए हैं, और लौटने के बाद एक बार फिर से हम अपना नंबर दोहराए देते हैं, 0112342108 और दूसरा फोन नंबर है 2342108 2। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और हमारे पास इसी नंबर पर यानी कि व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आया है, और ये हैं ऋत्विक जोशी जी। इन्होंने कहाँ से लिखा यह तो नहीं बताया, कहते हैं कि मुझे कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, मेरी एज 45 इयर्स है, मैं इसको नेचुरली ठीक कैसे करूं, आप बता दीजिए।
1: हाँ ऋतिक जोशी जी, बिल्कुल सही बात है। इस समय ऐसी कंडीशंस आ रही हैं क्योंकि हम पूरे टाइम या तो घरों के अंदर रहते हैं या एसी में बैठे रहते हैं, तो हमें विटामिन डी कहाँ से बनेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको धूप में निकलना पड़ेगा, खान पान में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूध है, दही है, जिनसे कैल्शियम मिलता है और उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो लोग अभी खाना भी बंद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनको आप खाएं। इसमें प्रवाल है, प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, इन चीज़ों का, या किसी से कंसल्ट कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको लेके। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास, आप अपने खाने में थोड़ा सा अगर हो सकता है तो गोघृत को रखें, गाय का घी अगर आपको देसी मिल जाता है तो उसको रखें, रोटी के साथ खाएं। और साथ में सूर्योदय के समय नहीं हो सकता है तो कम से कम 8 से 10 के बीच में आप थोड़ा सनलाइट में जाके और सूर्य नमस्कार करें
0: जी,
1: थोड़ा सा बैठ के प्राणायाम करें, तो आपको सन रेज जरूरी है जिससे कि वो विटामिन डी की कमी पूरी हो सके।
0: तो श्रोता मित्रों, आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल। इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और आप हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं। और इस वक्त मेरे पास यानी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक मैसेज आया हुआ है, और इनका नाम है अनंग उदय बिस्वाल जी, अब बुलंगीर ओडिशा से इन्होंने मैसेज भेजा है। कहते हैं कि मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है, तो गर्मी के दिन क्या खाऊं और क्या नहीं, प्लीज बताएं।
1: क्या नाम बताया आपने?
0: उदया बिस्वाल जी हैं।
1: उदया बिस्वाल जी, तो जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने खान पान के लिए आपको मना किया होगा, किसी से नहीं खानी है, थोड़ा तेल घी कम खाने हैं आपको, ध्यान रखिएगा, थोड़े दिन बाद आप खा सकेंगे, इस बात को आप गारंटी रखिए, लेकिन अभी मत खाइएगा तुरंत। और खान पान में अपने को कार्बोहाइड्रेट का पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको वो सब चीज़ें खानी हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसमें हमारा जो बाइल पिगमेंट का काम था वो ख़त्म हो चुका है, इस समय अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद आप सब कुछ खा सकेंगे। तो थोड़े दिन अभी आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, सिंपल रोटी दाल, और दाल में प्रोटीन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने को अरहर की दाल नहीं खानी है, थोड़ी मूंग की दाल खानी है, इसमें चना मटर नहीं खाना है, गुड़ खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप खाइए तो इसमें अच्छा रहेगा, लेकिन घी तेल जिसमें ज़्यादा हो वो मत खाइएगा, थोड़ा अपने आप को बचा के रखिएगा, नहीं तो फिर पेट में दर्द आपको महसूस होगा और वो दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको मेंटेन करिएगा, क्योंकि हमको खुद को हुआ था इसलिए हमें ज़्यादा एक्सपोजर है इसका
0: जी।
1: और हमारा भी गॉल ब्लैडर निकला हुआ, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज हम सब कुछ खाते हैं क्योंकि इस तरह से मेंटेन किया था और हमारे लिए

0: मतलब घी तेल सब कुछ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, साल डेढ़ साल आपको ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ये और हमारे पास एक और मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए, ये हैं समर्थ जी हैं बेंगलोर से, 27 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये कहते हैं कि आई एम अनेबल टू गेट डीप स्लीप दिस डेज ऑल्सो, आई एम अनेबल टू स्लीप अर्ली, आई फील वेरी स्ट्रेस्ड ड्यू टू माई करियर, आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ ईचिंग ऑन माई स्किन, आई हैव कंसल्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट बट इट इज़ गेटिंग टेम्प्रोरली क्योर्ड, क्या करना
0: यस
1: चाहिए?
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपके जो स्ट्रेस कंडीशन है इसकी वजह से इंडाइजेशन हो रहा है और पित्त बढ़ रहा है, जिस पित्त की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो आपको कैसी भी कंडीशन हो, आपको थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करना पड़ेगा, और मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी। सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जिसको आपको लगता है कि इसको सुनने से आप सो जाते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा चला के सोइए, और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे, क्योंकि कई कंडीशंस हमने देखी हैं इसमें। और जनरली हम लोग तो इसमें क्या होता है कि काम एंड कूल सिचुएशन देने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को सिचुएशन निकाल ले लीजिए, क्योंकि आपकी एज उम्र देख के ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन जॉब्स की प्रॉब्लम्स को वहीं पे छोड़िए और अपने आप को पहले ठीक करिए, देन आपके पास जॉब की वो दिक्कत नहीं होगी। अपने आप को काम एंड कूल करना ज़रूरी है, और मेडिटेशन करिए, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़िए, अपना काम आप करिए, बाकी सब कुछ छोड़िए।
1: जी, और ये हैं प्रकाश जी रोहिणी से, इन्होंने मैसेज भेजा है कि मुझे कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, मेरी उम्र 72 साल की है, 2-3 दिन के बाद बहुत मुश्किल होती है, क्या करूँ मैं?
0: आप ज़रूर कुछ ना कुछ लेते होंगे, अगर कुछ नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, त्रिफला का पाउडर रात को सोने से पहले त्रिफला का पाउडर लें, उससे अगर आराम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसको आप रात को भिगो दीजिए और सुबह उसके पानी को पीजिए, तो उसको आपको आधे घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से यूज करके देखें आप, आपको कौन सा फ़ायदा करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड कर देगा।
1: डॉक्टर साहब, ये काजल जी हैं, इन्होंने अपनी जगह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहते हैं कि गर्मी के मौसम यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मसूड़ों से खून आने या सूजन की समस्या से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? और दूसरा प्रश्न उनका ये है कि क्या AIIA में आधुनिक डेंटल प्रोसीजर यानी कि जैसे कि रूट कैनाल स्केलिंग या कैविटी फिलिंग के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा मिश्रण यानी कि इंटीग्रेटिव अप्रोच किया जाता है क्या?
0: ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेशन पे ही काम कर रहा है, और हमारे पास पूरी डेंटल यूनिट वहाँ पे सेपरेट है, हमारा मॉडर्न ट्रीटमेंट भी है और आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी है। इस तरह के अगर कंडीशंस होती हैं तो जनरली गंडूस और कंवल का प्रयोग किया जाता है, आप त्रिफला का क्वाथ का गंडूस का कवर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऑल इंडिया में आके दिखा सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छी डेंटल यूनिट है, इतनी अच्छी डेंटल यूनिट आपको कहीं और नहीं मिलेगी।
1: जी, और देखिए हम क्योंकि जल्दी जल्दी प्रश्न ले रहे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, और ये मैसेज आया है व्हाट्सएप के ज़रिए, इन्होंने तारीफ़ की है, कहते हैं कि प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी गुड और थैंक्स टू यू बोथ, क्वेश्चन इज इन आयुर्वेद फॉर BP एंड स्ट्रोक हाइपरटेंशन प्रॉब्लम, व्हाट आर रेमेडीज़? ये हैं SM जोशी जी पुणे से, 60 साल की इनकी उम्र है।
0: जोशी सर आप बहुत दूर हैं, पुणे में भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग हैं आयुर्वेद के, आप ना हो तो एक बार तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज में दिखा लीजिए, और जो आपने कंडीशंस बताई हैं इन कंडीशंस में यहाँ से हम दवाई नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन को ऐड करिए अपने लाइफ स्टाइल में, और उससे सोएंगे अगर आप ठीक से तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है, अगर कोई ऑर्गेनिक कारण नहीं होगा तो।
1: जी, और विक्रम सिंह जी दिल्ली से मैसेज भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, कहते हैं कि सर दिन एक अंजीर खा लेने से क्या बॉडी को सारा विटामिन मिल जाता है क्या?
0: एक अंजीर तो कम है, दो अंजीर खाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, काफ़ी लोग बहुत खा रहे हैं, हमने देखा है लोगों ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश के साथ एक अंजीर खा रहे हैं और काफ़ी उससे रिजल्ट मिल रहे हैं लोगों को, तो एक कम्बिनेशन होता है ये हमारा, उस कम्बिनेशन में आप खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दो अंजीर कम से कम एक दिन में खानी चाहिए आपको।
1: जी, उसे रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन हो रहे हैं।
0: जी जी कोई बात
1: नहीं ये है आसिफ सैफ जी, और ये हैं मेरठ से, कहते हैं कि हेलो सर, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है और सर पेट भी बहुत भारी हो गया है, बाहर आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार का एक्सरसाइज करना
0: तुरंत
1: चाहिए?
0: आइए आप ऑल इंडिया।

0: आप आयुर्वेदा में दिखाइए अपने आप को, और आपको पंचकर्म थेरेपी की ज़रूरत है, उससे आपको सबसे अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो बिना उसके फिर ये कहना कुछ भी दवाइयों के साथ ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए थेरेपी करानी पड़ेगी आपको
1: जी। और यह है सुशील कुमार भारती जी बिहार से लिखते हैं कि हाथ पैर सुन्न हो जाना किस कारण से हो सकता है, इसका आयुर्वेद में क्या उपाय है, क्या इलाज है?
0: नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं, केवल एक कारण नहीं होता है हाथ पैर सुन्न होने का। डायबिटीज एक मेन कारण होता है, अगर डायबिटीज है, शुगर बढ़ा हुआ है तो ये उसमें होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें होता है, तो इसलिए आप कंसल्ट करें। बिहार में कहाँ से रहते हैं मैं मालूम नहीं है, पटना में भी कॉलेज है, आप पटना में जाके दिखा सकते हैं, वहाँ पंचकर्म वालों से मिल सकते हैं, आपको उसका सही उपचार मिल जाएगा
1: जी। और चूंकि अब मेरा अपना कुछ प्रश्न है श्रोताओं की ओर से, वो भी पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या अम्ला यानी कि खट्टापन और लवण यानी कि सॉल्टी और मीठा और कड़वा यानी कि कड़वी जो चीज़ें हैं और कसीली चीज़ें, क्या इनका भी ऋतुचर्या में खान पान या दिनचर्या में खान पान अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग समय पर होना चाहिए?
0: बिल्कुल होता है। वैसे जनरली हमारे यहाँ भोजन को षड्रस युक्त कहा गया है कि सारे भोजन में 6 के 6 रस होने चाहिए। तो भोजन करते वक्त आपने देखा होगा, अपनी अपनी परंपराएं हैं कि कहीं हम लोग मीठा पहले खाते हैं फिर खाना खाना शुरू करते हैं, कहीं हम लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं। तो अवण, लवण और अम्ल ये दोनों तो खाने में होते ही हैं,
1: जी,
0: साथ में कटु और तिक्त, क्योंकि आप देखते हैं सारी मिर्चें पड़ते ही हैं उसमें, तो षड्रस युक्त भोजन का अपना इंडिकेशन है और 6 के 6 रस हमारे खाने में होने चाहिए।
1: जी,
0: तो इसलिए ये कह देना कि हमको ये खाना ही नहीं खाना, ये कंडीशन वाइज डिपेंड करता है कौन सी डिजीज़ है। अगर हाइपरटेंशन हो तो हम कहते हैं कि नमक नहीं खाना है, हम कहते हैं डायबिटीज़ है तो हम कहते हैं मधुर रस नहीं खाना है, तो उस तरीके से ये कंडीशंस आती हैं हमारे पास, तो वहाँ पे केवल हमारा रोक होती है। अदरवाइज आपको कोशिश ये करनी है कि षड्रस युक्त भोजन करना है,
1: जी,
0: मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 के 6 रस होने चाहिए हमारे भोजन में, तो ही हमारा भोजन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है
1: जी। और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, जल्दी से बता दीजिएगा कि शाकाहारी मांसाहारी फलाहारी भोजन का उपयोग कई लोग करते हैं, और क्या इसका भी दिनचर्या ऋतु के अनुसार होना चाहिए?
0: नहीं, होता है, बिल्कुल होता है, अपने हिसाब से कहा जाता है, लेकिन जहाँ पे केवल हमारे पास शाका, अब आजकल की रीजनल और सीजनल की वेरिएशन की बात करते हैं, तो हम किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट मिल रहा है आजकल, तो वो नहीं हो सकता है। हमको रीजनल और सीजनल आहार का प्रयोग करना चाहिए, जिस सीजन में जो चीज़ें मिलती हैं उसको वहाँ खाना चाहिए, जिस सीजन में जो चीज़ें नहीं मिलती उसको वहाँ नहीं खाना चाहिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और हमारे श्रोताओं का भी आपने जवाब दिया, मैसेज के जरिए, फ़ोन कॉल्स के जरिए बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ दी, और हमें मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इन सब बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारियाँ दी, वक्त निकाला आपने,
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद। और बहुत सभी श्रोताओं का भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमको पुराने गाने, अपने पुरानी जिंदगी याद दिला दी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को सुधारना होगा।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीब ही सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा

0: में काम करेंगे।
1: इस अवसर पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने ब्रातिस्लावा में द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर श्री रॉबर्ट फिको ने भारत द्वारा हासिल की गई आर्थिक वृद्धि की सराहना की। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। भारत ने समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में जोरदार उछाल देखा गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर $83 और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जेन। और अल्फा जेन में हम बात करते हैं नई जनरेशन की, हम बात करते हैं युवाओं की। और आज भी हम आपके खास प्रोग्राम अल्फा जेन में लेकर आए हैं एक खास टॉपिक, और इस पर होगी बात। लेकिन शुरुआत एक बेहतरीन गाने के साथ।

0: दोस्तों आप लोग भी बहुत बेसब्र हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि आज प्रोग्राम अल्फा जेन में क्या टॉपिक है, किस पर बात होने वाली है और आप उस टॉपिक से कितना रिलेट कर पाएंगे। तो पहले तो ये बता दें कि मंडे के दिन खास आप में से किसी एक खास को मिलता है मौका यहाँ पर आने का स्टूडियो में और युवाओं का रुख रखने का, उनके सपनों के बारे में बात करने का, उनके नजरिए से चीज़ों को देखने का। तो आज ये मौका मिला है अंजलि को। अंजलि 12th की स्टूडेंट हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अंजलि बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप यहाँ पर आके, आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का और हमारे लिसनर से बात करने का?
1: मैम बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके अलग अलग लोगों से मिलके। और दोस्तों गुड इवनिंग, एंड मैं आज बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक लेके आई हूँ जिसे कहते हैं यंग ड्रीम्स ऑफ यंग जनरेशन।
0: बहुत बढ़िया अंजलि, हम बात करेंगे सपनों की और युवाओं के सपने क्या हैं, उनमें क्या खासियत है। और भाई पहले के जो युवा होते थे वो बहुत अलग होते थे क्योंकि जनरेशन बदल रही है। अब ज़माना है अल्फा जेन का, तो अल्फा जेन के सपनों की करने वाले हैं हम बात।

0: आई एम श्योर इस गाने के साथ साथ आप भी गुनगुना रहे होंगे और झूम रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी कुछ ऐसी ही है। और आज जब बात करते हैं युवाओं की, तो युवा भी चाहते हैं कि हम काम तो करें लेकिन साथ साथ में लाइफ को एंजॉय करते रहें। क्यों अंजलि, आपको क्या लगता है कि क्या है युवाओं का सपना?
1: दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के यंग जनरेशन के बारे में। जैसे पहले के 90s और 80s के यंगस्टर्स

0: सिर्फ पैसा कमाकर अपने घर को सपोर्ट करने के बारे में सोचते थे और उनके कुछ ज़्यादा बड़ी ड्रीम्स नहीं हुआ करते थे। पर आज के यंगस्टर्स सिर्फ अपने घर को सपोर्ट करने के बारे में ही नहीं, अपने लाइफ को मीनिंगफुल, पीसफुल और इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में भी सोचते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। और इसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं गाना, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं का एक मोटिव होता है कि वो चाहे जिस भी फील्ड में जाएं, उसको फतेह करें, जीत दर्ज करें अपनी और सफलता के मुकाम हासिल करें। और इसी जनरेशन के लिए हम ये सारी उम्मीदें चाहते हैं कि वो पूरी करें अपनी सारी उम्मीदों को और अपने परिवार का नाम रोशन करें। साथ ही साथ अंजलि इस टॉपिक पर आगे भी बात करेंगी, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये गीत।

ये मानते हैं लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं होती, लाइफ इंजॉय और अचीव करने के लिए होती है। कई यंगस्टर्स डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना रहे हैं और कोई लोग म्यूज़िक, डांस, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन में करियर बनाना चाहते हैं। तो आगे हम जेन अल्फा की और बातें करेंगे।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन। और कहीं ना कहीं जो नई शुरुआत जीवन में होती है वो कभी भी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं यही मायने रखता है। और आजकल के युवा ना यही सोचते हैं, कई बार अफसोस तो बहुत करते हैं कई चीज़ों का, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनक्रेज भी करते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब एक नई शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं।

एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: वेलकम बैक दोस्तों। ड्रीम्स देखना इजी होता है, लेकिन उन्हें अचीव करना उतना ही मुश्किल होता है। आज के यूथ बहुत प्रेशर फेस करते हैं, जैसे करियर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजन और फ्यूचर इनसिक्योरिटी। कभी कभी तो यंगस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ड्रीम्स फॉलो करें या फिर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। पर मुझे लगता है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ देयर ओन टाइमलाइन।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो स्ट्रगल भी बड़े होंगे, लेकिन सक्सेस ना मिलने पे घबराना नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। फेलियर लाइफ का एंड नहीं होता, फेलियर एक्चुअली हमें स्ट्रांग बनाता है। इतने बड़े बड़े एक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, सिंगर, साइंटिस्ट, उनमें और हम में बस इतना डिफरेंस है कि वो लोग कभी गिव अप नहीं करते, और आप भी कभी गिव अप मत करना।

0: बिल्कुल दोस्तों, हमारे युवाओं की भी यही कोशिश है कि किसी तरीके से छलांग लगाएं और जल्दी से हम सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगें। लेकिन होता क्या है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अंजलि ने बात की फेलियर की, जब असफलता हाथ नहीं लगती, संघर्षों के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाने लगता है। क्यों अंजलि, आपको क्या लगता है कि जब विश्वास डगमगाने लगे तो क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए?
1: बिल्कुल, हमें कभी कभी दुनिया हम पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि हमारी लाइफ में हम काफ़ी बार फेल हो चुके होते हैं, पर कभी इम्पोर्टेंट पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद पर बिलीव करना।
0: बिल्कुल
1: अगर आप खुद पर बिलीव कर सकते हो तो आप पूरी दुनिया फतेह कर सकते हो।
0: सही बात
1: अगर
0: है।
1: आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप यही थॉट आपको एकदम फेल कर देगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, आई विल ट्राई अंटिल आई विल सक्सीड, दिस ये आपको सक्सेसफुल बना देगा।
0: बिल्कुल, यानी कि आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ा जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो असफलता है सबको मिलती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, निरंतर प्रयास करने हैं। और फिलहाल प्रोग्राम अल्फा जेन में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बिल्कुल, जब माता पिता आपके साथ होते हैं ना, तो यही लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार माता पिता की आकांक्षाओं को बच्चे पूरा नहीं कर पाते, या फिर कहना चाहिए कि वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा उनके पेरेंट्स चाहते हैं। तो अंजलि, आप युवाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसे में माता पिता को कैसे रिएक्ट करना चाहिए?
1: बिल्कुल मैम, हर बच्चा अपने आप में बहुत यूनिक होता है। हर यंगस्टर्स का ड्रीम डिफरेंट होता है। कभी कभी कंपैरिजन यंग माइंड्स को इमोशनल वीक बना देता है, इसलिए पेरेंट्स को सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। और हर बच्चा अपने आप में जैसे कि बहुत यूनिक होता है, तो उनके हर काम में उनके माँ बाप का उनका साथ देना बहुत ज़रूरी होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, सही बात है कि चाहे चलते चलते अगर बच्चा गिरेगा भी, तो संभालने के लिए माता पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और उनको ये समझना चाहिए कि हर बच्चा परफेक्ट नहीं है, वो अपने आप में खास है, अलग है, और उसकी कैपेबिलिटीज़ भी अलग हैं। इसीलिए चाहे वो उस लेवल का परफॉर्म

न करे जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी आकांक्षाओं का बोझ उसके ऊपर नहीं डालना है, बल्कि उसको एनकरेज करना है लगातार आगे बढ़ने के लिए, गिरने के बाद उठने के लिए, और फिर एक बार और अपनी सफलता की ओर कदम आगे बढ़ाने के लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन, और अल्फाजन में हम बात कर रहे थे युवाओं के सपनों की। तो अंजलि, जाते जाते क्योंकि समय हो चुका है हमारे जाने का, तो जाने से पहले आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है?
1: सक्सेसफुल वही होता है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ट्राई करते रहे। ड्रीम्स सिर्फ खुली आंखों से देखने से पूरे नहीं होते, ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी से।
0: बिल्कुल सही बात कही अंजलि, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लगातार प्रयास बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसी नोट पर हम आपको कहेंगे बाय बाय, और अंजलि और मैं, हम दोनों ही आपसे लेते हैं विदा क्योंकि समय हो गया हमारे जाने का। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर, इसलिए आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।

0: मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में या भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

का स्वागत है। मैं हूं मस्त मलंग, आज श्वेता आपके साथ, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है सिटी लाइट्स, जहां पे बातें होती हैं दिल्ली एनसीआर में। आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहां की कौन सी खबर आज मैं आपको बताने वाली हूं, वो जानना है तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए एफएम रेनबो पर, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली एनसीआर में। इसके अलावा अलग अलग शहरों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर और न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू वर्ल्ड वाइड आप हम तक जुड़ रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, आपकी और मेरी बातें कितनी सारी होती हैं ना। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। कभी कभी ऐसी बातें करती हूँ जिसकी वजह से आप खुद से अपने आप से मिल जाते हैं। और कौन कौन सी बातें होती हैं, बस जुड़े रहिए मेरे साथ और जानते रहिए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मस मलंग आरजी श्वेता के साथ। और सिटी लाइट्स में जो है आज हम बात करने वाले हैं ढेर सारी, कुछ घूमने की बातें करने वाले हैं तो कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ नोएडा बल्कि बहुत सारे शहरों में और बहुत सारी जगहों पर इस बात को सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। तो आपको बता देती हूँ कि जो नोएडा है उसे नो डिस्पोजेबल जोन बनाने की मुहिम तेज हो रही है। अब देखते हैं

में हम लोग अक्सर की भंडारे होते हैं, विवाह समारोह होते हैं, उसके लिए एक बर्तन जो है उसका बैंक का बनाया जा रहा है, यानी एक बर्तन बैंक बनाने का सोच रहे हैं और बहुत सारा जो है बन भी चुका है। नोएडा में बन चुका है एक बर्तन बैंक और ये वरदान के रूप में सामने आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे बर्तन बैंक ये कैसा बैंक है भाई, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बर्तन मिल जाएंगे। कैसे बर्तन मिलेंगे? तो नो डिस्पोजेबल जोन बनाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम एक फाउंडेशन कर रही है, जिसके तहत बहुत सारे काम वो कर रही हैं कि बर्तन उनको जिन्हें चाहिए होते हैं, कभी भंडारे के लिए, कभी विवाह समारोह के लिए, या छोटे मोटे जितने भी आपके चल रहे हैं उन सब पर जितने भी बर्तन आपको लगते हैं वो सब बर्तन आपको देंगे। और आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे, बस मुफ्त में बर्तन बैंक की शुरुआत की जाती है, मुफ्त में आपको बर्तन मिलेंगे। और ये बर्तन कैसे मिलेंगे आपको जानना चाहते हैं आप? देखिए कैसे एकदम से सोच में नहीं पड़े हैं, सीधा बोल रहा है हाँ, गर्दन एकदम हाँ में घूमी है ना। अब देखिए गर्मी के मौसम में राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना हो, शरबत का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, डिस्पोजेबल ग्लास में नहीं करें बल्कि स्टील के बर्तन में कर रहे हैं लोग। और लोगों में प्लास्टिक का उपयोग ना करने का ये संदेश देने के लिए सेक्टर 44 में वहां की फाउंडेशन ने निःशुल्क बर्तन बैंक की शुरुआत की है। और इस पहल के तहत आयोजनों के लिए बिल्कुल एकदम फ्री में स्टील की प्लेट्स, कटोरियां, गिलास, चम्मच, जग और जितने भी जरूरी बर्तन होते हैं वो सब आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसमें ना सिर्फ प्लास्टिक कचरे की कमी आएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के पुनः उपयोग की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो देखिए कितना अच्छा है ना ये पहल। आप भी अगर अपने शहर में, अपनी जगह, अपनी सोसाइटी में इस पहल को करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम तो नेचर के प्यार में हैं और इस नेचर को और अच्छा से बनाना है, यही है हमारा प्यार हमारी प्रकृति की तरफ।

अगर आप भी प्रकृति से, नेचर से प्यार करते हैं तो इस मुहिम को अपनी सोसाइटीज में, अपने आसपास की जगह जरूर स्टार्ट कीजिए, जरूर इसका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो बर्तन बैंक है ये एक व्यवहारिक और टिकाऊ समाधान बनकर उभरा है। चाहे आपको भंडारे के लिए बर्तन चाहिए, विवाह समारोह, शादी ब्याह के लिए चाहिए, कोई आपको कोई आयोजन कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, या कोई भी जन जागरूकता कार्यक्रम में आप इन बर्तनों की सुविधा ले सकते हैं, इस बैंक की सुविधा ले सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, जब आप यूज करने के बाद बर्तनों को साफ सुथरी अवस्था में वापस करना होगा, और डिस्पोजेबल ना यूज करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है। मैं भी आपसे यही कहूंगी। आप सुन रहे हैं फिलहाल प्रोग्राम सिटी लाइट्स में मैं हूं आपके साथ, आपकी की अपनी मस्त मलंग आरजे श्वेता, और फिलहाल चलिए चलते हैं एक और गाने की ओर, और इसके बाद बताऊंगी आपको एक आसन के बारे में। अब भाई योग डे आने वाला है और आपको एक आसन के बारे में ना बताऊं, हाँ, चिंता मत कीजिए, कोई बहुत मुश्किल आसन नहीं, बहुत ही आसान सा आसन है। जब बताऊंगी ना तो आप कहेंगे अरे वाह, ये आसन हमें पहले क्यों नहीं पता था, इतना आरामदायक आसन है ये।

तो चलिए आपको बता देती हूँ मकर आसन के बारे में। हाँ देखिए जरा, नाम से ही समझ में आ जाता है ना कुछ कुछ। मकर आसन, हाँ मकर यानी कि मगरमच्छ। और मगरमच्छ कैसे लेटता है, कैसे चलता है? एकदम आराम से पेट के बल। तो बस यही है वो आसन, पेट के बल लेटकर किया जाने वाला एक बहुत ही आरामदायक योगासन है, और ये है मकर आसन। कितना डर रहे थे ना कि पता नहीं कौन सा आसन बताने वाली है श्वेता। मुझे मालूम है आप लोगों को पूरा टाइम जो है ना इतना सब काम करना होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। थोड़ा सा ऐसा आसन करना है जिसमें हमें हमारी जो बॉडी है ना उसको आराम मिले, एक एक जो जोड़ है उनको भी आराम मिले, हमारी कमर को भी आराम मिले। तो ऐसा ही ये एक आसन आपके लिए लेकर आई हूँ। विश्राम की मुद्रा है जिसका नाम मकर यानी मगरमच्छ से लिया गया, और ये आसन आपकी टेंशन को दूर करने, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, और रीढ़ की हड्डी के दर्द को, हाँ देखिए आंटी ने कैसे एकदम बोला ना, हाँ हाँ हाँ हाँ जल्दी जल्दी बताओ कैसे करना है ये। कमर का दर्द जो है ना वो सबसे ज्यादा ऐसा लगता है तकलीफ देह है, क्योंकि ना बैठा जाता है ना लेटा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी के जो दर्द होता है ना, स्पेशली कमर का दर्द, स्लिप डिस्क, इसमें राहत देने के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है मकर आसन। तो आपको बता देती हूँ मकर आसन करने की क्या टेक्निक होती है। तो शुरुआती अवस्था में आप बस योग मैट पर पेट के बल आराम से लेट जाइए, पैरों को थोड़ा सा दूर रखिए, यानी अपने पंजों के अंगूठे बाहर की तरफ आपके होने चाहिए, एक तरह से वी जैसे बनता है ना पैर का, थोड़ा सा आप खोल के रखते हैं बस वैसे ही। हाथों की कैसी स्थिति होनी चाहिए, हाथों को आप आगे की तरफ मोड़े, दाई हथेली को बाई हथेली पर रख दे, यानी कि आगे जैसे स्विमिंग करने के लिए हम आगे रखते हैं ना दो हाथ, बस बिल्कुल वैसे ही रखना है, और दाई हथेली को बाई हथेली पर रखना है। और सिर कैसे होना चाहिए, अपने सिर को आगे की ओर थोड़ा सा उठाकर हाथों को यानी हथेलियों पर टिका ले, और सिर को हथेलियों के बाई और दाई ओर झुकाकर आराम करें। कैसे करना है एक बार फिर से आपको बताती हूँ, बस लेट जाइए पेट के बल, अब पंजों को जो है पंजों के अंगूठे जो है वो बाहर की तरफ होने चाहिए, और हाथ जो है जैसे हम स्विमिंग करते हैं वैसे आगे लेके जाइए, फिर उसको अपनी हथेली जो आपकी थोड़ी है सिर के आगे की, और थोड़ा सा हाथों को अपनी हथेलियों पर टिका लें, और सिर को हथेलियों के दाई और बाई और झुकाकर आराम करें। बस सांस किस तरह से लेना है, अपनी आंखें बंद करें, गहरी और धीमी सांस लें, ध्यान दें कि सांस लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए, उल्टा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल सीधा सीधा कीजिएगा, तभी ये आसन आपको फायदा देगा। बस यही था आसन, कितना आसान है ना। अब आप सोचोगे ये तो हम हर रोज करते हैं, टीवी देखते वक्त ऐसे कर रहे होते हैं, मोबाइल हाथ में होता है।

0: से ही लेटे हुए होते हैं। तो बस ना टीवी देखना है ना मोबाइल हाथ में लेना है, सिंपल आसन करना है, तभी आपको होंगे फायदे। पीठ और रीढ़ की हड्डी के लिए रामबाण है ये आसन। इसमें जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक आकार को बनाए रखता है, जिसे साइटिका, स्लिप डिस्क और कमर दर्द जैसी समस्याएं है ना, उन्हें देखे कितना छू मंतर वाला एकदम से बहुत ही जल्दी असर करता है, तनाव कम करता है। क्योंकि जब आप ऐसे लेटते हैं ना दाई तरफ मुंह कर या बाई तरफ मुंह कर, जैसे बच्चे लेटते हैं कभी कभी, देखा है आपने, और पीछे पैर कैसे ऐसे झुला रहे होते हैं, बस आपको पैर झुलाना नहीं है, आपको सीधे रखने हैं, और भी बच्चों की तरह ही आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसी के साथ पाचन क्रिया में भी आपके सुधार आता है, और जो आपको सांस लेने की ये इसमें क्रिया बताई है, ये फेफड़ों को पूरी तरह से खोलने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से जिन्हें अस्थमा है, स्पेशली जिन्हें अगर अस्थमा है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये आसन। बस अब आप कीजिए ये वाला आसन और फिर मुझे दीजिएगा दुआएं, और दुआएं देते वक्त याद रखिएगा सावधानियां बस इसमें, कि आपको फ्रोजन शोल्डर अगर है, कंधे में जकड़न की थोड़ी सी भी समस्या है, तो आप इस आसन को करने से थोड़ा सा बचिएगा, नहीं तो आपको और दिक्कत हो सकती है। और हाँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी पेट के बल लेटने वाले इस आसन से बचना चाहिए, बाकी कोई भी ये आसन कर सकता है। तो बस अब रंग जाइए इस प्यारे से आसन के रंग में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ।
1: नीले उलझ गए कैसे कोई, हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले, सगन समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन में दंग और तन में दंग।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अभी आप अगर कहीं जा रहे हैं ट्रेन से और चल रहे हैं अकेले और आपको लग रहा है कि सीट नहीं मिलेगी, ओहो हमारी तो वेटिंग में है, तो क्या करें क्या ना करें, इसके लिए आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खुशखबरी। IRCTC चार्ट वैकेंसी, चलती ट्रेन में आप खुद ढूंढ ढूंढ सकेंगे खाली सीट। हाँ जी, TTE के चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी खुशखबरी है ना। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, पूरी बात बताऊं क्या? हाँ जी जरूर, चलिए आपने कहा और ना बताऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस IRCTC का एक फीचर आपको मैं जल्दी से बताती हूँ, जिसमें आप चलती ट्रेन में खाली सीट पता लगाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और ये फीचर उन लोगों के लिए है जो वेटिंग टिकट पर सफ़र कर रहे होते हैं या फिर खाली सीट के लिए TTE के चक्कर लगा रहे होते हैं, और इस फीचर की मदद से आप खुद ट्रेन में खाली सीट ढूंढ सकते हैं। दरअसल काफ़ी कम लोग जानते हैं कि IRCTC की वेबसाइट पर एक ऐसा फीचर मिलता है जिसकी हेल्प से आप चलती ट्रेन में पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी सीट खाली हैं। तो अब ये आप जाइए IRCTC की वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि सफ़र में कौन सी सीटें खाली हैं। बस ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करना ज़रूर समझ लें। और क्या है चार्ट वैकेंसी फीचर? तो ये IRCTC के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाने वाला एक फीचर है, जिसकी मदद से चलती ट्रेन में खाली सीट के बारे में पता लग सकता है। ट्रेन का ऑनलाइन और लाइव रिजर्वेशन चार्ट होता है, जिसकी फाइनल चार्ट बनने के बाद आप उसको आराम से देख सकते हैं। इससे आपको

ट्रेन के किसी भी डिब्बे में कौन सी बर्थ या सीट खाली है इसकी लाइव जानकारी आपको मिल जाती है। और ऐसे में अगर कोई वेटिंग टिकट के साथ यात्रा कर रहा है तो बस आप वो इंसान पता लगा सकता है उसे बैठने के लिए खाली सीट कहाँ मिलेगी। और आप मोबाइल पर खाली सीट देखकर सीधे टीटीई के पास जा सकते हैं और नियम के तहत उसे अपने नाम अलॉट करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बताया तो है नहीं इसने कि आखिर पता कैसे करें। हाँ तो चलिए बता देती हूँ भाई, उससे पहले एक भूमिका बांधनी भी जरूर होती है ना, बताना तो जरूरी है कि ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहां पर रेल कनेक्ट ऐप को खोलना है। जी, रेल कनेक्ट ऐप। और होम पेज पर मौजूद चार्ट्स या ऑब्लिक वैकेंसी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधे रिजर्वेशन चार्ट पेज पर वो आपको ले जाएगा। अब अपनी ट्रेन का नंबर, सफर की तारीख और जो बोर्डिंग स्टेशन है वहां पर आप लिख दीजिए। उसके बाद गेट ट्रेन चार्ट पर क्लिक करें और इससे आपके सामने ट्रेन का क्लास वाइज लेआउट आराम से खुल जाएगा। बस अब क्या करना है, अब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर में से अपना कोच टाइप चुने। आपके सामने खाली सीटों की पूरी लिस्ट कोच और सीट नंबर के साथ मिल जाएगी। तो अब बता दिया ना आपको कि किस तरह से आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं और खाली सीट आपको नहीं मिल रही है तो कैसे आप ढूंढ सकते हैं। अब फिलहाल बात हुई है सीट की और ट्रेन की, तो क्यों ना और भी बहुत सारी बातें होंगी। ट्रेन की ही बात होने वाली है, लेकिन क्या नया हो रहा है आखिर इंडिया और एक और राष्ट्र के साथ। ट्रेन यात्रा के बारे में ही बताऊंगी, बस जुड़े रहिए मेरे यानी कि मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। टाइम टाइम तो भाई बहुत ही सही हो रहा है, शाम का 5:43। सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

वैसे ट्रेन का सफर जितना अच्छा सफर पता नहीं, ऐसा लगता है कहीं और नहीं मिल पाता है। ट्रेन में एक अच्छा सा सफर हो जाता है, मजा आता है। बाहर जब इतनी हरियाली देखी जाती है या अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है, कभी कोई शहर आता है, कभी जंगल आता है, कभी नदी आती है, कभी पहाड़ आता है। और अगर आप भारत के अलावा भी कहीं और जाना चाहते हैं तो IRCTC ने एक नई पहल करी है, और उसका नाम क्या है जानना चाहते हैं? भारत नेपाल मैत्री यात्रा। हाँ जी, ये जो भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटन रेल है उसे हरी झंडी दिखाकर अब भाई यहाँ से रवाना कर दिया गया है। ये जो ट्रेन है ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से नेपाल जाएगी, जहाँ पर आप ये इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के द्वारा शुरू किया गया इस यात्रा पैकेज में पर्यटक जो है वो भारत और नेपाल के अलग अलग धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। 10 दिन के इस सफर के दौरान यात्री भारत में अयोध्या, वाराणसी, सीतामढ़ी और नेपाल में जनकपुर, काठमांडू और पोखरा के बहुत सारे धार्मिक स्थलों के साथ ही ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा कर सकेंगे। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बस IRCTC की वेबसाइट से आप जानकारी ले सकते हैं कि अगली ट्रेन कब जाने वाली है और किस तरह से आप इसमें सफर कर सकते हैं। वैसे नेपाल की बात हो और वहां पर महादेव की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? महादेव के दर्शन भी जरूर कीजिएगा।

चलिए चलते चलते आपको बता दूं कि अगर कहीं पर भी आपको पार्किंग से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो आप उसको कहां और किस तरह से सुलझा सकते हैं, कहां कॉल कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के अधीनस्थ पार्किंग की समस्याओं को लेकर नागरिक नियम ऐप 311 और निगम हेल्पलाइन नंबर 155305 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट mctonline.nic.in पर आप ये सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं और इसमें निगम के पार्किंग के शुल्क और अन्य सूचनाएं भी उपलब्ध होंगी। तो अगर कोई आप कहीं पर ऐसी पार्किंग कर रहे हैं जहां पर नगर निगम का है और आपको लगता है कि वहां पर ज्यादा पैसे ले जा रहे हैं तो बस आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मस्त मनंग आरजे श्वेता को यहीं पे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने चेहरे पे रखिए मुस्कुराहट, ना जाने उसे देखकर कौन मुस्कुराना सीख जाए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है।

0: रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं आपके साथ भगवती। तो कैसे हैं और कैसा है आपके यहाँ का मौसम? क्योंकि मौसम जो है वो हर रोज़ बदल सा रहा है। आज सुबह से जैसे धूप छाई हुई थी, पहले तो बहुत तेज़ की, उसके बाद फिर ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी, मतलब आंधी आ गई, और ऐसे ही मतलब फिर से धूप खिल गई। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होगी, बादल बरस पड़ेंगे। तो मतलब मौसम जो है ना वो बदलता नहीं है। अब कई सारी यादें भी बना जाते हैं अपने साथ। अगर आप याद करें किसी, कभी बहुत तेज़ धूप जो है हो और उस समय की कोई

आपको याद आ जाती है कभी दोबारा से जब वैसे मौसम में जाते हैं, सफर करते हैं तो, या फिर कभी मौसम बहुत सुहाना रहा हो तो सुहाने मौसम से जुड़ी कोई बात दोबारा जब मौसम सुहाना होता है ना तो फिर से आ जाती है, दे देती है दस्तक हमारी जो यादों की, यादों का जो कमरा है ना उस पर। और आज जैसे हमने कहा कि सुबह से जो है आंधी चली, और ऐसे तो कभी कोई बात बताइए ना, कोई ऐसी बात जो कि आंधी से जुड़ी हो, मतलब कि चलिए टॉपिक मान लेते हैं आज का है कि आंधी आई और डैश डैश डैश यानी आंधी या तूफान से जुड़ी आपकी कोई याद, कोई मज़ेदार किस्सा, कोई रोमांचक अनुभव या कोई ऐसी घटना जो आज भी याद आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। हमें बताइए आंधी आई और क्या हुआ, क्या उड़ गया, कौन फंस गया, किसकी शरारत पकड़ी गई या फिर किस यादगार पल ने जन्म लिया। अपने मैसेजेस भेजिए हमें और हमारे साथ शेयर कीजिए अपनी बात और हम वो बात शेयर करेंगे सबके साथ। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज द नंबर फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस।

नीलम दिल्ली बरवाला से कहती हैं कि जब हम छोटे थे गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गए थे तो हम रात को छत पर सो रहे थे। इतनी तेज आंधी आई, चादर तो हमने दबा ली लेकिन चप्पल हमारे उड़ के पड़ोसियों के छत पर पहुंच गई थी। चप्पल लगता है बहुत हल्की थी या फिर दीवार बहुत नीची थी, नहीं? सौरभ अनेजा गाजियाबाद से कहते हैं कि दोस्त अभी आपकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया, उम्मीद नहीं थी कि आज आप इस शो में आएंगे, तो आज आपका आना सरप्राइज लगा, क्या बात है। और आपका जो मैसेज होता है ना, जनरली पहले जो मैसेज आता है वो आता है गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक, तो ऐसा अलग से ऐसा मैसेज का नहीं आना हमें सरप्राइज लगा। हालांकि इस मैसेज के बिगिनिंग में आपने वो लाइन्स ऐड कर दी हैं। लिखते हैं नमस्ते मैम, कौन है, कहाँ से हैं, कुछ नहीं लिखा, नमस्ते के आगे भी तो कुछ कह डालिए। कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, हम सभी आपको सुन रहे हैं, सुनते रहिए जी। और जो हमने पूछा है उसका जवाब भी दे डालिए। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से कहते हैं कि आंधी जब सीमांचल में आती है तो किसानों की खड़ी फसलें गिर जाती हैं जिससे भारी नुकसान होता है। तेज हवाओं से गरीब परिवारों के कच्चे मकान और टिन की छतें भी उड़िया गिर जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ आंधी सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए चिंता और परेशानी का कारण बन जाती है। एंड दैट इज सो ट्रू। ये है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और आपके साथ हूं मैं भगवती।

अगर आंधी तूफान से जुड़ी आपकी जिंदगी का कोई फिल्म या रोमांचक किस्सा है तो अभी भेजिए अपना संदेश 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 है नंबर।

नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से कहते हैं गुड इवनिंग जी। कहते हैं कि हमारी जो यादें हैं बचपन की आंधी से जुड़ी हुई, सुबह सुबह जाकर के बैग में अमिया और आम भर लाते थे, इंतजार रहता था कि आंधी कब आएगी। अनिल शर्मा सरिता विहार से कह रहे हैं कि बचपन में बारिश में छाता लिए स्कूल जाते वक्त तेज आंधी आई और तब आंधी में जो है छाता उड़कर दूर चला जाता था, जब भी ऐसा होता था कहना चाह रहे हैं, और मैं भीग जाता था। देन वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास जो मैसेज है किन का है, कहां से है, या पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं कि 2014 की घटना है, मई का महीना था, दोपहर के समय बहुत तेज आंधी आई और मेरे पड़ोस के लोगों ने सूखने के लिए कपड़े घर के छत पर रखे थे और तेज आंधी से कपड़े और जो साड़ी थी उसमें वो उड़कर बहुत दूर चले गए। उसे ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक जाना पड़ा और तब जाकर जो है वो साड़ी मुझे मिली, बाकी कपड़े नहीं मिले और वो लाकर मैंने दे दी थी। जैसे आपको ये घटना याद है ना, आई एम श्योर कि उनको भी जो है जब भी वो साड़ी को देखते होंगे ना तो जरूर आपकी याद आती होगी और वो घटना याद आती होगी। पहाड़गंज मुंतारी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक कहते हैं अक्सर आंधी के बाद शांत और सुहावना मौसम बचपन की उन पुरानी यादों को ताजा कर देता है, जब तूफानी हवाओं और बारिश के बीच बाहर खेलने का अपना ही एक अलग मजा हुआ करता था। हीरामणि वर्मा दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से कह रहे हैं कि सच कहूं तो बचपन में आंधी तूफान में पतंगबाजी का बहुत मजा लेते थे। आम व जामुन के बगीचे में आंधी तूफान के बाद गिरे हुए आम को बीनने के लिए टूट पड़ते थे, पर अब आंधी तूफान से डर सा लगता है।

रोहित जयपुर से कह रहे हैं, बचपन में एक बार बहुत तेज आंधी आई, मम्मी ने छत पर पापड़ सुखाए थे। आंधी इतनी तेज थी कि सारे पापड़ उड़कर पड़ोसी के छत पर पहुंच गए और अगले दिन पड़ोसी अंकल बोले, कल आपके पापड़ हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए थे। कहते आज भी वो बात याद करके हंसी आ जाती है।

रामधारी अवाना गांव ढाड़ी कुतुबपुर तहसील व जिला हांसी हरियाणा से कहते हैं, मुझे अपने बचपन की घटना आज भी याद है। जब मैं लगभग 8-9 वर्ष का था, तब जिद करके अपने पिताजी के साथ एक रिश्तेदार की शादी में गया था। अचानक तेज आंधी आई और शादी का जो टेंट था वो उड़ गया। इस दौरान जो है कहते हैं कि कई सारे लोगों को चोटें आईं इनके साथ साथ, और लोगों ने जो है लोगों ने मेज़ कुर्सियों का सहारा लिया खुद को आंधी से बचाने के लिए, और आंधी से जो है शादी वाले परिवार को भी काफ़ी नुकसान हुआ और सामान भोजन जैसे चीज़ें जो है वो ख़राब भी हो गई। कहते हैं ये घटना आज भी मेरी स्मृति में ताज़ा है और हर आंधी तूफान के समय मुझे याद आ जाती है। दैट वॉज रियली ट्रेजिक। पूजा लखनऊ से कहती हैं, जब मैं छोटी थी एक शाम अचानक आंधी आई और बिजली चली गई, पूरा परिवार आंगन में बैठ गया। दादी ने कहानियां सुनाई, मतलब कहना चाह रही हैं कि दादी ने जो है अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई पीछे की जो बातें थी कहानियां इन्हें सुनाई, और कहती हैं आगे कि हमने सबने मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाया। आज भी वो शाम मेरी सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। कितनी सुंदर याद है ना। और आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में ऐसी शामें बहुत कम देखने को मिलती हैं, मतलब अगर लाइट चली भी जाती है तो मोबाइल तो है ना हाथ में। कभी कभी जो है आंधी बिजली तो ले जाती है लेकिन परिवार को जो है एक दूसरे के करीब भी ले आती है। नहीं, संदीप भोपाल से कहते हैं, मैं कुछ साल पहले बाइक से घर लौट रहा था कि अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। मैं एक छोटे से ढाबे पर रुक गया। वहां पहले से बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। 2 घंटे तक हम सब बातें करते रहे, चाय पीते रहे और अजनबी लोगों के साथ बिताए वे 2 घंटे आज भी याद हैं।

0: कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान कहते हैं कि हमारे यहाँ कस्बा गुन्नौर में 1980-85 तक छप्पड़ जो है हुआ करते थे। जब आंधी आया करती थी तो काफ़ी लोगों के छप्पड़ जो है उड़ जाया करते थे और हम लोग उनकी मदद को जाया करते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं। प्रदीप सोनार परी और प्रियली सोनी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहते हैं कि अभी परसों ही हमारे जिले मुख्यालय टीकमगढ़ में काफ़ी जोर से आंधी आई जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरे पास एक छोटी सी बगिया है उसमें जो है फल फूल के बहुत सुंदर पौधे लगे हुए हैं उनको भी जो है नुकसान पहुंचा। कृष्णकांत सिंह सोलंकी सामंतपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश से कह रहे हैं आंधी में जब पेड़ से आम गिरता था और लपक कर पकड़ने में जो है उसे बहुत मजा आता था ताकि कोई दूसरा आम न बीन पाए। ये है रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से कहते हैं एक बार हमारे यहाँ जोर की आंधी आई ओलावृष्टि भी हुई बहुतों के टिन के छप्पर उड़कर इधर उधर चले गए। रात भर वो लोग भीगते रहे सवेरे बहुत खोजने पर उनके टिन मिले। नेहा इंदौर से कह रही है स्कूल से घर लौटते समय अचानक तेज आंधी आ गई हम सब दोस्त एक दुकान के शटर के नीचे खड़े हो गए आधे घंटे तक वहीं हंसी मजाक चलता रहा। उस दिन घर देर से पहुंची तो डांट भी पड़ी लेकिन दोस्तों के साथ बिताए वो समय आज भी याद है। मतलब बचपन की छोटी छोटी बातें जो है बाद में बड़ी प्यारी यादें बन जाती हैं। नहीं तो आंधी आई और आपके साथ सबसे मजेदार क्या हुआ था क्या कोई ऐसी घटना है जिसे याद करके आज भी हंसी आ जाती है आपको। बचपन में आई किसी तेज आंधी या तूफान की याद है उस दिन क्या खास हुआ था या क्या कभी आंधी की वजह से आपकी कोई योजना बदल गई या कोई यादगार सफर बन गया शेयर कीजिए हमारे साथ। 9868107070 है नंबर। यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ भगवती।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे वहां पर अब बिजली

बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

अमन वाराणसी कहते हैं कि गर्मियों में जैसी आंधी आती थी हम बच्चे समझ जाते थे कि अब आम गिरने वाले हैं। आंधी रुकते ही पूरा मोहल्ला आम बीनने के लिए निकल पड़ता था। कभी कभी आम से ज्यादा प्रतियोगिता होती थी कि किसने सबसे ज्यादा आम इकट्ठे किए हैं।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं भगवती और मैं जानना चाह रही हूं आपसे कि आंधी तूफान बरसात से जुड़ी कोई प्यारी सी याद हो जो आपके बचपन की हो, जीवन के पिछले मतलब गुजरे हुए दौर की हो, वो हमारे साथ शेयर करिए और उसे हम शेयर करेंगे सबके साथ। जैसा कि हमने कहा 9868107070 है नंबर जिस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान कहते हैं कि एक वाक्या याद है मेरी बहन की शादी का। जैसे ही खाना शुरू हुआ तो तेज की आंधी और बारिश आई। मेरे सभी दोस्तों ने जैसे तैसे खाने के सामान को बचाया। कहते हैं कि वो दिन भी जो है याद आता है। कहते हैं हमें लग रहा है आंधी की बात चल रही है, तो आंधी में तो भैया हम एक ही काम करते थे, जैसे ही आंधी आती थी तुरंत बगीचे में पहुंच जाते थे और आम के बगीचे में पहुंच जाते थे और वहां से आमिया जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते थे। कौन है? कंचन सोनिया विहार दिल्ली से हैं। बिल्कुल आपको सही लग रहा है, हम बात कर रहे हैं आंधी तूफान बरसात की और उससे जुड़ी कोई बात जो आपको याद आ रही हो वो शेयर करने के लिए कह रहे हैं। सबसे जैसा कि बेबी आपने सुना ही होगा, गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गाँव से कहते हैं मैं 10-12 साल का रहा हूँगा तब 10-12 साल से जो है शायद कहना चाह रहे हैं कि का रहा होऊंगा तो मैं जब खेत पर गेहूं कट रहे थे उस समय जो है जोर की आंधी आई और चटाई दरी और गेहूं के जो है करीब 25 गठर उड़कर 4 खेत दूर पड़ोसी के यहाँ चले गए। ये हैं अक्षय मीन एमपी से, मैं एमपी से अक्षय कह रहे हैं। एक बार आंधी आई और हम छत पर सो रहे थे, आंधी इतनी तेज आई कि हमारी मच्छरदानी पैराशूट की तरह उड़ गई। वो सीन जो है याद आ जाता है तो बहुत हंसी आ जाती है। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से कहती हैं कि इन नवंबर 2016 विक्टोरिया फेस डस्ट स्टॉर्म, कहती हैं कि और बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्टॉर्म था। उस समय बहुत सारे लोगों की जो है जो रोड पर थे वो क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी वो सांस नहीं ले पाए और उसकी वजह से जो है उन्हें ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा और इन्होंने ईश्वर का जो है शुक्रिया अदा कर रही हैं कि जो है उस समय ये घर के अंदर थी, बाहर नहीं थी। रवि दिल्ली से कह रहे हैं मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ा रहा था कि अचानक तेज़ हवा चलने लगी और मेरी सबसे पसंदीदा पतंग आसमान में ऐसी गई कि फिर कभी वापस नहीं मिली। आज भी दोस्तों के बीच उस पतंग का जिक्र होता है। कुछ पतंगें ऐसी होती है ना जो सिर्फ आसमान में नहीं उड़ती, यादों में भी हमेशा उड़ती रहती है।

सुनीता सीकर से कहती हैं, गांव में जब आंधी आती थी सब लोग जल्दी जल्दी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगते थे और उसके बाद जो मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा आती थी पूरे माहौल को बदल देती थी। वो एहसास जो है आज शहर में बहुत याद आता है। आंधी और बारिश के बाद जो मिट्टी की सौंधी से खुशबू आती है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से हैं। कहते हैं कि आंधी और गुस्सा शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। प्रोफेसर ए के टंडन माया इनक्लेव से कहते हैं, 18 मार्च 1978 में एक जबरदस्त टोर्नाडो आया था। मैं स्कूटर पर यूनिवर्सिटी एरिया से शक्तिनगर जा रहा था। तूफान इतना तेज था कि मैं स्कूटर समेत उड़ने को हो रहा था। साइकिलें उड़ रही थी, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। नेक्स्ट डे पेपर में बड़े बड़े हादसों का वर्णन पाया। आज भी सोचकर सिहर उठता हूं। आदिल कमर गुन्नौर जो है कह रहे हैं कि गुन्नौर ने सिर्फ इतना ही लिखा है जगह का नाम। अच्छा, आदिल कमर गुन्नौर कहाँ से हैं, ये लिखा नहीं जगह का नाम आपने, इस मैसेज में हमेशा लिखते हैं आप। तो कह रही हैं कि 12 या 13 साल की उम्र थी, उस समय बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ गए थे और दिन में रात हो गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस जैसा तूफान नहीं देखा है, 66 साल की उम्र हो गई है। गंज टुंडवारा से शमशुल कमर राही कहते हैं, यादें में खूबसूरत फूल हैं जिनकी खुशबू से रूह महक उठती है, दिल खिल उठता है। बात काफ़ी पुरानी है, हम सब परिवार से जो है दिल्ली से लौट रहे थे। रास्ते में आंधी आने पर दादरी एक ढाबे पर

के आंधी थमने के बाद गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम लोग 4 घंटे उस ढाबे पर रहे। फिर एक मैकेनिक द्वारा जो है गाड़ी ठीक की गई और फिर खुदा खुदा करके घर लौटे। तब से जब भी आंधी आती है मुझे वो गाड़ी याद आ जाती है। हुआ ये कि गुस्से में आकर बड़े भाई ने वो गाड़ी बेच दी थी। कहते हैं हमारे यूपी में तूफान आंधी का लिखित में अलर्ट आया था और अलर्ट में हॉर्न की आवाज़ भी थी और वास्तव में 3 घंटे के अंदर ही आंधी तूफान के साथ बारिश भी आ गई और इस अलर्ट से सब लोग पहले से तैयार हो गए थे। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ के राम मेरठ से कह रहे हैं। भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से कहते हैं कि मेरे स्कूल के टाइम पर जो है इंग्लिश टीचर पढ़ा रही थी, इंग्लिश का पीरियड चल रहा था कहना चाह रहे हैं, और क्लास में जो है तभी जोरदार आंधी आई बाहर और सभी लोगों का ध्यान भटक गया। सब बाहर देखने लगे और मौसम का मजा लेने लगे और टीचर बार बार कहती रही कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए, पर सभी जो है मौसम सबका ध्यान मौसम की तरफ था और आंखें में हार कर टीचर को हमको फ्री पीरियड देना पड़ा। कहते हैं कि मुझे आज भी ये वाकया याद आता है। अब फ्री पीरियड का तो अपना मजा होता है ना, तो उसे कैसे भूला जा सकता है।

प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं, बचपन में रात को जब बहुत तेज बारिश होती तो बिजली चले जाने के बाद दिए और टॉर्च की रोशनी के सामने आकर बड़ी बड़ी डरावनी परछाई बनाते थे।

शर्मा सरिता विहार से कह रहे हैं, आज मौसम जो है शाम को बहुत मेहरबान हुआ है, बादलों की शाम को जो है मेहरबानी हुई है, पर डर लग रहा है कि कहीं आधी तूफान ना आ जाए जो बादलों को साथ उड़ाकर ले जाए। देवंती सोनी टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश से कहते हैं कि अभी हफ्ते भर पहले हमारे शहर में आंधियों के बाद बारिश शुरू हुई। बच्चों और उनके पापा जी ने सबने जो है छत पर बारिश का मजा लेना शुरू ही किया था कि कुछ देर में बारिश रुक गई। पता चला उनके कपड़े गीले हो गए, पर बारिश बंद होने से सबके अरमान जो थे वो रखे के रखे रह गए। सिन्हौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है मेरी तरफ जो है तेज आंधी चली, पेड़ झूम उठे और चारों ओर धूल छा गई, लेकिन अफसोस बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यहाँ का भी तो यही हाल है ना। कहते ऐसे मौसम को देखकर मैंने सोचा कि जैसे आंधी कुछ समय बाद थम जाती है, वैसी जीवन की परेशानियां भी हमेशा नहीं रहती। धैर्य, हिम्मत और उम्मीद के साथ हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, हौसलों के आगे टिक नहीं पाता। बहुत बढ़िया बात कही आपने, और इसी के साथ जो है भगवती आज के शो से जाने की अनुमति चाहती है। नमस्कार, थोड़े घंटे भर बाद जो है आपसे फिर मुलाकात होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के

0: प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Tanya Tucker, Delta Dawn, that track with which she kind of just hit the bullseye. It's got that Southern Gothic country ballad kind of a feel to it. And this is her version of classic 1970s country music. And this is pure country, of course. And the one that told the world that someone had actually arrived, and oh boy, how she arrived in that glory, it can only be Tanya Tucker. And what is arriving now for us? It's called a break.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।

फिटनेस सी बॉयज फिल्म का ये ट्रैक आप सुन रहे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। 2011 में आई थी ये फिल्म। आवाजें जैसा कि आप सुन रहे मीका सिंह और शेफाली अल्वारिस की है। म्यूजिक इज कंपोज बाय प्रीतम एंड लिरिक्स बाय कुमार।

दिल धड़कने दो फिल्म का ये गाना आपने सुना शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह, याशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और फरहान अख्तर की आवाजों में। जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स और शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक। एक और बिल्कुल मस्ती भरा ट्रैक प्ले कर दिया है हांसी भगवती ने आपके लिए म्यूजिक मस्ती में। आप तो बस पहने रखिए अपने डांसिंग शूज़।

2014 में माई क्वीन अपनी तरह की एक मूवी थी, और इस मूवी का ये गाना जो है, दिस इज कंपोज बाय अमित त्रिवेदी, लिरिक्स बाय अन्विता दत्त एंड वोकल्स बाय लव झंझुआ, सोनू कक्कड़ एंड नेहा कक्कड़. कंगना रनौत की मूवी का एक और गाना आपके लिए.

बड़ी मियां छोटी मियां फिल्म का ये गाना सुना था आपने अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और निकिता गांधी की आवाजों में। म्यूजिक वॉज कम्पोज बाय विशाल मिश्रा एंड लिरिक्स बाय इरशाद कामिल। खिलाड़ी 786 का ये ट्रैक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। आवाजें श्रीराम और श्रेया घोषाल की।

दिशम फिल्म का ये ट्रैक का, इसे प्रीतम ने कंपोज किया, कुमार ने लिखा है और अमित मिश्रा और सुनीता गांधी की आवाजें थी। प्यार के प्रकार, झूठा वाला, सच्चा वाला, मीठा वाला, कड़वा वाला, इश्क वाला, लव वाला।

कॉकटेल एक रोमकॉम जो 2012 में आई, उसका ये ट्रैक आपने सुना। बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से लिरिक्स इरशाद कामिल के, प्रीतम का संगीत, आवाज से आप पहचान गए होंगे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की। नीरज श्रीधर की आवाज में एक और गाना प्ले कर दिया आपके लिए, साथ है इसमें सुनिधि चौहान का। चेक आउट दिस ट्रैक फ्रॉम द मूवी लवाजकर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश।

0: टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती भगवती के साथ।

9 बजे से सुनेंगे आप प्रोग्राम आपकी याद आती रही, रेशमा फारूकी आपके साथ रहेंगी। 10:05 से सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम रेनबो शो के शालू के साथ। 11:05 पर एक बार फिर आपके साथ रंगे महफिल लेकर रहेंगी रेशमा फारूकी। और अब समय है आपके दोस्त भगवती ले आपसे अनुमति, तो फिर चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, कार्यक्रम आपकी याद आती रही में आपका स्वागत है। आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपके साथ समेटने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए उन यादों को जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा हैं। वाकई यादें इंसान की जिंदगी का वो खजाना है जिन्हें न कोई चुरा सकता है और न ही वक्त की गर्द इन पर पूरी तरह से पड़ सकती है। कुछ यादें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं और कुछ आंखों को नम भी कर जाती हैं। तो चलिए एक ऐसे खूबसूरत सफर पर चलते हैं जहां यादें ही यादें हैं, जहां कुछ चेहरे याद आते हैं, कुछ बातें याद आती हैं, कुछ मुस्कुराहटों पर दिल उदास भी हो जाता है और किसी की हंसी को याद करके हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो चलिए एक खूबसूरत सफर पर मेरे साथ रहिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर।

प्यार गुलो बुल। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना। वाकई मोहब्बत जब अफसाना बन जाए तो समझ लीजिए कि फूल भी बोलने लग जाते हैं और बुलबुल भी गुनगुनाने लग जाती है। एक ऐसी ही दिलकश कहानी हमने इस गीत में सुनी और जब जब इस गीत को सुना जाता है तो मोहब्बत पर यकीन करने को जी चाहता है। फूल और बुलबुल की ये कहानी मोहब्बत, मासूमियत और खूबसूरत एहसास से सजी हुई है और यकीन मानिए हम सब की जो जिंदगी है वो भी इसी तरह के जज्बात को समेट कर एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता बन जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होती है। और इसी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, हर चंद कोशिश करते हैं। कई बार ये मोहब्बत दिल दुखा भी देती है लेकिन सही मायनों में यही मोहब्बत इंसान को इंसान बना देती है। लिहाजा इस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, इस मोहब्बत को मजीद तकवियत देने के लिए और ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए अपनी कोशिशें हमेशा जारी रखिएगा। फिलहाल मेरे साथ रहिए, प्रोग्राम है आपकी याद आती रही।

बेशक जनाब, जब ये प्यार दस्तक देता है तो यही एहसास होता है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, और ये प्यार लगातार आगे बढ़ता रहता है। अलबत्ता इसका कई बार हमें एहसास नहीं होता कि हाँ, यही तो प्यार है। उसे देखने के लिए आंखों जो तरस जाती हैं, उसको सोचने के लिए वक्त कम पड़ जाता है। यही तो प्यार है। वो ना हो सामने तो देखने की आस रहती है, वो सामने आ जाए तो लगता है कि वक्त थम जाए, लेकिन जनाब ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता। जिंदगी इतनी मसरूफ कर देती है कि इस दिल के बारे में सोचने की फुर्सत कई बार मिल ही नहीं पाती है। अजब दिन है, अजब बात है, और यादों की तो बात ही क्या है। वो लम्हे आज भी दिल में उजाला कर रहे हैं, वो लम्हे आज भी दिल में उजाला कर रहे हैं जो वक्त की किताबों में कहीं पीछे छिपे हैं। एक बार उस किताब के पन्ने पलट के तो देखिए, क्या पता कौन सा लम्हा आपको किस सफ़े पर मिल जाए, कौन सा लम्हा आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, या फिर कौन सा वो लम्हा है जिसे आप आज भी महसूस करना चाहते हैं। काश उससे जब मुलाकात हुई तो कह दी होती दिल की बात, काश जब वो सामने था तो इजहार कर लिया होता, लेकिन जब वो सामने हो तो भला ये लब खोलते ही कहाँ हैं। कुछ कहने को जी तो बहुत चाहता है, लेकिन दिल इसकी इजाज़त कई बार देता ही नहीं है। वो लफ्ज़ मिलते ही नहीं हैं कि क्या कहा जाए, क्या सुना जाए।

यही तो है एक अदा मोहब्बत की कि वो सामने हो और आप कुछ भी ना कहें और वो सब कुछ समझ जाए। ये अजब खामोशी होती है कि इस खामोशी में भी बेशुमार बातें हुआ करती हैं। लेकिन हाँ, अगर इस खामोशी को आप और हम समझ जाएं

0: की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रोग्राम है आपकी याद आती रही। दोस्तों, जब यादों की पोटली खोली जाती है तो बहुत कुछ याद आता है। कुछ गलियां याद आती हैं, कुछ घर याद आते हैं, कुछ चेहरे याद आते हैं, कुछ नुक्कड़ याद आते हैं। और जरा याद तो कीजिए उन गलियों को जहां हम सब खेला करते थे, या फिर जरा सोचिए कि जब हम छोटे थे तो मोबाइल फोन कहाँ हुआ करते थे। लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे, डाकिये की आहट सुनकर दिल की धड़कन बढ़ जाया करती थी और यूं लगता था कि एक छोटे से खत में पूरा प्यार, पूरा अपनापन और न जाने कितनी बेशुमार दुआएं समा जाती थी। अजब खत हुआ करता था। आज बेशक हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं, दूरियां बहुत कम हो गई हैं, हम एक मिनट के अंदर किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर जनाब उस इंतजार की जो मिठास थी, उस इंतजार में जो एक कहना चाहिए कि अपनापन था, वो कहीं आज पीछे छूट चुका है। वो बात जिसे कहने के लिए मुद्दतें दरकार थी, आज बेशक हम बहुत जल्द कह जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों आज भी याद आता है। माना कि तगाफुल न करो के, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब जरा सोचिए कि इस बात में जो असर है, इस बात में जो दिल पर असर होता है, दिल पर तीर लगता है, दिल में एक चुभन सी होती है, वो अब कहाँ। मानते हैं ना इस बात को, कागज पे उतरते थे जो जज्बात कभी, कागज पे उतरते थे जो जज्बात कभी, अब स्क्रीन पे आते हैं मगर वो बात नहीं, अब स्क्रीन पे आते हैं मगर वो बात नहीं। चलिए, जब बात आई है खत की, जब बात आई है उन खूबसूरत जज्बात की, तो एक ऐसा ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

जाते हो परदेस पिया, जाते ही ख़त लिखना। बहरहाल ये जज्बात हैं जनाब, ज़माने तो ये न जाने कब के गुज़र चुके हैं, लेकिन वक्त चाहे कितना भी गुज़र जाए, यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। पुराने घरों की छतों पर खूबसूरत गुजारे हुए उस बचपन की याद, पहले आपको याद ही होगा कि झाड़ू से छत को साफ करने का एक खास मौका हुआ करता था और हर इंसान उससे बचा करता था। ख़ास तौर से अगर हम भाई बहनों की बात करें तो आज तेरा, आज तुम कर लेना, आज मैं, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें हुआ करती। फिर पानी की बाल्टी से छिड़काव होता और आखिर में उस पानी के सूखने पर उठने वाली जो एक भीनी भीनी खुशबू हुआ करती थी, वो वाकई लाजवाब हुआ करती थी। वक्त गुजर गया, आज ना छते हैं ना वो बचपन रहा, लेकिन यादें आज भी हमारे साथ हैं और वाकई इन्हीं यादों के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अक्सर वो बातें याद तो आती हैं, है ना? कहा ना ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ कहा तो है। कहा ना ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ कहा तो है। मैं रो पड़ूंगा मेरी जान, हाल मत पूछो। मैं रो पड़ूंगा मेरी जान, हाल मत पूछो। तो जनाब, ये एक शायर का ख्याल है। फिलहाल मेरा ये ख्याल है कि मुझे आपके हालचाल ज़रूर जानने चाहिए। गाज़ियाबाद से हमारे साथ सौरा वनीजा हैं, लिखते हैं वेलकम बैक हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया जनाब और सौरभ, और शुभ संध्या एफएम रेनबो कौन है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा दोस्त, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पंकज हैं अमरावती महाराष्ट्र से, लिखते हैं गुड इवनिंग, और आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति मैम, और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। मैम जी, मैंने आपका पिछला कार्यक्रम 14 मई 2026 को सुना था। माई गुडनेस, क्या बात है, आपको तो भाई सब कुछ याद रहता है, आप वाकई कमाल के हैं पंकज जी, थैंक यू सो मच। और ये यादें ही तो हैं जिन्हें हम समेट के रखने की कोशिश करते हैं, है ना? चलिए, और आरजी मैम सादर प्रणाम, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, सदाबहार गीत भी बहुत पसंद आ रहे हैं। और लिखा है हमें ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और कार्यक्रम सुनते रहिए। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही, गीत संगीत हमें बेहद पसंद आ रहा है, प्लेलिस्ट वंडरफुल एंड नाइस प्रेजेंटेशन, किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। हमारे बहुत ही पुराने लिसनर हैं आप, हम जानते हैं जनाब। और तेरी जुदाई का हर गम उठा रहे हैं हम, हंसते चेहरों में भी आंसू छुपा रहे हैं हम, तेरे बिन सूना सूना है ये दिल का आशियां, रोज यादों के दिए फिर से जला रहे हैं हम, रात भर चांद भी तन्हा सा नजर आता है, अपनी तन्हाई को किस्से बता रहे हैं हम, वो जो कहता था कभी साथ ना छोड़ूंगा तेरा, उसके वादों का जनाजा उठा रहे हैं हम, सरफराज अब भी उसी मोड़ पे ठहरा है दिल, जिस जगह खुद को तुझसे जुदा रहे हैं हम। क्या बात है, जो कि हार दर्शना बाजार से आप समझ ही गए होंगे कि ये हमें अररिया बिहार से लिखकर भेजा है सरफराज साहब ने, वाकई उनके कलम लाजवाब है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत शुक्रिया। और मैं रविंद्र कुमार गुलावटी उत्तर प्रदेश

से बात कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और यही बात आपने 3 बार हमें लिखकर भेज दी है रविंद्र जी, बट थैंक यू सो मच। ये 3 बार का जो मैसेज है ये भी आपके प्यार को, आपके प्रेम को दर्शा रहा है। लिए दर्द बेशुमार, तड़प जीते रहे हम, शिद्दत में अश्क आंख के पीते रहे हम, समंदर तो था करीब और बात है कि प्यालाए तल सुराख से रीते रहे हैं हम। और यादों में जिनकी दफन मेरा आज हो गया, उन्हीं के लिए कल की तरह बीत रहे हैं हम। चांदी की तराजू है मगर जानते हैं दोस्त कि हर बार जर के ढेर से नीते रहे हैं हम। तेरे उजालों ने दिए जख्म जो बेगुनाह दिल, रातों में बैठे तन्हा उन्हें सीते रहे हैं हम। और लिए दर्द बेशुमार, तड़प जीते रहे हैं हम। ये आप समझ ही गए होंगे, ये अंदाज है प्रेमचंद प्रेमी जी का जैतपुर धामपुर बिजनौर से। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी सुरमई मधुर आवाज में हम सभी ग्रामवासी श्रोता आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर गाने से आपने शो की शुरुआत की है, आपका आपको हार्दिक बधाई। और हमेशा की तरह बहुत ही शानदार गाने, शानदार आलेख और आपका बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण, और आपको जनाब बहुत ही खूबसूरत आपका प्रस्तुतिकरण है जनाब प्रेमचंद प्रेमी जी, आप भी बहुत अच्छा बहुत शानदार लिखते हैं, दिल से लिखते हैं और दिल की बात आपकी सब तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गुड्डू धाकड़ हैं, मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के, क्या बात है धाकड़ भाई, वाह। और आगे लिखते हैं कि गांव से गाने बहुत शानदार बज रहे हैं, शुक्रिया 90s के याद दिलाने के लिए, थैंक यू सो मच गुड्डू। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा गीत संगीत आप तक पहुंचा सकें ताकि आपका दिल बहल सके, आपका वक्त खूबसूरत गुजर चुके। और गुड इवनिंग आरजे जी, ये हैं हितेंद्र दास असम से हमारे साथ, थैंक यू, ऐसे ही रहिए हमारे साथ। जोया हैं, जोया मेलबर्न से और लिखती हैं एंजॉयिंग द प्रोग्राम, क्या बात है जोया, आप इतनी दूर से हमारे साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप कार्यक्रम सुन रही हैं, बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहेंगे कि चाहे हम भारत की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में आकाशवाणी का रेनबो चैनल जब सुना जाता है तो यकीन मानिए अपनेपन का एहसास होता है, ऐसे बहुत सारे लिसनर हमें लिखकर भेजते हैं, थैंक यू जोया। और आगे बढ़ते हैं, जैसे ही फारिग हुआ तो आपकी खूबसूरत आवाज़ दिल सुनकर दिल बहुत खुश हो गया, कस्बा गुनारी यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप आवाज़ से पहचान जाते हैं और हमें क्या चाहिए, ये भी तो मोहब्बत है। और मनोज सिंह हमारे साथ हैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, लिखते हैं तेरी मुस्कान से मेरी पहचान है, तेरी खुशी में ही मेरी जान है, कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी तेरे बिना, क्योंकि तू ही मेरी दुनिया और मेरी शान है। क्या बात है मनोज, वाह बात, क्या बात है, आपकी बात भी अलग है जनाब। चलिए जनाब बातों का सिलसिला आपके साथ हम ऐसे ही जोड़ेंगे, आप सब न जाने कहां कहां से हमारे साथ होते हैं, किस किस स्टेट से हमसे जुड़ते हैं, कौन सी गली से हमारे साथ होते हैं, कौन सी नुक्कड़ से हमारे साथ होते हैं, बहुत सारी यादें आपके पास भी होंगी, है ना। तो चलिए जरा आपसे ही पूछते हैं कि आप आखिर है कहाँ।

0: हाँ, वही आवाज़ जो दिल को दे जाए सुकून, वही आवाज़ जो जिंदगी का सबक दे जाए, वही आवाज़ जो जिंदगी बन जाए। बातें और भी करेंगे आपके साथ, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होती हूँ।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। और जानते हैं जब हम किसी को याद करते हैं तो लगता है कि हाँ जब वो साथ था तो जिंदगी किस कदर खूबसूरत थी। जब वो साथ था तो उसके बारे में लोग हमसे ही पूछा करते थे, उसकी खैरियत हमसे लिया करते थे। अजब दौर था।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपकी याद आती रही। और आपकी याद आती रही में हम बात कर रहे हैं आपके साथ उन खूबसूरत यादों की जो हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा हुआ करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके साथ उन यादों की जिन्हें हम एक बार फिर जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, है ना। और सुदर्शन मुखी, अनुता मुखी और सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। मैं जल्दी से आपके कुछ नाम शामिल कर लेती हूं। और इसके अलावा हमारे साथ कौन है, हमारे साथ और हैं सुरेश वैष्णव हैं, लिखते हैं कि गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। दानिश हैं खतौली से, लिखते हैं कि मैम गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, और आप गाने आपने सबके ही नाम लिख दिए हैं, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ सुनील कुशवाहा, दिलखुश कुशवाहा, बीघापुर उन्नाव से लिखते हैं गीत अच्छे हैं, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। भाई वाह, क्या बात है। और दोस्तों के भी नाम लेना चाहता हूं, कौशल रावत, अमन गुप्ता, क्या बात है, आपके दोस्त जरूर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। और बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुनने के लिए, और प्रोग्राम में आपने जो पैगाम भेजा, जो मैसेज भेजा, बहुत ही अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं, जय हिंद जय भारत, आओ आपकी याद आती रही, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। इकबाल राय हैं गुलाटी पीपली कुरुक्षेत्र से, लिखते हैं थैंक्स।

थैंक्स दोस्त, आपका होना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, और हमें क्या चाहिए। पंकज हैं अमरावती महाराष्ट्र से, आपने सारे गीत जो हमने प्ले किए हैं हमें लिखकर भेज दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी को सुनने के लिए और पसंद करने के लिए। और इसके अलावा सरफराज साहब धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है सरफराज साहब, ये आप ही का कार्यक्रम है और आपके लिए ही हम लोग आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, मुलाकात करने आते हैं, और आप हमें इतने प्यार से मैसेज करते हैं तो ये हमारा फर्ज बन जाता है। और मैं सुन रहा हूँ ये प्रोग्राम, प्लेलिस्ट वाकई अच्छी है और सभी प्लेलिस्ट आपकी अच्छी है। और मैं नवलू वरक फ्रॉम मलपान गोवा से। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो हमारे साथ बने रहे, प्रोग्राम आप सभी ने सुना, और अब मेरा जाने का जो वक्त है वो बेहद करीब आ गया है और आपसे इजाज़त चाहूंगी। लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहूंगी कि इन यादों को आप हमेशा ऐसे ही अपने पास समेट कर रखिए, ये यादें बेहद खूबसूरत एहसास कराती हैं, कई बार जीने का मकसद भी दे जाती हैं, और ये यादें मुस्कुराना सिखा जाती हैं। कभी कभी वक्त मिले तो इन यादों की किताब को एक बार ज़रूर खोल लिया कीजिए, ज़रूर उन चेहरों को याद कर लिया कीजिए जो ज़िंदगी का हमारी कभी एक ख़ास हिस्सा हुआ करते थे। चलिए इसी बात के साथ चलती हूँ, लेकिन वादा रहा प्रोग्राम रंगे महफिल में आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी 11:05 में और 5 मिनट पर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए छोड़े जा रही हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज

फल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारी को बधाई दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। रेल मंत्री ने कहा कि पुनर्विकास कार्य के दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और रेल का संचालन भी प्रभावित न हो। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और काबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपके साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम है रंगे महफिल। आइए खूबसूरत वादियों की सैर करें, एक ऐसे जजीरे की सैर करें जहां मोहब्बत ही मोहब्बत है, जहां कोई आवाज देता है तो मोहब्बत का गुमा होता है। चले आओ मेरे हमदम, मेरी दुनिया अधूरी है, हुजूमे दर्द से थक कर तुझे दिल ने पुकारा है। चले आओ मेरे हमदम, मेरी दुनिया अधूरी है।

कभी फुर्सत मिले तुम्हें तो एक छोटी सी मुलाकात जरूर कर लेना। कभी फुर्सत मिले तुमको तो उन लम्हों को याद कर लेना, उन लम्हों को देख लेना जो हमने भीड़ में खोए, जो न जाने कितने कामों की नजर कर दिए। न कोई ख्वाब का पैकर, न कोई चाहत का किस्सा, फकत एक बोझ है जी का जिसे हम ढोते रहते हैं। अगर कभी मुमकिन हो थोड़ी देर थकन को भूल जाते हैं, किसी कच्ची सी पगडंडी पे खुदी से मिलने जाते हैं, किसी कच्ची सी पगडंडी में खुदी से मिलने जाते हैं। तुमने बहुत वक्त गुजारा कहीं पर, तुमने एक बार न सोचा कि इस दिल पर क्या बीतेगी। फिर भी कभी फुर्सत मिले तुम्हें तो उन लम्हों को देखो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ जनाब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम है रंगे महफिल। रंगे महफिल वही प्रोग्राम जिसमें कुछ किस्से छेड़े जाते हैं मोहब्बत के, कुछ लम्हों को याद किया जाता है, कुछ पलों को हम जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। किस्सा इश्क उसे हमने सुनाया ही नहीं, किस्सा इश्क उसे हमने सुनाया ही नहीं, क्या कहें अपनी तबीयत को ये भाया ही नहीं, क्या कहें अपनी तबीयत को ये भाया ही नहीं। और क्या कहती है तबीयत बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

मैं भी कई बार सोचती हूँ कि मैं कैसे कहूँ, तो क्यों ना चाहतों का हिसाब लिख दूँ, आ तुझ पे कोई किताब लिख दूँ, कभी किसी से किया ना जिसने, मैं वो प्यार बेमिसाल लिख दूँ, मेरी नज़रों में जो बस गया है वो दिलकशी वो जमाल लिख दूँ। बहुत दिनों से सोचती हूँ हर शाम तेरे नाम लिख दूँ, अब गवारा हो तुझे तो ये जिंदगी तेरे नाम लिख दूँ।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: प्रोग्राम रंगे महफिल इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की रेनबो चैनल पर। ये मोहब्बत बड़ी अजीब शय है। मोहब्बत हो जाए तो भी मुश्किल, ना हो तब भी मुश्किल। लेकिन बात यहाँ आती है कि आखिर जिससे आपको मोहब्बत है उससे आप क्या कहें, कैसे कहें। वो कहा है ना किसी ने, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको,

ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। और वाकई ये मोहब्बत कुछ ऐसी ही दर्द देती है, कुछ ऐसा ही सिला देती है। लेकिन ये मोहब्बत तब भी होती है जब ये दर्द देती है, जब ये मुस्कुराहट देती है, खुशियाँ देती है, तब भी मोहब्बत होती है। दरअसल ये मोहब्बत इस दिल में होती है, और अगर ऐसे में वो ना हो सामने, तब भी लगता है काश वो सामने हो। और जब सामने हो तो समझ लीजिए कि आप कुछ कह नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये कहना था उनसे, मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं।

ये जो आंखें हुआ करती हैं, इन आंखों में मोहब्बत होती है, इन आंखों में अपनापन होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इसे कितना महसूस कर पाते हैं। और जब बात मोहब्बत की आती है तो ये मोहब्बत, जैसे अभी हमने बात की ही थी कि मोहब्बत पहले भी थी, मोहब्बत अब भी है। मोहब्बत तब भी थी जब तेरे कदमों की आहट सुनने के लिए ये दिल बेकरार रहता था, तेरी हर मुस्कुराहट से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी आंखों के जादू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरी बातों से, तेरे आने से, तेरे जाने से मुझे तब भी मोहब्बत थी। और आज भी तेरे रूठने से मोहब्बत है, आज भी तेरे नाराज होने से मोहब्बत है, तेरे आने से आज भी मोहब्बत है, और तेरे जाने से आज भी, तेरी राहों में रुकने से, तेरी पलकों के झुकने से, तेरी बेजा शिकायतों से, तेरी हर एक आदत से मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे आज भी मोहब्बत है। कभी आना मेरे पास, जब कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो समझ लेना वो मुलाकात एक मुलाकात नहीं, एक जिंदगी है, क्योंकि मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है। काश मुलाकात वहीं रुक जाए, काश वो लम्हे आगे ना बढ़ें, तुम शिकायतें करते रहो और मैं मोहब्बत करती रहूं।

और हमें भी आरजू रहती है कि आप सब हमारे साथ रहें, प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाएं और अच्छी मौसीकी और साथ में महसूस करें इन गुजरते हुए पलों को। हमारे साथ एम राजकुमार हैं त्रिची टीएन से और सुन रहे हैं कार्यक्रम, अच्छा लग रहा है उन्हें, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश भल्ला जी, एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से, लिखते हैं शुभ संध्या, जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आपके साथ तब तक जब तक नींद ना आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ रहते हैं और प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसा सुना सकें, कुछ ऐसा कह सकें जो आपके दिल को भा जाए। और सरफराज, आज भी बैठा है तेरी राह में तन्हा, किसी हमदम को दिल का गम बताया नहीं आता। बहुत खूब और बड़ा अच्छा लिखते हैं आप, और आप सभी जानते हैं कि हम बहुत छोटे कुछ मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप लिखते रहिए, आपकी कलम की जो धार है वो हमेशा ऐसे ही तेज होती रहे, बहुत शुक्रिया। और रंगी महफिल में आपका आपको प्यार भरा नमस्कार। आदा बर्स, आदिल कमर गुन्नौर से लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, लिखते हैं बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड गुड गजल, और बिग थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम। आपको भी हम बहुत बड़ा वाला थैंक्स कहना चाहते हैं मुखी फैमिली, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और अच्छा लगता है आपको, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ होते हैं। वो झील, वो नदियाँ, वो हवाएं एक तरफ, उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ, वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब लिखते हैं, बहुत खूब, और लिखते हैं कि उफ इतना उम्दा गीत, इतनी हंसी, इतनी जमारात, क्या करें। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सोच समझ के और बहुत तलाश करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सकें फारूक साहब, और आप सब पसंद करते हैं, दिल से शुक्रिया इसके लिए। और इसके अलावा कौन है हमारे साथ, दिल मोहब्बत में या खुदा तोड़ा है, किसी ने रिश्ता मेरा गमों से जोड़ा है, किसी ने और शोलों के बीच दोस्तों में खुद नहीं पहुंचा, मुझे लाकर इस मुकाम पे छोड़ा है। प्रेमचंद प्रेमी जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लिखा है आपने भी, और बहुत शुक्रिया। लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि सभी के मैसेजेस शामिल कर सकें थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींद आ रही है मैम, लेकिन गाने सुनकर अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। सुभाष दास बघेल हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ। चलिए, अगर हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छा लगे कुछ, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि चंद लम्हे और हमारे साथ रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और चंदन दास वॉज क्लासिक, ये लिखते हैं जयंत पटना से, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही कहना चाहिए एक सॉफ्ट वॉइस है, और लगता है कि दिल से दिल तक पहुंच रही है उनकी आवाज़। आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए, अगर आपको प्रोग्राम में कुछ अच्छा लगे तो आप हमें बता ज़रूर सकते हैं। ज़िंदगी पर किताब लिखूंगा, उसमें सारे हिसाब लिखूंगा, प्यार को वक्त गुजारी लिखकर, चाहतों को अजाब लिखूंगा, ये भी किसी शायर का ख्याल है, अपनी ख्वाहिश का तज़करा करके उसका चेहरा गुलाब लिखूंगा, हुई बर्बाद मोहब्बत कैसे कैसे बिखरे हैं ख्वाब लिखूंगा, मैं उससे जुदाई का सबब अपनी किस्मत खराब लिखूंगा। अजब कहानी है जनाब, हर एक शायर का अपना नजरिया है मोहब्बत को लेकर, कोई कहता है कि तू मोहब्बत है, वक्त मिले तो चंद लम्हे मेरे नाम भी करते, और कोई ये भी लिखता है कि जब जब मैं तेरा हिसाब लिखूंगा तो चाहतों को अजाब लिखूंगा। लेकिन जनाब कुछ भी कहिए, मोहब्बत है बहुत खूबसूरत शय, जैसे मोहब्बत हो जाए समझ लीजिए कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया है, जिंदगी को समझना आ गया है। चलिए, इसी जिंदगी के नाम, इसी मोहब्बत के नाम, इसी चाहत के नाम, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक शाहकार आप सबके नाम।

और अगर आपके पास ये जज्बा है, अगर आपके पास मोहब्बत है, तो समझ लीजिए कुदरत का इनाम है ये आपके लिए। संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब भी आपको अलग अलग जगहों पर सुन रहा है, और इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए, सुनवाने के लिए दिल से शुक्रिया। ये लिखकर भेजा है हमें फारूक अली खान साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा प्रेमचंद जी हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और हम तो भाई आप सभी का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत के साथ प्रोग्राम सुनते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, इतनी सारी मोहब्बतें आपकी मिलती हैं तो दिल जो है बाग बाग हो जाया करता है कि वाकई अगर इस दुनिया में लोग कहते हैं कि मोहब्बत नहीं मिल रही है आजकल, तो मुझे तो लगता है कि मोहब्बत ही मोहब्बत है, बस ज़रा सा तलाश करने की ज़रूरत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मोहब्बत रूठ जाए तो उसे बाहों में ले लेना, बहुत ही पास करके तुम उसे जाने नहीं देना, वो दामन छुड़ाए तो उसे तुम कसम दे देना, दिलों के मामले में तो खताएं हो ही जाती हैं, तुम इन खताओं को बहाना मत बना लेना, मोहब्बत रूठ जाए तो उसे जल्दी मना लेना।

0: जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी कल सम्मेलन में एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए। श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस में मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने पर सार्थक बातचीत भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। और क्रिकेट में दांबुला में खेली जा रही 50 ओवरों की त्रिकोणीय श्रृंखला के एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया है। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान को हराना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर आकाशवाणी रेनबो पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम जीरो आर शो।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती।

तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियो पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी दो

0: लाखों की यात्रा के तीसरे चरण में आज एवियों पहुंचेंगे। वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में G7 देशों, साझेदार देशों, विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बाद में वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो पर अब लेकर आए हैं हम आपके लिए एक और कार्यक्रम जिसका शीर्षक है सुहानी रात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें BML मुंजल पुरस्कार समारोह में कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्राचीन और जीवंत सभ्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति का लाभ केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीस्तो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

0: वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: इस बीच स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। केप वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस नतीजे को अब तक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 से 5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। रात्रि के 3:05 और स्टूडियो से एकदम लाइव आप जो है गाने सुन रहे हैं, मतलब मैं अभी आपको गाने सुनाऊंगा और नॉनस्टॉप गानों का मजा आप लेंगे और शो का नाम है मिडनाइट मेलोडीज़। तो बस ऐसे ही गाने सुनते रहिए और ख्यालों की दुनिया में खो जाइए।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक बॉलीवुड का और रात के 3:56 हो चुके हैं। सुबह के 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, लेकिन अभी जो थोड़े से गाने बचे हैं उन गानों का मजा लीजिए और ऐसे ही ख्यालों की दुनिया में खो जाइए।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियो पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के अंतर्गत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की आशा है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। काबो वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोंजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तेलंगाना में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:06 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। अब शुरू होता है सारे गामा, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड के गाने। तो ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए और शुरुआत करते हैं अरमान मलिक की आवाज में फ्रॉम द मूवी। इस फिल्म का जो नाम है वो है दो लफ्जों की कहानी। इससे शुरुआत करते हैं और ऐसे ही गानों की लड़ी लगी रहेगी। आप सुनते रहिए।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुबह के 4:47 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारेगामा, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का मजा आप ले रहे हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में सुनिए फैंटम मूवी का ये अगला गाना।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुबह के 4:53 हुए हैं। सारे गामा शो सुन रहे हैं आप, जिसमें नॉनस्टॉप गानों का मजा ले रहे हैं। सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे, तो अभी बचे हुए गाने सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर

किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर तेलंगाना और विदर्भ में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:06 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप भजन। शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह जी की आवाज में इस भजन के साथ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।